हम आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल से बोल रहे हैं 102.6 पर। आप जुड़े हैं हमारे साथ इस वक्त भक्ति संगीत पर आधारित हमारे दैनिक कार्यक्रम, हमारे नियमित कार्यक्रम आराधना से। वंदे मातरम।

जी आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 29वीं तिथि, तदनुसार 20 जुलाई 2026 सुबह के 5:53 और लगभग 50 सेकंड हुए हैं। अब इन मीटर्स पर हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है और आप जुड़े हैं इस वक्त हमारे सुबह के प्रसारणों में। 5:56 हुए हैं। आइए लेते हैं एक संक्षिप्त रूपरेखा अब से लेकर दिन भर 102.6 पर प्रसारित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में।

अब से कुछ देर बाद यानी 6:02 पर नूपुर कुलश्रेष्ठ लेकर आएंगे कार्यक्रम सुप्रभात। इस कार्यक्रम के बाद रेणु भट्ट प्रस्तुत करेंगी कार्यक्रम गुड मॉर्निंग एनसीआर। सूचना प्रद इस कार्यक्रम में आप वर्ल्ड चेस डे पर एक छोटी सी जानकारी सुनेंगे और इसके बाद स्पोर्ट्स पल्स होगा जिसमें शिवेंद्र चतुर्वेदी की प्रस्तुति में आपको खेल संबंधी जानकारी दी जाएगी। हिंदी में समाचार होंगे 8:00 और इसके बाद एक बार फिर से नूपुर होंगे आपके साथ आकाशवाणी के नियमित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में। ताज़ा तरीन शहरी गतिविधियों पर आधारित ये कार्यक्रम होगा 8:02 से। प्रातः 9:02 पर आप जुड़ेंगे एक बार फिर से रेणु भट्ट के साथ दिल के तराने गाने नए पुराने कार्यक्रम में। पूजा आनंद लेकर आएंगी वेस्टर्न म्यूजिक पर आधारित हमारी नियमित प्रस्तुति मैचलेस म्यूजिक आवर 10:02 पर।

हिंदी में समाचार होंगे 11 बजे और इसके बाद आकृति खंडूरी लेकर आएंगी बॉलीवुड टेल्स। हमारे इस एक और दैनिक प्रस्तुति के बाद जुड़िएगा एक बार फिर से पूजा आनंद के साथ वेस्टर्न म्यूजिक के एक अन्य चरण प्ले इट कूल में। आकृति खंडूरी ही लेकर आएंगी रेनबो हेल्पलाइन दोपहर 1:02 से। हिंदी में समाचार होंगे और इसके बाद 2:02 से सुनिएगा कार्यक्रम आशियाना। शालिनी खंडेलवाल इस प्रस्तुति को लेकर आएंगी। इसके बाद इसी के अंतर्गत आप जुड़ेंगे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम दोपहर 2:02 से। इसके ठीक बाद आप सुनिएगा स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं पर आधारित हमारा दैनिक कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। हिना मौज इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगी और इसमें एक्सपर्ट होंगे डॉक्टर अंकुर गुप्ता जो कि स्पाइन सर्जन हैं आईएसआईसी में, और इसके अलावा उमर अहमद खान जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगी हिना मौज। ये थी अब तक की मुख्य कार्यक्रमों की झलकी। 6 बजने को हैं, आइए अब सुनते हैं हिंदी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी रेनबो पर अब वक्त है मुख्य समाचार का। संसद का मानसून सत्र आज शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इससे पहले कल सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। दिल्ली यातायात पुलिस ने संसद के मानसून सत्र के मद्देनजर आज से नई दिल्ली क्षेत्र में विशेष यातायात व्यवस्था लागू करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज से शुरू हो रहे संसद सत्र के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और न ही दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 98 अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में 4 स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय

टीम को बधाई दी है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये इस प्रतिष्ठित वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन था। भारतीय वायुसेना आज रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के डार्विन बेस पर एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026 शुरू करेगी। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल कोलकाता के विश्वास बांग्ला कन्वेंशन सेंटर से हावड़ा जिले के संक्राइल में अमूल बंगाल डेयरी के दही बनाने के केंद्र की वर्चुअल आधारशिला रखी। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने 1 करोड़ रुपए मूल्य का 1,700 मीट्रिक टन से अधिक अवैध रूप से खनन, भंडारण या परिवहन किया गया कोयला जब्त किया है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में आज अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम में बाढ़ की स्थिति और बिगड़ गई है। 7 जिलों में बाढ़ से प्रभावित लोगों की संख्या बढ़कर 57,000 से अधिक हो गई और एक व्यक्ति के मरने की खबर है। पुरुषों के क्रिकेट में इंग्लैंड ने कल रात लंदन के लॉर्ड्स में खेले गए तीसरे वनडे मैच में भारत को 27 रनों से हराकर 2-1 श्रृंखला अपने नाम कर ली। माफ कीजिए, 2-1 से श्रृंखला अपने नाम कर ली। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फुटबॉल के जबरदस्त फाइनल में स्पेन ने अर्जेंटीना को हराकर दूसरी बार वर्ल्ड कप जीता। फेरन टोरेस ने एक्स्ट्रा टाइम में स्पेन के लिए एकमात्र गोल किया। ये थे आकाशवाणी रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी रेनबो के सफर में। मैं हूं आपके साथ नुपुर कुलश्रेष्ठ और शुरुआत हो चुकी है इस सफर में जिसमें हम आपसे करते हैं ढेर सारी बातें। और सुबह का ये वक्त है और बेहद खूबसूरत ये वक्त है, बेहद खूबसूरत ये सुबह है। और साथ ही जो दस्तक दे दी है, ये जो झमाझम बारिश हो रही है, और आप हैं, हम हैं, ये सफ़र है और इस सफ़र में साथ है इन बेहतरीन नगमों का, और इनके साथ हम और आप मिलकर करेंगे बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत बातें। तो जुड़े रहिए आप हमारे साथ इस सफ़र में और आनंद लीजिए इस बारिश का। जो ये मौसम है ना, हर बदलते मौसम के साथ कुछ ना कुछ यादें जुड़ी होती हैं, और हर मौसम को आप अपने अनुसार यादगार बना सकते हैं। तो बनाइए कुछ पलों को यादगार, जुड़े रहिए हमारे साथ, होंगी ढेर सारी बातें सफर में। मैं हूं आपके साथ नुपुर कुलश्रेष्ठ।

0: ऊपर वाले ने अपनी मोहब्बत के सदके में हम सब के लिए ये धरती बनाई थी, पर मोहब्बत के दुश्मनों ने इस पर लकीरें खींच के सरहदें बना दी। मैं जानता हूं वो लोग तुम्हें इस पार नहीं आने देंगे, मगर ये पवन जो तुम्हारे यहां से होकर आई है तुम्हें छू कर आई होगी। मैं इसे सांस बनाकर अपने सीने में भर लूंगा।
1: ये नदियां जिस पर झुककर तुम पानी पिया करते हो, मैं इसके पानी से अपने प्यासे होंठों को भिगो लूंगी, समझूंगी तुम्हारे होंठों को छू लूंगी।

अगर कुछ बदलना है, जीवन बदलना है, आप जो भी सिचुएशन में हैं उससे आप नाखुश हैं, तो शुरुआत किसको करनी होगी? कौन करेगा बदलने की शुरुआत? आप ही को करनी होगी। आपको खुद को बदलना होगा, और जब आप खुद को बदलेंगे तो ही तो आप अपने जीवन को सुंदर और बेहतर बना पाएंगे। तो परिस्थितियाँ बदलनी है तो खुद को बदलना होगा, समझना होगा कि आप संपूर्ण हैं, है ना, और अपने आप से खुश हैं, क्योंकि खुश रहना ज़रूरी है। और जैसे आपकी वाइब्स होती हैं ना, आप सब कुछ वैसे ही अट्रैक्ट करते हैं। तो ये थोड़ा सा हाई रखिए ना अपनी फ्रिक्वेंसी को। ये आजकल बड़ा मैं सुनती हूँ कि फ्रिक्वेंसी कैसी है, वाइब्स कैसी हैं, उससे वाइब्स मैच नहीं होती, फ्रिक्वेंसी अच्छी नहीं। अगर आपकी फ्रिक्वेंसी हाई नहीं है तो लोग आपसे कनेक्ट नहीं होते। अगर आप खुश रहना नहीं जानते हैं, उदास रहते हैं, ये उदासी कुछ पल के लिए तो ठीक है, हो सकता है कुछ हुआ हो और आपको लग रहा है कि ठीक है अभी थोड़ा सा मन अच्छा नहीं है, तो ठीक है, आएंगे भी लोग, आपसे बात भी करेंगे और उससे निकलने की आपको सलाह भी देंगे। लेकिन अगर आप उसी में बने रहना चाहते हैं, उसी उदासी में हैं, तो फिर आपके लिए भी ठीक नहीं है, और आपके साथ जो जुड़ता है फिर वो आपसे दूर भागते हैं, क्योंकि वहाँ पे आ जाता है कि आपकी अगेन वाइब्स कैसी हैं, फिर आप नेगेटिव हो जाते हैं लोग। अगर आप नेगेटिव हैं तो

दोबारा भी वैसे हो जाता है। और इसलिए ज़रूरी है कि खुद को बदलें, खुश रहें। खुश रहना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है कि आप अपने आप में पूरी तरह से कंप्लीट हैं। और ये जो अक्सर हम पीछे चले जाते हैं ना, पीछे मुड़ मुड़ के देखते हैं, ये पीछे मुड़ मुड़ कर देखने का ना कोई मतलब नहीं है। वो गाना भी है ना, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के। ठीक है, आगे बढ़िए। तो पीछे जाने से बचने के लिए आपको क्या करना होगा, उसका एक ही तरीका है, आगे चलते रहना है। तो आगे चलते रहिए। अपनी परिस्थिति सुधारनी है तो कुछ स्टेप्स तो आपको लेने ही होंगे। अपने विचारों को समझिए, अपने जो आप एहसास करते हैं उसको समझिए, अपनी ताकत को समझिए और समझिए कि ये दुनिया कितनी खूबसूरत है। इस दुनिया की खूबसूरती को समझिए और आगे जीवन के सफ़र में बढ़ते जाइए। और ख़ुद को बदलने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, बिल्कुल हम इस पर बात करेंगे कि शुरुआत कैसे होगी, आपसे ही होगी और किस तरीके से आप बदल सकते हैं चीज़ों को। जारी रहेगी ये सारी बातें, आप जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो के सफ़र में। और बारिश का मज़ा ले रहे हैं आप, ये जो रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है और बहुत कुछ ये आपसे कहती है। ज़रा खिड़की खोलिए, दरवाजे खोलिए, बाहर आंगन में आइए और फिर देखिए कितना अच्छा आपको लगेगा। न्यूज़पेपर आ चुका है, ऐसा तो नहीं है, मेरे पापा ऐसे करते हैं, वो न्यूज़पेपर डालकर जाते हैं और वो बारिश में भी उस जगह पर होता है जहाँ पे पूरा भीग जाता है ना। और फिर पापा कहते हैं कि कैसे ऐसे आपने न्यूज़पेपर डाल दिया था, वो कहते हैं बारिश हो रही थी मैं क्या करता। तो उसमें भी खट्टे मीठे ये बात का बात करने का कोई बहाना है, खट्टे मीठे पल हैं। तो ज़िंदगी के इन खट्टे मीठे पलों का आप यूं ही आनंद लेते रहिए। चाय तो आप नहीं छोड़ेंगे, मानेंगे भी नहीं, बहुत मेहनत की है, कोशिश भी की है, उसके साथ आनंद ले रहे हैं, जी हाँ, पकौड़ों का। और ये बारिश और ये वक्त भी बीत जाएगा, तो इस वक्त में आप हैं उसका आनंद लीजिए, खूब आनंद लीजिए, क्योंकि पीछे मुड़कर देखने का कोई मतलब नहीं होगा, ये बस याद आएंगे आपको पल। इसलिए कहते हैं कि आज में जिए, जो अभी है वर्तमान में है उसमें जिए। तो खुद को थोड़ा सा बदलिए और जब आप बदलते हैं तो बिल्कुल ज़िंदगी बदलती है। और मौसम बदलता है तो मूड भी तो बदलता है, तो मूड भी इतना अच्छा हो चुका है आपका, तो आनंद लीजिए इस गाने का। जुड़ रही हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो के इसी सफ़र में, आप सुन रहे हैं सुप्रभात।

आप भी चल रहे हैं हमारे साथ इसी सफर में जिसका नाम है सुप्रभात, और मैं हूँ आपके साथ नुपुर कुलश्रेष्ठ। और खुद को बदलना है और बदलने में वक्त लगता है, अच्छी आदतें अपनाने में वक्त लगता है। अब ये क्या बात हुई कि अगर आप सोचते हैं कि आप पूरे दिन नकारात्मक विचारों से घिरे हुए हैं, कमज़ोर नुकसानदायक विचार आपके बने हुए हैं, और फिर आप सोचते हैं कि 10 मिनट में बस बदलाव हो जाए, रचनात्मक विचारों से आप भर जाएं और उनकी खूबसूरती से भर जाएं और सामंजस्यपूर्ण परिस्थितियां हो जाएं, तो इस तरह की जो बेईमानी उम्मीद है वो आपको नहीं करनी चाहिए, है ना। ये इतना आसान नहीं है, प्रैक्टिकल होना भी ज़रूरी है। चीज़ें जितने सालों से जो आदतें आपने अपनाई हैं उनको बदलना चाहते हैं तो उसमें वक्त तो लगता है, तो वक्त को भी वक्त देना चाहिए और धीरे धीरे करके जो कदम बढ़ते हैं वो मंजिल की तरफ ज़रूर पहुँचते हैं। बस हौसला रखना होता है, विश्वास रखना होता है। जब आपने ठान लिया है कि ये करना है तो फिर विश्वास को बनाए रखें और हार ना माने, और ज़रूरी है कि आप सकारात्मकता से भरे रहें। मुश्किल होता है कई बार, स्थितियां ऐसी होती हैं कि आप उसमें नहीं रह पाते हैं, ना चाहकर भी आप के जो विचार हैं वो डगमगाते हैं, लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, है ना। तो इसलिए कोशिश करनी है और जिस सफ़र पर निकल चुके हैं बस उस पे आगे बढ़ते रहना है, और बदलेंगी चीज़ें, उम्मीद का दामन बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है।

आखिर ताल से ताल मिलाइए, ताल मिलाइए उस दुनिया से जो हमारे अंदर है। वो दुनिया खूबसूरत विचारों की, एहसास, ताकत, रोशनी की, खूबसूरती की दुनिया। और ये जो दुनिया है ना, जिसे आपको ताल मिलानी है, ये दुनिया दिखाई नहीं देती लेकिन इसकी ताकत असीम है। और क्या आपकी ताल मिलती है उन सभी विचारों से जो हम पढ़ते हैं और सोचते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे। वो कहते हैं ना कि जब गुस्सा आए तो रिप्लाई ना दें, जब आप उदास हैं तो कोई डिसीजन ना लें। तो ये जितने पॉजिटिव कोट्स हम पढ़ते हैं और उसको जहन में डालते हैं, क्या लेकिन उसके साथ ताल मिला पाते हैं? ताल मिलाने का मतलब है कि जो आपने पढ़ा, क्या आप उसको अपने अंदर समा कर उसको, खुद को उसमें ढाल पाते हैं कि नहीं? सिर्फ एक विचार आया, पढ़ा और चला गया, नहीं ना। एक विचार है और आपने कहा कि हाँ, ये तो बिल्कुल सही विचार है, ऐसा ही होना चाहिए और हमें इस तरह से खुद में बदलाव लाना चाहिए, लेकिन बस वो विचार आया और चला गया। ये तो आई गई वाली बात हो गई ना। तो यही जानना है कि क्या ताल मिलती है उन विचारों के साथ आपकी, जो आपके एक्शंस हैं वो मिलते हैं जो आप करना चाहते हैं उनके साथ, जो डिसीजन लिया है सफर पर पहुंचने तक के लिए, क्या वाकई वहां तक सही दिशा में कदम बढ़ रहे हैं और जो स्टेप्स उसके लिए लिए जाने चाहिए वो आप ले रहे हैं कि नहीं? क्योंकि ये सब आपको करना पड़ेगा अगर आपको जीवन को वो दिशा देनी है जिस दिशा में आप उसको ले जाना चाहते हैं। और जीवन को सुंदर बनाने के लिए शुरुआत आपको खुद से ही करनी होगी। जुड़ रही है हमारे साथ इस सफर में, आप सुन रहे हैं सुप्रभात, मैं हूँ आपके साथ नुपुर कुलश्रेष्ठ।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
4: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
5: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
4: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
5: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
6: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
7: आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं सुप्रभात, और साथ ही साथ हम बात कर रहे थे कि जीवन में अगर आपको बदलाव लाना है, जीवन को बदलना है, तो शुरुआत आप ही से होगी। ये शुरुआत आप ही को करनी होगी और कदम आप ही को बढ़ाने होंगे। और कितनी सारी बातें हैं, कितने सारे विचार हैं जो आते हैं, लेकिन आप उसमें से क्या रखते हैं ये मायने रखता है। और देखिए ना, हमारे जो श्रोता हैं उन्होंने भी हमें लिखकर भेजा है कि वृक्ष को देखो तो हरियाली में हम देखते हैं ना, पेड़ों को कितने हरे भरे से होते हैं, तो उनको देखकर हमें खुशी मिलती है ना। और जब पतझड़ होता है तो फिर जब सारी पत्तियां झड़ जाती हैं, फूल झड़ जाते हैं, तो वो उतना खूबसूरत नहीं दिखता। लेकिन पेड़ को, उस वृक्ष को, खुद पर जो उसको संस्कार मिले हैं उस पर पूरी तरह से भरोसा है कि पतझड़ खत्म होते ही नए पत्ते उगेंगे और फिर से सब कुछ खुशनुमा हो जाएगा। लेकिन इंसान थोड़ी सी परेशानी क्या आ जाती है, परेशान हो जाता है ना, जल्द निराशा हाथ लगने लग जाती है, हिम्मत हारने लग जाते हैं। लेकिन वृक्ष को देखिए, वो तैयार है हर तरह के बदलाव के लिए, तो आप भी तैयार रहिए ना। और अनिल शर्मा जी ने हमें ये लिखकर भेजा है और उनकी बात को मैंने उठाते हुए आपसे बात की है, तो आप भी तैयार रहिए ना। वो थोड़ी सी परेशानी होती है, ऐसा लगता है कि पता नहीं कैसे हो पाएगा, किस तरीके से हम जहां अभी हैं वहां से निकल पाएंगे, लेकिन यकीन मानिए कि आप कदम बढ़ाते हैं ना तो रास्ते खुद ब खुद बनने लग जाते हैं। और वो कहते हैं ना कि आपको सही चीज़ सही समय और सही तरीके से हासिल हो ही जाती है, तो इसलिए कभी भी जो मेहनत है ना वो करते रहने चाहिए, उससे कभी भी पीछे नहीं हटना है। और हम भी कहाँ हट रहे हैं पीछे, आपको सुनवा रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, आप जुड़ रही है हमारे साथ इसी सफर में

आकाशवाणी रेडियो जुड़े रहिए हमारे साथ, और ये जो सफर है वो ये भी यूं ही बीत जाएगा और हम सब भी सफर में यूं ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। और खुद को बदलने के लिए परिस्थितियां बदलना बहुत ज़रूरी है, तभी हम जीवन को सुंदर बना सकते हैं। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो आप खुद के लिए चाहते हैं वैसा ही दूसरों को भी दें। और प्रेम पाने के लिए प्रेम देना बहुत ज़रूरी है, जितना देंगे उतना हम पाएंगे। और इसका मतलब यही है कि बस आप खुद को ना पूरी तरह से प्रेम से भर लीजिए, मतलब खुद इतने खुश रहिए, इतने मस्त रहिए, इतने ज़बरदस्त रहिए ना कि बस सब आपसे जुड़ना चाहें और आप अपने आप को बदल लिए अच्छे के लिए, अपने अच्छे के लिए। और एक कॉम्पिटिशन होता है ना खुद से खुद का, वही कीजिए, हर दिन खुद को बेहतर बनाइए। और आज कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, कौन कौन से, जी हाँ बिल्कुल, प्रोग्राम्स इस सफ़र में आपके साथ होंगे और कौन कौन से आर्जेस आपके साथ जुड़ेंगे, बिल्कुल मैं आपको बता देती हूँ। आप हमारे साथ जुड़े रहिए इसी सफ़र में जिसका नाम है आकाशवाणी रेनबो। और मैं आपको बिल्कुल बता देती हूँ कि आप कुछ ही दिन में सुनेंगे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, और गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR में आपके साथ होंगी, आपका साथ देंगी रेणु भट्ट। उसके बाद गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR के दूसरे सेगमेंट में एक बार फिर मैं आपके साथ जुड़ूंगी, मैं हूँ आपके साथ नुपुर कुलश्रेष्ठ। और उसके बाद आप सुनेंगे 9:02 से लेकर 10 तक दिल के दराने गाने नए पुराने, इसमें भी आपके साथ होंगी रेणु भट्ट। और उसके बाद मैचलेस म्यूजिक आवर में आपके साथ जुड़ेंगी पूजा आनंद। उसके बाद समय रहेगा बॉलीवुड ट्रेल्स का, बॉलीवुड की खबरों के साथ आपके साथ जुड़ेंगी आकृति खंडूरी 11:02 से लेकर 12 तक। और उसके बाद एक बार फिर आपके साथ जुड़ेंगी प्लेट कूल में पूजा आनंद। और उसके बाद रेनबो हेल्पलाइन में आप एक बार फिर आपके साथ होंगी आकृति खंडूरी। और आज का जो विषय है वो रहेगा ड्राउट प्रिपेयर्डनेस, हाउ कम्युनिटीज कैन बिल्ड वाटर रेजिलियंस। और उसके बाद आप सुनेंगे प्रोग्राम आशियाना, शालिनी खंडेलवाल होंगी आपके साथ इस प्रोग्राम में। 3 आप सुनेंगे रेडियो डॉक्टर, हीना मौज होंगी इसमें आपके साथ। इस कार्यक्रम का विषय रहेगा डीलिंग विद ऑस्टियोपोरोसिस एंड स्पॉन्डोलोसिस। और उसके साथ ही इसके बाद कार्यक्रम अल्फा जैन आप सुनेंगे, और इसमें भी आपके साथ होंगी शालिनी खंडेलवाल। और अल्फा जैन में आज का जो विषय है वो होगा UPSC एंड एम्प्लॉयबिलिटी। और इसके बाद जो समय रहेगा वो रहेगा सिटी लाइट्स का, और सिटी लाइट्स में सिटी की खबरों के साथ आपका साथ देंगी हीना मौज। और उसके बाद आप सुनेंगे मैसेज मसाला मिक्स 6:02 से लेकर 7 तक नीरजा चतुर्वेदी होंगी इस कार्यक्रम में आपके साथ। और उसके बाद कंट्री कार्निवल में आपके साथ होंगे मनन। इसके बाद आप कार्यक्रम सुनेंगे म्यूजिक मस्ती, इस प्रोग्राम में आपके साथ होंगी नीरजा चतुर्वेदी। एक बार फिर आपकी याद आती रही सुनेंगे आप रेशमा फारूकी के साथ। और वेस्टर्न म्यूजिक एक बार फिर आपके साथ जुड़ेंगे रेनबो शोकेस प्रोफाइल्स ऑफ पॉपुलर आर्टिस्ट एंड बैंड्स में आपका साथ देंगे मनन। और इसके बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम रंगे महफिल, रेशमा फारूकी होंगी आपके साथ एक बार फिर से। और बिल्कुल आप जुड़ रहे हैं हमारे साथ, मैं नुपुर कुलश्रेष्ठ अब आपसे लेती हूँ इजाज़त। जुड़े रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। सुप्रभात में बस इतना ही, नमस्कार।

नमस्कार, पेश है अब तक के एफएम रेनबो मुख्य समाचार। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। ये 13 अगस्त तक चलेगा। 25 दिन के अधिवेशन में सदन की 19 बैठकें होंगी। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। इस सत्र में समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पेश किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने कल इस विधेयक के मसौदे को सर्वसम्मति से मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जनसंपर्क क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 98 अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में 4 स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये इस प्रतिष्ठित वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन था। दिल्ली यातायात पुलिस ने संसद के मानसून सत्र के मद्देनजर आज से नई दिल्ली क्षेत्र में विशेष यातायात व्यवस्था लागू करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज से शुरू हो रहे संसद सत्र के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध, मार्च या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और न ही दी गई है। भारतीय वायुसेना आज रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के डार्विन बेस पर एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026 शुरू करेगी। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल कोलकाता के बिस्वास बांग्ला कन्वेंशन सेंटर से हावड़ा जिले के संकरायल में अमूल बंगाल डेयरी के दही बनाने के केंद्र की वर्चुअल आधारशिला रखी। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने 1 करोड़ मूल्य के 1,700 मीट्रिक टन से अधिक अवैध रूप से खनन, भंडारण या परिवहन किया गया कोयला जब्त किया है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में आज अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम में बाढ़ की स्थिति और बिगड़ गई है। 7 जिलों में बाढ़ से प्रभावित लोगों की संख्या बढ़कर 57,000 से अधिक हो गई है और एक व्यक्ति के मरने की खबर है। पुरुषों के क्रिकेट में इंग्लैंड ने कल रात लंदन के लॉर्ड्स में खेले गए तीसरे वनडे मैच में भारत को 27 रनों से हराकर 2-1 से श्रृंखला अपने नाम कर ली और फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फुटबॉल के जबरदस्त फाइनल में स्पेन ने अर्जेंटीना को हराकर दूसरी बार वर्ल्ड कप जीता। फेरेन टोरेस ने एक्स्ट्रा टाइम में स्पेन के लिए एकमात्र गोल किया। ये थे अब तक के एफएम रेनबो मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी
1: और आकाशवाणी के एफएम रेनबो चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं रेणु भट्ट और हम जुड़े हुए हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर के इस सफर में। बेहतरीन सफर है, ढेर सारी बातें हम आपके साथ साझा करते हैं और ढेर सारा अच्छा बेहतरीन म्यूजिक भी हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए पहले सुनते हैं श्रेया घोषाल की आवाज में बेहद खूबसूरत ट्रैक, उसके बाद अपनी बातों का सिलसिला जारी रखेंगे।

एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और अब मौसम ने करवट ले ली है और दिल्ली वाले बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि बारिश हो। ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया है हमारे मौसम में, हमें ह्यूमिडिटी का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है। और अभी जब मैं स्टूडियो आ रही थी ना, तो हल्की हल्की बौछारें हो रही थी, फुहार हो रही थी, तो थोड़ा वेदर जो है कंपैरेटिवली कल के मुकाबले, कल बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी उसके कंपेरिजन में तो बहुत अच्छा और शानदार है। लेकिन अभी आगे क्या हो रहेगा पूरा दिन भर, ये तो हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। लेकिन अभी हम आपको बताएंगे कि उन व्यक्तित्व के बारे में जिनका आज जन्मदिन है और हम उन्हें विश करेंगे, और विश करने के साथ ही ढेर सारी शुभकामनाएं हम अपनी उनको देंगे और शेयर करेंगे। हम बात कर रहे हैं अरुणिमा सिन्हा की। वो भारतीय पर्वतारोही हैं और राष्ट्रीय स्तर की पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी हैं। वो दुनिया की पहली दिव्यांग महिला हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह किया था। 2011 में एक ट्रेन हादसे में उन्हें अपना पैर गंवाना पड़ा था, लेकिन उसके बावजूद उनके अदम्य साहस से उन्होंने ये इतिहास रचा। और कभी अपने आप को उन्होंने ये नहीं सोचा कि अब मैं क्या करूंगी, और इस वजह से उनके साहस से और प्रेरणादायी जो उनका व्यक्तित्व है, इसे देखते हुए उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। इसलिए कहा जाता है कि अपने साहस और अपने दृढ़ संकल्प और समर्पण को हमें हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। हम जब अपने आसपास देखते हैं सारे व्यक्तित्व, तब हमें पता चलता है कि कितनी सारी चीज़ें हैं जो हमारे आसपास हो रही हैं, जिन्हें हमें देखना चाहिए और उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। और उनके साथ साथ हमें एक और नाम आपके साथ साझा करेंगे। हम बात कर रहे हैं नसीरुद्दीन शाह की, और इनके बारे में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता हैं और निर्देशक हैं, जिन्होंने समानांतर और मुख्य धारा दोनों तरह फिल्मों में और सिनेमा में उन्होंने काम किया, और शानदार अभिनय के लिए वो जाने जाते हैं। और आप इनकी कोई भी फिल्म उठा लीजिए, चाहे वो जाने भी दो यारो हो, मंडी, अर्ध सत्य, सरफरोश और इश्किया, डेढ़ इश्किया, और भी कई फिल्में हैं जिसमें इन्होंने काम किया और अपने अभिनय का लोहा मनवाया है। ना केवल अपने देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने अपनी अभिनय का लोहा मनवाया। आप कोई भी फिल्म इनकी उठाएंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि सभी फिल्मों में इन्होंने इतनी नेचुरल एक्टिंग की है कि आपको लगेगा ही नहीं कि कोई व्यक्ति बड़े पर्दे पर आकर एक्टिंग कर रहा है, बल्कि ऐसा लगेगा आपको कि आप में से कोई एक ऐसा इंसान है जिसकी रियल लाइफ को आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी श्याम बेनेगल की फिल्म निशान से सन 1975 में, और इनके जो इतना दशकों लंबा इनका करियर हो चुका है, कई प्रतिष्ठित पुरस्कार इनको मिले हैं। 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 3 फिल्मफेयर पुरस्कार, और क्योंकि इन्होंने भारतीय सिनेमा में बहुत बहुत बेहतरीन योगदान दिया है, इसलिए इन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया है। इसलिए हम इन दोनों व्यक्तित्व को इनके जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं, अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, और इन्हीं की फिल्म इश्किया से ये ट्रैक सुनते हैं सुखविंदर सिंह और मिका की आवाज़ में।

और आपको समय देखकर ऐसे नहीं उड़ जाना है, आपको देखना है कि क्या उड़ने के सारे तरीके, माध्यम और अवसर हमारे पास हैं। और जब आपको लगे ऐसा कि हाँ हम उड़ने के लिए तैयार हो गए, तो आप देखिए पूरा आसमान हमारा है। चलिए इसके साथ मैं आपको बता देती हूँ कि आज के दिन ऐसा क्या हुआ था जिसने आज के दिन को इतिहास में खास बनाया। आज के दिन सन 1919 में माउंट एवरेस्ट को सबसे पहले जीतने वाले सर एडमंड हिलेरी का जन्म हुआ था। और आज के दिन सन 1969 में मानव ने चंद्रमा की सतह पर पहला कदम रखा था। एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग ने इतिहास को रचा था। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है ना जो बहुत अच्छा लगता है सुनकर, कई बार हमारे दिमाग से स्लिप हो जाता है, कई बार हमें नहीं भी पता होता है, पर जब पता चल जाता है तो कितना अच्छा लगता है। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, रेणु भट्ट के साथ आकाशवाणी के एफएम रेनबो चैनल पर।

0: लेट्स ज्वाइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
1: मैं रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

वेलकम बैक, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग जर्नी एनसीआर आकाशवाणी के एफएम रेनबो चैनल पर, और मैं हूँ आपके साथ रेणु भट्ट। आप हमसे जुड़े हुए हैं कई तरीके से, फ्रीक्वेंसीज के माध्यम से, ऑनलाइन, और आप ऐप के थ्रू भी हमसे जुड़े हुए हैं, और आप हमें मैसेजेस करते रहते हैं। आप सभी के मैसेजेस का बहुत

बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो सो वेरी मच। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हर बार मैं आपको बताती हूँ कि आपको हमें ईमेल भी करना है, और ये छोटा सा काम आप कर सकते हैं, आपको भेजना है ईमेल feedback@fmrainbow@gmail.com पर, feedback@fmrainbow@gmail.com पर आपको मेल भेजना है और बताना है कि कौन से प्रोग्राम आपको बहुत अच्छे लगते हैं, कौन से आपको थोड़े कम अच्छे लगते हैं, या कोई दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है तो आप अपनी बातें बिंदास हम तक पहुंचा सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि आज का दिन क्यों स्पेशल है। आज का दिन इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि आज मनाया जाता है विश्व शतरंज दिवस, यानी कि वर्ल्ड चेस डे, और इस दिन की शुरुआत 1924 में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना की याद में की गई, और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2019 में इस दिन को आधिकारिक तौर पर मान्यता प्रदान की। क्यों मनाया जाता है, आपको बताना है कि क्यों मनाया जाता है। हम इस बात पे बहुत बहुत बातें करते हैं कि किसी भी दिन को मनाने का उद्देश्य क्या होता है, और अगर हम इस खेल की बात करें तो इस प्राचीन दिमागी खेल की जो जड़ें हैं वो भारत से जुड़ी हुई है। भारत में प्राचीन काल में से चतुरंग कहा जाता था, बाद में ये जब खेल फैला तो इसका नाम भी थोड़ा थोड़ा बदलता गया और आज इसे शतरंज के नाम से जाना जाता है, और इसे सबसे बौद्धिक और रणनीतिक खेलों में गिना जाता है जिसमें कई सारे मूव्स होते हैं, कई सारे आपके पास अगर आप देखें चेस के जो खिलाड़ी होते हैं मोहरे बहुत सारी होती हैं। इसका उद्देश्य, इस दिन का उद्देश्य है कि शतरंज के खेल को बढ़ावा देना, खिलाड़ियों के बीच में मैत्रीपूर्ण संबंधों को स्थापित करना, और शैक्षणिक और सांस्कृतिक महत्व को उजागर करना। तो इतने सारे और इतने इम्पोर्टेंट चीज़ों, उद्देश्यों के साथ, ऑब्जेक्टिव्स के साथ किसी भी दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। इस अवसर पर दुनिया भर के जो क्लब्स होते हैं और जो संगठन होते हैं वो विभिन्न तरह के टूर्नामेंट, प्रशिक्षण शिविर और ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित करते हैं। तो आज इसलिए मनाया जाता है विश्व शतरंज दिवस। और इस दिन के बारे में क्या आपको पता था? पता था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता था तो हमने आपको बता दिया। आप हमें लिख के बता सकते हैं कि आपको पता था या नहीं पता था। और अभी फिलहाल आप सभी के लिए अरिजीत सिंह और अमाल मलिक की आवाज में बेहद खूबसूरत ट्रैक आकाशवाणी के एफएम रेनबो चैनल पर।

चलिए अब याद करते हैं उन व्यक्तित्व को जिन्हें आज याद करना जरूरी है। हम सबसे पहले बात करेंगे सांता प्रसाद की। प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय संगीतकार और तबला वादक थे। वो गुदई महाराज के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। शास्त्रीय संगीत के लिए प्रसिद्ध रहे बनारस घराने से ये ताल्लुक रखते थे और अनेकों हिंदी फिल्मों में भी इन्होंने तबला वादन किया। भारतीय फिल्मों के प्रसिद्ध संगीतकार राहुल देव बर्मन इनके ही शिष्य थे। इन्होंने, जैसे हमने आपको बताया कि हिंदी फिल्मों में उन्होंने तबला वादन किया। कुछ फिल्में इस प्रकार हैं, छनक छनक पायल बाजे, मेरी सूरत तेरी आंखें, बसंत बहार शोले। और इन्हें भारत सरकार ने 1972 में पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी और पद्म भूषण जैसे सम्मानों से भी सम्मानित किया। आज इनकी जयंती, हम इन्हें नमन करते हैं। और एक और व्यक्तित्व के बारे में आपको हम बातें साझा करना चाहेंगे और ये है भारतीय फिल्म अभिनेता राजेंद्र कुमार की। बहुत ही सुंदर और सफल अभिनय कलाकार रहे ये, और इनके अभिनय से, इनकी बेमिसाल अदाकारी से इन्होंने सभी के हृदय में, दिलों में वो स्थान बनाया जो हर अभिनेता का सपना होता है कि हम इतने पसंद किए जाएं। और हम इनकी अगर बात करें ना, तो इनको बचपन से ही फिल्मों में काम करना था, अभिनेता बनने की चाहते रखते थे। और एक मध्यम वर्गीय परिवार से होने के बावजूद उन्होंने इस बात का उम्मीद ठाने रखी, उस उम्मीद का दामन पकड़े रखा कि मैं जो है फिल्मों में हाथ आजमाऊंगा और किस्मत बनाऊंगा। और मुंबई में आने के लिए, मुंबई में अपनी किस्मत आजमाने के लिए उन्हें, उनके पिता ने जो घड़ी दी थी उनको बेचा और मुंबई आकर अपनी किस्मत बदलने का फैसला किया। और जब इतना हौसला था उनपे, तो इतना हौसला जिनके पास हो तो किस्मत भी उनके आगे थोड़ी नतमस्तक रहती है। और इन्हें 21 साल की उम्र में फिल्मों में काम करने का मौका मिला। और जोगन फिल्म थी जिसमें छोटा सा किरदार इन्होंने निभाया था। और इस फिल्म में जो थे, यानी कि जोगन में थे, दिलीप कुमार मेन हीरो थे। इसके बाद वो लगातार सफलता प्राप्त करते गए और उन्होंने फिर मुड़कर पीछे नहीं देखा। कुछ फिल्में आपके साथ हम इनके साझा करें, गूंज उठी, शहनाई, ललकार, मदर इंडिया, दिल एक मंदिर, धूल का फूल, मेरे महबूब, आय मिलन की बेला, संगम, आरजू, सूरज और बहुत सारी फिल्में हैं। पद्मश्री से भी इन्हें सम्मानित किया गया और जुबली कुमार के नाम से इन्हें जाना जाता था क्योंकि इनकी फिल्में बहुत बहुत हिट रहती थी। और इन दोनों व्यक्तित्व को नमन करते हैं और आप सभी के लिए बेहद खूबसूरत ट्रैक हम प्ले कर रहे हैं कुमार सानू की आवाज़ में। आप बने रहे हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली, NCR आप सुन रहे हैं।

और अब मेरे पास समय कम है, लेकिन मेरे पास बाप के साथ साझा करने के लिए बातें बहुत ज्यादा है, तो मैं फटाफट आपको बता देती हूँ, क्योंकि कुछ ही पलों में आप सुनेंगे स्पोर्ट्स पल्स। हम आपको बता दें कि आज पुण्यतिथि है अन्ना चांडी की, भारत की पहली महिला न्यायाधीश वो रही, और 1937 में एक जिला अदालत में भारत की पहली न्यायाधीश बनी अन्ना चांडी की बात कर रहे हैं हम। आज इनकी पुण्यतिथि, हम इन्हें नमन करते हैं। और बात करेंगे हम बटुकेश्वर दत्त की भी, भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से एक थे। देश के सबसे पहले 8 अप्रैल 1929 को देश ने उन्हें तब जाना जब वे भगत सिंह के साथ केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट के बाद गिरफ्तार किए गए। और इनके साथ साथ हम आपके साथ बात साझा करेंगे बालकृष्ण भट्ट जी की भी, और जिनकी आज पुण्यतिथि है, और भारतीय साहित्यकार रहे, आधुनिक हिंदी साहित्य के शीर्ष निर्माताओं में से एक हैं, और आज की गद्य प्रधान कविता का जनक इन्हें ही माना जाता है। ये एक सफल नाटककार, पत्रकार, उपन्यासकार और निबंधकार रहे, और काफ़ी इन्होंने रचनाएं की। कुछ प्रमुख रचनाएं हम आपके साथ इनकी साझा करना चाहेंगे, जैसे साहित्य सुमन, नूतन ब्रह्मचारी, सो अजान एक सुजान, बाल विवाह, चंद्रसेन, रेल का विकट खेल, और भी ढेर सारी इनकी रचनाएं हैं जो आप पढ़ सकते हैं। और आज इनकी पुण्यतिथि है, हम इन्हें नमन करते हैं। और कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन हम आपको बता दें, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ ही पलों में आप सुनेंगे स्पोर्ट्स पल्स शिवेंद्र के साथ, और ठीक 8 बजे आप सुनेंगे गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर के दूसरे घंटे में नूपुर को, और 9 बजे आपसे मिलने में ही आऊंगी दिल के तराने गाने नए पुराने में। इसलिए हमारे साथ बने रहें, क्योंकि यहाँ पर एंटरटेनमेंट का सिलसिला बिल्कुल खत्म नहीं होता है। गुड बाय एंड टेक केयर, थोड़ी देर में दोबारा आपसे मिलूंगी।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है खेल गतिविधियों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम स्पोर्ट्स पल्स।
1: भारत को एक से जीत गया, भारत विश्व हॉकी चैंपियन।
2: हिस्ट्री मेड इन टेम्परे, हिमा दास हैज डन इट। इंडिया विन बाय 137 रन्स, दे गो 2-1 अप इन द सीरीज।
3: स्पोर्ट्स पल्स,
4: नमस्कार, गुड मॉर्निंग सुप्रभात साथियों, शिवेंद्र का प्यार भरा नमस्ते स्वीकार कीजिए। स्पोर्ट्स पल्स का एक और संस्करण लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ। खेल दुनिया के हर धड़कन को करीब से महसूस करने की, शिद्दत से महसूस करने की हमारी कोशिश का नाम है स्पोर्ट्स पल्स। और साथियों, यकीन मानिए, कल या फिर आज भारतीय समय के अनुसार अलग सुबह तक यानी 4:30 बजे तक आसपास स्पोर्ट्स के हिसाब से बहुत ही एक्साइटिंग दिन था, सुपर संडे था। एक से बढ़कर एक टूर्नामेंट खेले जा रहे थे और उनमें था क्वाड्रेनियल टूर्नामेंट, यानी 4 साल में एक बार होने वाला फुटबॉल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट, सबसे बड़ा महोत्सव फुटबॉल का, जिसे हम जानते हैं फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल के नाम से, जिसका समापन हुआ एक्स्ट्रा टाइम के बाद और स्पेन ने इस टूर्नामेंट का खिताब जीतने में कामयाबी हासिल की। 1-0 से जीते, अर्जेंटीना को हराया जो मौजूदा चैंपियन थे। विस्तार से उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा भारत और इंग्लैंड की टीमें 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों की श्रृंखला खेल रही थी और वहां पर भारत को ऐतिहासिक लॉर्ड्स के मैदान पर एक हाई स्कोरिंग मुकाबले में, हाई स्कोरिंग क्यों हम कह रहे हैं, क्योंकि कल जो मैच खेला गया भारत और इंग्लैंड की टीमों के बीच लॉर्ड्स के मैदान पर, उसमें 747 रन बने और 10 विकेट गिरे और अंततः इंग्लैंड ने जीत हासिल की। भारत 27 रन से मुकाबला हारा, साथ ही भारत श्रृंखला हार गया। लेकिन कल का दिन अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो रहा पीवी सिंधु के नाम। पीवी सिंधु ने कल जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में इतिहास रच दिया।
5: It's out.

0: और इस टूर्नामेंट को जीतने वाली पीवी सिंधु पहली भारतीय खिलाड़ी बनी हैं। 31 साल की पीवी सिंधु ने रविवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में जापान की अकाने यामागुची को हराया। 21-17 से ये मैच 50 मिनट तक चला। सिंधु 4 साल के बाद यामागुची को किसी फुल मैच में हरा सकी हैं। उन्हें पिछली जीत थाईलैंड ओपन में 2022 में मिली थी। पिछले साल मलेशिया ओपन में यामागुची रिटायर्ड हर्ट हो गई थी। 2 साल बाद सिंधु ने कोई टाइटल जीता है। 2024 में इनफैक्ट उन्होंने सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट लखनऊ में जीता था। 2022 में सिंगापुर में सुपर 500 टूर्नामेंट था, वहां पर वो चैंपियन बनी थी। सिंधु के करियर का इंसिडेंटली जापान ओपन पहला सुपर 750 टाइटल है और 2019 में वर्ल्ड चैंपियनशिप के बाद, वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के बाद यह उनका सबसे बड़ा इंटरनेशनल खिताब है। बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट खेला सिंधु ने। पहले दौर में मलेशिया की वोंग लिंगचिंग को 21-14, 21-11 से हराया। दूसरे दौर में चीन की हान युई को 21-16, 21-14 से पराजित किया। और पूरे टूर्नामेंट को एनालाइज किया जाए फाइनल को छोड़ करके, फाइनल से पहले तो शायद हान के साथ जो मुकाबला था वो सबसे टफ था सिंधु का। क्वार्टर फाइनल में जापान की नोजोमी ओकुहारा चोटिल हो गई सिंधु के सामने और सिंधु को मिल गया वॉकओवर। सेमीफाइनल में चीन की चेन यूफी से खेल रही थी सिंधु। जब स्कोर 21-19, 15-10 था, यानी पहला गेम सिंधु जीत चुकी थी, दूसरे गेम में भी लीड कर रही थी, तभी चेन यूफी चोटिल होकर के रिटायर्ड हो गई और सिंधु फाइनल में पहुंच गई। ये टूर्नामेंट यानी कि जापान ओपन कुछ रिटायर्ड हर्ट होने वाले खिलाड़ियों की वजह से भी चर्चा में रहा, क्योंकि एनसे यंग जो कि दुनिया की नंबर एक खिलाड़ी हैं, दक्षिण कोरिया से आती हैं, मल्टीपल टाइटल्स उन्होंने जीते हैं, यहां पर भी खिताब की बड़ी दावेदार थी, वो भी चोटिल होकर के बाहर हो गई थी। तो फिलहाल फाइनल मुकाबला, जिसे कहते हैं जो जीता वही सिकंदर, और फाइनल मुकाबले में जापान की अकाने यामागुची को पराजित किया 21-17, 21-17 से। पीवी सिंधु ने टाइटल जीता, बहुत ज्यादा खुश थी, बहुत ज्यादा प्रसन्न थी पीवी सिंधु। एक लंबे अंतराल के बाद एक बेहतरीन प्रदर्शन करके, बेहतरीन प्रदर्शन उन्होंने यकीन मानिए पहले भी किया है, लेकिन टाइटल जीतना अपने आप में एक अलग ही फीलिंग देता है और उसे शब्द देना वो तो अनिर्वचनीय है, उसका बयान करना मुश्किल है। आप स्वयं सुन लीजिए पीवी सिंधु को।
1: Yeah, I'm very, very happy. I'm just out of words. I think it was 19 months, if I'm not wrong, that since the time I had won, and I think this one was very, very important to me, because playing in the finals, coming to the finals is one thing, but I think to win and stand on the podium, getting that gold is a different thing altogether. And I'm happy that I'm on the positive side, and this gives me a lot of confidence. I think I'm very, very thankful to my coach, Irvansha, and of course my parents and my support staff, and of course my husband.
0: जी हाँ, अब पीवी सिंधु के साथ एक दूसरा परिवार भी जुड़ चुका है और उनका विवाह हो चुका है, तो जाहिर सी बात है अपने श्रीमान को धन्यवाद देना तो बनता है, क्योंकि सपोर्ट सिस्टम के खिलाड़ी के साथ न केवल एक कोच के तौर पर एक व्यक्ति या पूरा सिस्टम उनके साथ रहता है, उनका जो सपोर्ट स्टाफ रहता है जिसमें मैसियो रहते हैं, फिजियो रहते हैं, वो सभी रहते हैं उनको फिटनेस को सजाने संवारने के लिए, लेकिन साथ साथ एक परिवार भी रहता है जो आपको हमेशा सपोर्ट करता है। और खेल के मैदान पर जब कहीं आपको हार का सामना करना पड़ता है, हार से दोचार होना पड़ता है, और उस समय ये जो सपोर्ट सिस्टम है परिवार का, ये बहुत मायने रखता है। और पीवी सिंधु ने सभी को धन्यवाद दिया। और ये जो पीवी सिंधु की खिताबी जीत है जापान ओपन की, ये बड़े अपॉर्चून टाइम पर आई है, ये हम इसलिए कह रहे हैं, हालांकि 23 जुलाई से यानी इसी सप्ताह से ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों का आगाज हो रहा है, शुभारंभ हो रहा है, वहां पर भारतीय खिलाड़ी भी मौजूद रहेंगे, लेकिन इंसिडेंटली बैडमिंटन उन खिलाड़ियों में शामिल है, उन खेलों में शामिल है जिन्हें राष्ट्रमंडल खेलों में इस बार एज ए मेडल इवेंट शामिल नहीं किया गया। पदक स्पर्धा के तौर पर बैडमिंटन शामिल नहीं है राष्ट्रमंडल खेलों में, लेकिन कुछ ही दिन के बाद, राष्ट्रमंडल खेलों के कुछ ही दिन के बाद एशियाई खेलों का आगाज होगा और वहां पर पीवी सिंधु के लिए ये जो जापान ओपन की जीत है ये बहुत काम आएगी, मोराल बूस्टर का काम करेगी। एक और खास बात यह है कि जापान में ही जापान की खिलाड़ी को हरा करके पीवी सिंधु ने खिताब जीता, तो स्पोर्ट्स पल्स परिवार की ओर से हम उनको मुबारकबाद प्रेषित करते हैं और उम्मीद करेंगे कि ये खिताबी जीत का सिलसिला पीवी सिंधु का आगे आने वाले समय में भी बदस्तूर जारी रहे और उनकी फिटनेस यूं ही बनी रहे।
2: इस समय आकाशवाणी दिल्ली से आप सुन रहे हैं खेल गतिविधियों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम स्पोर्ट्स पल्स।
0: एक बार फिर से आपका स्वागत स्पोर्ट्स पल्स में। चलते हैं फुटबॉल के मैदान की ओर। स्पेन की टीम ने 16 साल के बाद, जी हां 16 साल के बाद स्पेन की टीम ने फुटबॉल वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया।

0: है न्यूयॉर्क के न्यूजर्सी स्टेडियम में खेले गए फाइनल में 2022 की चैंपियन लियोनल मेसी की अगुवाई में टीम जो खेल रही थी अर्जेंटीना उसको 1-0 से हराया। स्पेन के लिए एक्स्ट्रा टाइम में फेरान टोरेस ने गोल किया, फेरान टोरेस जो कि पहले मैनचेस्टर सिटी के लिए खेला करते थे। और इसी के साथ स्पेन ने 2010 के बाद दूसरी बार ट्रॉफी अपने नाम की। 2010 में स्पेन ने नेदरलैंड को 1-0 से हराकर खिताब जीता था। आंद्री एनियस्ता जहां तक मुझे ठीक से याद आता है गोल करने वाले खिलाड़ी बने थे। और यह भी एक संयोग की बात है कि 2010 में स्पेन ने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती यानी वर्ष विश्व कप जीता, 2012 में यूरो चैंपियन बने, 2024 में फिर से यूरो चैंपियन बने और 2026 में उन्होंने फुटबॉल वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया। अब एक्स्ट्रा टाइम में इस मैच का फैसला हुआ। अगर ये मुकाबला 90 मिनट तक बराबरी पर रहा तो इसकी सबसे बड़ी वजह थी अर्जेंटीना के गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेस जो कि एस्टन विला के लिए खेलते हैं। स्पेन पूरे मैच में लगातार अटैक करते रहे लेकिन मार्टिनेस ने हर बार गोल बचाया और 106वें मिनट पे यानी एक्स्ट्रा टाइम में नीको विलियम्स का हेडर फेरान टोरेस तक पहुंचा और इस बार कोई जवाब नहीं था एमिलियानो मार्टिनेस के पास। और इसके साथ ही ये मुकाबला स्पेन ने अपने नाम किया। ये फाइनल एक तरीके से दो पीढ़ियों का मुकाबला भी कहा जा रहा था। एक तरफ 39 साल के लियोनेल मेसी थे, दूसरी ओर 20 साल के लेमिन यमाल और उनके साथ उनके जैसे ही 6-7 खिलाड़ी जो कि सभी लियोनेल मेसी को अपना आदर्श मानते थे। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा गोल किए फ्रांस के केलियन एम्बापे ने। फ्रांस टूर्नामेंट में चौथे पायदान पर रहा, इंग्लैंड से हारा 4-6 के स्कोर से। उस मैच में बकायो साका ने हैट्रिक लगाई थी, उसके बारे में जरूर बात करेंगे। एम्बापे ने पूरे टूर्नामेंट में 10 गोल किए, 4 असिस्ट। अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी 8 गोल और 4 असिस्ट के साथ दूसरे पायदान पर रहे और गोल्डन बूट मिला केलियन एम्बापे को, फ्रांस के खिलाड़ी को। गोल्डन बॉल यानी टूर्नामेंट का जो बेस्ट प्लेयर है उसका अवार्ड मिला स्पेन के रॉड्री को। गोल्डन ग्लव्स यानी टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का अवार्ड मिला स्पेन के गोलकीपर उनाई सिमोन को। एस्टॉनिशिंग परफॉर्मेंस रहा उनाई सिमोन का, 7 क्लीन शीट साथियों उनके नाम रही, सिर्फ पूरे टूर्नामेंट में 1 गोल उन्होंने खाया। तो स्पेन की टीम एक कंप्लीट पैकेज के तौर पर टूर्नामेंट में उभर करके सामने आई। युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का मिश्रण थी, एवरेज एज उनकी कम थी और उन्होंने वो करके दिखाया जिसका स्पेन के फुटबॉल प्रेमियों को 16 साल से इंतजार था। फेरान टोरेस टीम के लिए गोल करने वाले खिलाड़ी शब्द तलाश रहे थे अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए। ये है फेरान टोरेस।
1: Honestly, I can't believe it. I just try to enjoy, but I don't know what's happening. Honestly, I didn't think too much. I just saw the ball coming to me, and I just shoot with the power of all the Spanish people.
0: आपने शब्द सुने साथियों? फेरान टोरेस कह रहे थे कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं एंजॉय करना चाहता हूं, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूं। शब्द नहीं है मेरे पास। और जब गोल की बात हुई, जब उनके पास क्रॉस आया था, उन्होंने हेडर लगाया, तो उन्होंने कहा मैंने स्पेन के सारे फुटबॉल प्रेमियों की ताकत को अपने आप में समाहित करके गेंद को गोल की ओर उछाल दिया और इतिहास रच गया। स्पेन ने दूसरी बार टूर्नामेंट का खिताब जीता। स्पेन वर्ल्ड कप फुटबॉल के इतिहास में उन चुनिंदा टीमों में शामिल हो गए हैं जिन्होंने 2 बार विश्व कप फुटबॉल का खिताब जीता है। ब्राजील ने 5 बार, अर्जेंटीना ने 3 बार, फ्रांस ने 2 बार, स्पेन ने 2 बार, जर्मनी ने 4 बार, इटली ने 4 बार, ऑफ कोर्स इंग्लैंड ने 1 बार 1966 में, उरुग्वे ने 2 बार। तो ये कुछ हैंडफुल ऑफ नेशंस हैं जिन्होंने फुटबॉल वर्ल्ड कप के खिताब जीते हैं और स्पेन दूसरी बार खिताब जीतने वाला देश बन गया। बकायो साका का हमने जिक्र किया था, इंग्लैंड के खिलाड़ी, उन्होंने हैट्रिक जमाई थी तीसरे स्थान के मुकाबले में जहां पर इंग्लैंड ने फ्रांस को पराजित किया 6-4 से। बकायो साका अपनी उपलब्धि के बारे में क्या कह रहे थे, आइए जल्दी से सुन लेते हैं।
2: We deserve to finish strong for the tournament that we have. We deserve to finish in the highest position that England has seen for 60 years. And that was the mentality, and you saw that in the first half. We played a perfect first half, and ultimately that won us the game. On a personal level as well, I've worked so hard to try and get myself ready for this tournament and be available to produce moments like that. And for me, it's an incredible achievement. 3 other Englishmen that have done it. So yeah, it's a nice record to have now, and yeah, I'm proud of myself to achieve that.
0: इंग्लैंड 1966 के बाद सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा, कांस्य पदक जीता। और अब बात कर लेते हैं क्रिकेट की। भारत और इंग्लैंड की टीमों के बीच 3 वनडे इंटरनेशनल मुकाबलों की श्रृंखला खेली जा रही थी। लॉर्ड्स में 3रा अंतिम मुकाबला खेला गया। रोहित शर्मा और विराट कोहली यहां 400वां वनडे खेल रहे थे एक साथ। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी की, टॉस जीतकर 3 विकेट पर 387 रन बनाए। डकेट ने बनाए 141 रन बेथल ने योगदान दिया, 91 रन का जोरू टमराए, 74 रन पूरी सीरीज में आउट नहीं हुए।

0: और जॉस बटलर ने बनाए 41 रन। भारत 360 रन बना सका, 7 विकेट के नुकसान पर 27 रन से मुकाबला हार गया। रोहित शर्मा ने बनाए 138 रन, शुभमन गिल ने 74, विराट कोहली ने भी 74, लेकिन बाद के जो बैटर्स थे वो योगदान वो नहीं दे सके जिसकी शायद अपेक्षा उनसे थी। और टीम की जीत को श्रृंखला में टीम की जीत को शब्द दे रहे हैं इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक।
1: Extremely pleased with the way that we performed throughout this series, going 1-0 down in the first game and then the fight and the camaraderie and belief that we had, win 2-1 in the end like we did in Sri Lanka. I think credit to the team, credit to the coaches, and an outstanding performance. Yeah, it was a phenomenal batting performance, and to set that platform like they did, to give Joss the back end power that he has and the way that Rooty plays was an outstanding batting performance.
0: 2018 के बाद साथियों ऐसा पहली बार हुआ है जबकि भारत को किसी ओडीआई सीरीज में हार से दो चार होना पड़ा। बेन डकेट मुकाबले में 141 रन बनाए और बैथल के साथ पहले विकेट के लिए 192 रन जोड़े। ये हैं शतकवीर लॉर्ड्स के बेन डकेट।
2: We know we've got the players in the dressing room. Now, we weren't expecting it to be that high scoring. We were probably planning for a 250 to 300 being a good score. So, yeah, those runs down the back end of the order were crucial for us. We've batted a bit in Test cricket. It's not new. It's obviously a different format, but we've had a bit of success in the Test stuff together, and we had a great partnership at Trent Bridge before this series. We get on well, and yeah, it's worked so well.
0: तो इंग्लैंड ने भारत को 27 रन से हरा करके लॉर्ड्स में वनडे मुकाबला जीता और इसके साथ ही श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली। चलते चलते आपको बता दें कुछ बर्थडे के बारे में जो खिलाड़ी इस हफ्ते अपना बर्थडे मनाएंगे। आज नमन ओझा पूर्व क्रिकेटर अपना बर्थडे मना रहे हैं। अरुणिमा सिन्हा जो कि माउंटेनियर है वो अपना बर्थडे मना रही है। कल 21 जुलाई को संदेश झिंगन भारत के फुटबॉलर अपना बर्थडे मनाएंगे। 22 जुलाई को चिराग सेन बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन के बड़े भाई उनका बर्थडे होता है। राजेंद्र रहेलू पैरा पावर लिफ्टर 22 जुलाई को वो भी अपना बर्थडे मनाएंगे। 23 जुलाई को यजवेंद्र चहल क्रिकेटर बर्थडे मनाएंगे। 24 जुलाई को पंकज अडवाणी का बर्थडे होगा भारत के जाने माने क्यू स्पोर्ट्स के खिलाड़ी। और ट्रेंट बोल्ट और लासे वीरेन भी इस हफ्ते अपना बर्थडे मनाते हैं। फिलहाल शिवेंद्र को दे अनुमति, अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। नमस्कार।
3: Himadas has done it. India win by 137 runs. They go 2-1 up in the series.
4: Sports Pulse.
5: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे खेल गतिविधियों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम स्पोर्ट्स पल्स।

नमस्कार, आकाशवाणी रेनबो पर वक्त है मुख्य समाचार का। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। ये 13 अगस्त तक चलेगा। 25 दिन के अधिवेशन में सदन की 19 बैठक होंगी। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। इस सत्र में समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पेश किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने कल इस विधेयक के मसौदे को सर्वसम्मति से मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जनसंपर्क क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 98वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में 4 स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये इस प्रतिष्ठित वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन था। दिल्ली यातायात पुलिस ने संसद के मॉनसून अधिवेशन के मद्देनजर आज से नई दिल्ली क्षेत्र में विशेष यातायात व्यवस्था लागू करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज से शुरू हो रहे संसद सत्र के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और न ही दी गई है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्र के लिए बंगाल ने स्वतंत्रता आंदोलन, धर्म और साहित्य सहित हर क्षेत्र में समृद्ध योगदान दिया है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश

जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में अगले दो दिन अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पुरुषों के क्रिकेट में इंग्लैंड ने कल रात लंदन के लॉर्ड्स में खेले गए तीसरे वनडे मैच में भारत को 27 रनों से हराकर 2-1 से श्रृंखला अपने नाम कर ली। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फुटबॉल के जबरदस्त फाइनल में स्पेन ने अर्जेंटीना को हराकर दूसरी बार वर्ल्ड कप जीता। फेरन टोरेस ने एक्स्ट्रा टाइम में स्पेन के लिए एकमात्र गोल किया। ये थे AIR FM रेनबो पर इस घंटे के मुख्य समाचार।

ये कड़ी बिल्कुल जानी पहचानी है, शहर की कहाँ अनजाने रह जाते हैं जब हम और आप जुड़ते हैं आकाशवाणी रेनबो के इस सफर पे। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? फिट एंड फाइन, हेल्दी एंड स्मार्ट। और जरूरी है रहना आपका स्मार्ट, क्योंकि आप ही तो हैं हमारे स्टार्स और हमारे ही स्टार्स फिट एंड फाइन, हेल्दी एंड स्मार्ट रहे, बस यही दुआ रहती है। इसी दुआ के साथ मैं नूपुर कुलश्रेष्ठ स्वागत कर रही हूँ आप सभी का प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR में।

रिमझिम रिमझिम ये बरसात रुक रुक के हो रही है और इस बरसात का आनंद आप भी ले रहे हैं और आनंद लीजिए हर मौसम का। और हर मौसम में काम तो रुकता नहीं, परिस्थितियाँ जैसी भी क्यों ना हो, लेकिन सफ़र पे तो निकलना ही है, काम पर तो निकलना ही है और मौसम बदल रहा है और आप भी आनंद लीजिए इस मौसम का। बस ध्यान रखिए कुछ बातों का, कैम्ब्रेला कैरी करके जाना है, अपना ध्यान रखना है पूरी तरह से, हर तरह की बीमारी से खुद को बचाए रखना है, शरीर में थोड़ा सा भी बदलाव लगे तो फिर ध्यान देना ज़रूरी है और हर तैयारी के साथ आप सफ़र पर तैयार होकर निकल जाते हैं। और जब आप सफ़र पर निकल रहे हैं तो बिल्कुल बारिश की बूंदाबांदी और ये जो हल्की हल्की बारिश हो रही है, ये जो सिलसिला है वो बिल्कुल जारी रहेगा आज के दिन। और अधिकतम तापमान रहेगा 31 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम रहेगा 27 डिग्री सेल्सियस। और आने वाले जो 2 दिन हैं उसमें बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है, तो आप ज़रूर सावधानी बरतें और 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक हवा की जो गति है वो रहने की संभावना है, तो गर्मी और उमस से राहत आपको ज़रूर मिलेगी क्योंकि तापमान में गिरावट आई है, बदलाव हुआ है। और आप अपना पूरा ध्यान रखें और सफ़र को सुहावना बनाने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी बनती है ना। अपना सफ़र सुहावना बनाएं, मंजिल की ओर बढ़ते जाएं, कदम यूं ही आगे बढ़ाते जाएं और जुड़े रहिए हमारे साथ। आकाशवाणी रेनबो के सफ़र में आप हैं हमारे साथ और सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR।

हर सफ़र सुहावना होना चाहिए। अगर आप बस से सफ़र करते हैं तो वो भी और सुहावना होने चाहिए, और बस से सफ़र करना और भी आसान होगा क्योंकि पीएम ई ड्राइव योजना के तहत 2800 नई एसी लो फ्लोर इलेक्ट्रिक बसों की जो सेवा है वो आप तक पहुंचेगी। 1400 बसें 12 मीटर लंबी होंगी नई बसों में, और 1400 बसें 9 मीटर लंबी होंगी। 9 मीटर वाली जो बसें हैं उनको ग्रामीण इलाकों में चलाया जाएगा, जिससे कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी बेहतर होगी। और ये जो बसें हैं, ये जो सेवा है, आप तक पहुंच जाएगी। 2027 तक 1400 बसें आ जाएंगी और 28 तक सारी बसों की सेवा हम तक उपलब्ध होगी। तो है ना अच्छी बात। ऐसी और भी अच्छी अच्छी बातें, आपके काम की बातें जो ज़रूरी हैं आपके लिए जानना, बिल्कुल आपके साथ साझा करते रहेंगे। आप जुड़े रहें हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो के सफ़र में।

0: चाय बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
4: लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
5: मैं रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बनें।

जी हाँ, ये है आकाशवाणी रेनबो और आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। और गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में जानकारी जो ज़रूरी है आपके लिए जानना। और अगर आप वास्तुकला के क्षेत्र में रुचि रखते हैं तो ये खबर बिल्कुल आपके लिए है। वास्तुकला परिषद शैक्षणिक सत्र 2026-27 से जुड़ी ये सूचना है। बिल्कुल, यदि आप वास्तुकला में स्नातकोत्तर की पढ़ाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल ये खबर आपके लिए ही है। इस साल की राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित चौथी स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा जो है यानी PGETA 2026 जल्द होने वाली है। ये परीक्षा 9 अगस्त 2026 को होगी और आप कि ये जो परीक्षा है वो बहुत ही निर्णायक परीक्षा होगी क्योंकि इसकी अंतिम परीक्षा होगी इस कोर्स की। और अगर आप भी इस परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं तो जल्द से जल्द आप www.pgeta.in वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और साथ ही आप इस परीक्षा में 3 बार भाग ले सकते हैं। और परीक्षा से जुड़ी जितनी भी जानकारी है, पात्रता मानदंड जो है, परीक्षा का पूरा विवरण जो है वो आपको मिल जाएगा www.pgeta.in पर। तो आप यहाँ पर जाकर सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं क्योंकि बिल्कुल ये चौथी परीक्षा है जो कि दिनांक 9 अगस्त 2026 को आयोजित की जाएगी। आप जुड़े हमारे साथ इस सफर में जिसका नाम है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद

0: की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: मन की परतें खोल जरा बिंदास बोल आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

जी हाँ, ये है आकाशवाणी रेनबो और आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। और अगर आप भी हाथ में मोबाइल होता है और फिर भी ढूंढ रहे होते हैं कि मोबाइल कहाँ गया, और चश्मा लगा रखा है और फिर भी सोचते हैं कि चश्मा क्यों नहीं मिल रहा है, चश्मा कहाँ रख दिया, और चाबी भी कहाँ रख दी है, ये बार बार भूल जाते हैं, या फिर अभी आपने कुछ बात की और अभी आपने कहीं कुछ पढ़ा लेकिन आपको वो याद नहीं है कि क्या था, है ना। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, घबराने की ज़रूरत नहीं है कि कहीं ये ब्रेन फॉग के लक्षण तो नहीं है, क्योंकि कई बार ये आपके काम को प्रभावित करता है, आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, आपका जो ध्यान है वो एक काम में नहीं लगा रहता है, और उसकी कई वजह हो सकती हैं, अच्छी नींद ना होना, तनाव होना, या फिर कुछ आपके जो विटामिन्स हैं उनकी कमी होना। तो अच्छी नींद लेना ज़रूरी है, मानसिक जो थकान है वो भी ब्रेन के हिस्सों को प्रभावित करती है, कई हिस्सों को। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप अच्छी नींद भी ले रहे हैं और लेकिन उसके बावजूद भी जब आप सुबह उठते हैं तो आप थकान महसूस करते हैं, आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, आपके काम जो है वो प्रभावित हो रहे हैं, इनफैक्ट आपकी जो निर्णय लेने की क्षमता है वो भी प्रभावित हो रही है, आपका ध्यान एक से ज़्यादा और जगहों पर नहीं लग पा रहा है, तो फिर आप और साथ ही जो आपका इंटरेस्ट है वो काम में आ ही नहीं रहा है, तो थोड़ा सा आप ध्यान दे सकते हैं इस बात पर। और अगर कुछ ऐसी चीज़ें आपको लग रही हैं तो फिर घबराने वाली कभी कोई बात नहीं होती, बस हाँ हमें कंसल्ट करना कर लेना चाहिए एक्सपर्ट से, डॉक्टर से। तो इस तरह के अगर कोई भी सिम्टम्स आपको लगते हैं तो ज़रूर एक्सपर्ट डॉक्टर की सलाह लें और अपनी सेहत का अपना पूरा पूरा पूरा ख्याल रखें, क्योंकि अक्सर हम अपनी फैमिली में भी देखते हैं और अपने ऑफिस में भी देखते हैं कि और हो सकता है कि वो प्रेशर भी हो, लेकिन वही जानना है, ज़्यादा दिन तक हो सकता है पर नहीं हम निर्भर रह सकते, इसलिए अगर आपको कुछ भी असामान्य लगता है तो फिर डॉक्टर से सलाह लेना ज़रूरी है।

ऑफिस मीटिंग के बाद आप तनाव में आ जाते हैं और फिर कुछ लगता है कि कुछ खा लिया जाए, कुछ मीठा खा लिया जाए, या फिर आपको लगता है कि कोई टारगेट पूरा नहीं हो रहा, एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और घर वालों को समय देना है, एक बेटर जॉब के लिए स्विच करना है और बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस हैं और जिसमें आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ अच्छा खा लेता हूँ तो मेरा मन बदल जाएगा और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो फिर जो आप स्ट्रेस को भगाने के लिए खाना शुरू कर देते हैं ना, और फिर वो जो बढ़ाता है आपका मोटापा, आपका वज़न बढ़ता है, और इसको हम क्या कहते हैं आप भी जानते हैं, हम इसे इमोशनल ईटिंग कहते हैं, स्ट्रेस ईटिंग कहते हैं, कि हम किसी चीज़ से बचना चाहते हैं, उसको अवॉइड करना चाहते हैं तो हम यहाँ आ जाते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आदत है वो आपको डायबिटीज़, स्लो मेटाबॉलिज्म, हेयर लॉस और बीपी और भी कई तरह की जो समस्याएं हैं उनकी ओर ले जाती है। तो इसलिए इससे बचना ज़रूरी है अगर आप भी ऐसा करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि तनाव जब होता है तो हमारा कॉर्टिसोल जो है वो बॉडी में जो हार्मोन है उसका स्तर बढ़ जाता है, और इससे हमारा मन करता है कि हम हाई कैलोरीज वाली या जो मीठी

चीज़ें हैं वो खाएं, उसकी जो इच्छा है वो भर जाती है, लेकिन आपको इस इच्छा को पूरा कंट्रोल करना है, इसको समझना है, पहचानना है और ध्यान रखना है। और कैसे आप इसको डाइवर्ट कर सकते हैं कि आप तो सोच समझ कर भोजन करें, अगर आपको ऐसा लग भी रहा है और खाने के बाद भी अगर आपको लगता है कि आपको चिप्स या कुकीज़ खाने का मन कर रहा है, मिठाइयाँ खाने का मन कर रहा है, तो आप ऑप्शंस जो हैं वो बदल सकते हैं। आप फलों का सेवन कर सकते हैं, मेवे या दही आप खा सकते हैं, भुने चने जो हैं वो आप ले सकते हैं। और भोजन के बाद भी अगर आपको ट्रिगर हो रहा है कि कुछ खाना है, तो फिर अगेन जब कुछ इस तरह से चीज़ जब आपके कंट्रोल में नहीं रहती, तो फिर डॉक्टर की सलाह लेना बिल्कुल ठीक रहता है। लेकिन अच्छी नींद लें, तनाव से दूर रहें, अपने ब्रेन को शांत रखें, मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें, अच्छे से जो भी आपको लगता है कि आपके स्ट्रेस को कम कर सकता है उन चीज़ों की तरफ जाएं, माइंडफुल ईटिंग करें और अपने में स्ट्रेस को बैलेंस करें। अगर उसके बावजूद भी आपको लगता है कि नहीं हो पा रहा है, तो फिर ज़रूर सलाह दें। और मैं बस आपसे इतना ही कहूँगी कि अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और जीवन के सफ़र में यूं ही आगे बढ़ते रहें। और मैं भी आगे बढ़ती हूँ और रेनू अब आपके साथ जुड़ेंगी प्रोग्राम दिल के तराने गाने नए पुराने में, और उसके बाद मैचलेस म्यूजिक आवर में आपके साथ होंगी पूजा आनंद, और उसके बाद बॉलीवुड की खबरों के साथ आपके साथ जुड़ेंगी बॉलीवुड ट्रेल्स में 11:02 से लेकर 12 बजे तक आकृति खंडूरी। मैं नुपुर कुलश्रेष्ठ अब आपसे लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।

नमस्कार, पेश हैं अब तक के एफएम रेनबो मुख्य समाचार। संसद का मानसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। ये 13 अगस्त तक चलेगा। 25 दिन के अधिवेशन में सदन की 19 बैठकें होंगी। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। इस सत्र में समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पेश किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने कल इस विधेयक के मसौदे को सर्वसम्मति से मंजूरी दी। बिहार विधानसभा का 5 दिवसीय मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जनसंपर्क क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिशिनाव में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सेंडू के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 98 अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में 4 स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि ये इस प्रतिष्ठित वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन था। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज से शुरू हो रहे संसद सत्र के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और न ही दी गई है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्र के लिए बंगाल ने स्वतंत्रता आंदोलन, धर्म और साहित्य सहित हर क्षेत्र में समृद्ध योगदान दिया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने कहा है कि उसने ईरान पर नए सैन्य हमलों की शुरुआत की है। ये ईरान पर हमलों की लगातार 9वीं रात है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में अगले 2 दिन अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिले में कल बाढ़ और चट्टाने खिसकने से 11 लोगों की मौत हो गई। पुरुषों के क्रिकेट में इंग्लैंड ने कल रात लंदन के लॉर्ड्स में खेले गए तीसरे वनडे मैच में भारत को 27 रनों से हराया और 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से अपने नाम की और फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फुटबॉल के जबरदस्त फाइनल में स्पेन ने अर्जेंटीना को हराकर दूसरी बार वर्ल्ड कप जीता। फेरन टोरेस ने एक्स्ट्रा टाइम में स्पेन के लिए एकमात्र गोल किया। ये थे अब तक के एफएम रेनबो मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी
1: और आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं रेणु भट्ट दिल के तराने गाने नए पुराने में लेकर आई हूँ आप सभी के लिए बेहतरीन डांसिंग नंबर्स और वो सभी नंबर्स जो आपको पसंद है। साथ ही लगेगा 3 रेट्रो म्यूजिक गानों का तड़का, तो इस सभी के लिए आप तैयार हो जाए। इस प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे संजू राठौड़ के इस ट्रैक से। बहुत सुंदर ट्रैक है, इसका ओरिजिनल गाना भी इन्होंने गाया है, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसे धमाल 4 में रखा गया है। इस गाने को एंजॉय करते हैं और ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन बाद में

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
2: पता का चाय, गजब का स्वाद।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
3: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR। तो नहीं सुन रहे, आज सुन रहे हैं दिल के तराने गाने नए पुराने। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR का खुमार अभी तक मुझसे उतरा नहीं है और मैं चाहती हूँ कि ये खुमार आप सभी पे भी चढ़ा रहे। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो चैनल और रेणु भट्ट है आपके साथ। और अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि दिल्ली की सड़कों का हाल

क्या है। अगर आप द्वारका फ्लाईओवर पर हैं तो डेफिनेटली आप ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, और पंखा रोड पर भी आपको ट्रैफिक मिल रहा है, ईको पार्क रोड पर भी आपको ट्रैफिक मिल रहा है, शंकर रोड पर भी आप ट्रैफिक में हैं, और अगर श्री अरबिंदो मार्ग पर हैं तो भी आपको वहाँ पर ट्रैफिक मिल रहा है। अगर आप जैसे दिल्ली पुलिस की एडवाइजरी भी आई है, कई जगहों पे बैरिकेडिंग है, कई जगहों पे रास्ते डाइवर्ट किए गए हैं, आप अगर अभी घर से बाहर नहीं निकले या रास्ते में आपको ट्रैफिक मिल रहा है तो आप उसका अल्टरनेटिव रास्ता ज़रूर देखें कि आप किस तरह से कैसे आप बच के निकल सकते हैं। और अगर आप दिल्ली नोएडा डायरेक्ट फ्लाईवे पे हैं तो भी आपको हल्का फुल्का ट्रैफिक वहाँ पर मिल रहा है, शहीद भगत सिंह मार्ग पर भी आपको 6 मिनट का डिले है। यही सब बातें हुई, अगर आपके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं 9868107070 पर, 9868107070 पर आपको हमें व्हाट्सएप करना है और बताना है दिल्ली की सड़कों का हाल। और अब हम आपको बता दें कि दिल के तराने गाने नए पुराने में अब आप सुनेंगे हमारा रेट्रो म्यूजिक कतर का, किशोर कुमार की आवाज़ में एक ऐसा ट्रैक मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ जो आपको थिरकने पर मजबूर कर देगा। और जब ये फिल्म आई थी ना, उस टाइम ये फिल्म किसी को ना समझ में नहीं आई थी या पसंद नहीं आई थी, लेकिन आज जब इस फिल्म का जिक्र किया जाता है तो एक कल्ट क्लासिक में इसका जिक्र किया जाता है, इसको शुमार किया जाता है। कौन सी फिल्म है, क्या गाना है, आपको बता देती हूँ, कोई सस्पेंस नहीं रखती हूँ। ये रहा रेणु भट्ट आपके साथ।

चलिए दिल के तराने गाने नए पुराने में अब मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से हमारे फोन इन प्रोग्राम हैं जो आप सुन सकते हैं और आप उसमें पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं विद ऑल योर क्वेरीज एंड डाउट्स। हम आपको बता दें रेनबो हेल्पलाइन के बारे में, 1:02 पर आप इसे सुन सकते हैं, आकृति रहेंगे आपके साथ और हमारा आज का विषय है ड्रॉट प्रिपेयर्डनेस, हाउ कम्युनिटीज कैन बिल्ड वाटर रिजिलियंस। हमारे एक्सपर्ट रहेंगे श्री कृष्ण एस वत्स, आप मेंबर हैं और HOD है NDMA के और आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं रेडियो डॉक्टर में भी जिसमें आज हम बात करने वाले हैं डीलिंग विद ऑस्टियोपोरोसिस एंड स्पॉन्डिलाइटिस। हमारे एक्सपर्ट रहेंगे डॉक्टर अंकुर गुप्ता, सीनियर कंसल्टेंट स्पाइन सर्जन कम यूनिट चीफ ISIC और डॉक्टर उमेर अहमद खान, आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं। 3 बजे का समय है, आप इन सभी प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हम चाहते हैं आप पूरे दिन 24x7 साल के 365 दिन हमारे साथ बने रहें, हमारे सभी प्रोग्राम सुने और आप हमसे बात करें। साथ ही आपको बता दूं अल्फा जैन के बारे में जिसमें आज हम बात करेंगे UPSC एंड एम्प्लॉयबिलिटी के बारे में और हमारी गेस्ट रहेंगी स्मृति और शालिनी खंडेलवाल के साथ। आप सुन सकते हैं 4:02 पर और आप सुनते रहें हमें यानी कि FM रेनबो को, क्योंकि एंटरटेनमेंट का सिलसिला यहाँ पर खत्म होने वाला बिल्कुल नहीं है।

फिलहाल अब समय है कि मैं आपको दे दूं क्विक वेदर अपडेट। और अगर हम वेदर की बात करें, करंट टेम्परेचर की बात करें, तो 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है अभी इस वक्त दिल्ली में, और पूरा दिन आपको बादल आसमान में नजर आने वाले हैं, और ह्यूमिडिटी लेवल बहुत बहुत ज़्यादा है, बहुत गर्मी है। अपना ज़रूर ध्यान रखें इस टाइम पर, जब ह्यूमिडिटी लेवल बढ़ जाता है तो अपना ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। मैक्सिमम टेम्परेचर की नज़र डालें तो 30 डिग्री सेल्सियस ही है, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस, ज़्यादा फर्क नहीं है। नंबर भी बहुत ज़्यादा नहीं है, ऐसा लग रहा होगा कि 30 तो बहुत ही ठीक ठाक है, हम दिल्ली वाले से ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त कर चुके हैं। लेकिन क्योंकि ह्यूमिडिटी लेवल ज़्यादा है, इसलिए गर्मी का जो एक्चुअल फील है वो 30 से बहुत ज़्यादा होगा। इस बात को ज़रूर ध्यान में रखें और अपना ध्यान रखें, एक्यूआर लेवल को भी आप ध्यान में रखें। और अभी आपको 3 दिन जो है बुधवार तक आपको आसमान में बादल नजर आने वाले हैं, उसके बाद जो है थोड़ा वेदर चेंज होता हुआ फिर से नजर आएगा। जिस झमाझम बारिश के हम दिल्ली वाले इंतजार कर रहे थे ना, ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो वो इंतज़ार हमारा अभी भी बरकरार है। हाँ, सुबह से बारिश ज़रूर हो रही है, और मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया कि जब मैं निकली थी तब फुहारें हो रही थी, बौछारें गिर रही थी, लेकिन झमाझम बारिशों का दौर अभी हम दिल्ली वालों का देखना बचा है। और कब तक हमारी ये इच्छा पूरी होती है ये तो ऊपर इंद्र देवता ही जानते, लेकिन हाँ वेदर चेंज है, अपने प्रिकॉशन लेना हमारे हाथ में है, तो बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रखें और अपने अपनों का भी ध्यान रखें। और आप इंजॉय करते रहें आकाशवाणी का FM रेनबो चैनल, अभी आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने।

आई लव यू ऑल। दोस्तों ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से, शायद जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है।

ऑलराइट, अब मेरे जाने का समय हो गया, लेकिन मैं आपको जाने से पहले बता देती हूँ वो प्रोग्राम जो आप मेरे जाने के बाद आकाशवाणी के एफएम रेनबो चैनल पर सुन सकते हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे मैचलेस म्यूजिकार पूजा आनंद के साथ, और 11 बजे का समय है हमारे न्यूज हेडलाइंस का। उसके ठीक बाद यानी कि 11:02 पर आप सुनेंगे बॉलीवुड ट्रेस आकृति खंडूरी के साथ। बॉलीवुड की सभी ताजा तरीन हलचल लेकर आएंगी वो, और पूजा आपसे मिलने दोबारा आएंगी 12:02 पर वेस्टर्न म्यूजिक के प्रोग्राम प्ले इट कूल में। और आप इन सभी प्रोग्राम से हमारे साथ बने रहें और 24/7 हमारे साथ बने रहें, यही मैं चाहती हूँ, क्योंकि एंटरटेनमेंट का सिलसिला यहाँ पर खत्म होने वाला बिल्कुल नहीं है। गुड बाय एंड टेक केयर, अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: Stay tuned.
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
0: That's a beautiful track, Blue Velvet in the background. But I have to take your messages. Amazing amount of them have come in. Ravi Joshi from Meerut, thank you so much, sir. Says, very good morning. Melodious tracks. Nice presentation with a lovely voice. Makes your day, makes a day full of happiness. Dil se dil tak. I so agree. Dil se dil tak, sir. Thank you so much. Hi, Pooja. Great start to the week. Thank you, Vijayji. And happy friendship day. Same to you too, sir. There's no better friend than Rainbow and all the wonderful presenters. Yes, I'm working from home. Thanks for the tip. Keep smiling, says Vijayvanchu from Gurugram. He says, awesome music, great Bollywood song, and I'm enjoying the rain from a balcony. Rain? Well, you need to send some verse, sir. Really need the rain because it's really getting so very hot and humid. FM Rainbow Delhi, hi, RJ, good morning. Good morning to you too, sir. This is Michael Fernandez from Goa. Like the show, very nice songs played in the last 30 minutes. Finally, Spain won the FIFA World Cup. I know, everyone seemed to be up yesterday watching the show and loving the match and, of course, the great amount of football that was played over the past month. Thanks once again. Song dedicated to you and all the fans. At the moment, I'm not taking any dedications, sir, but definitely in my show at 12 noon, Play It Cool is when you can dedicate a song, and I promise I will play it for you. Very thank you going out to Rajkumar and to all the others who have been messaging in non-stop. Hey, Pooja, very good morning. Good morning to you too. Energetic opening of the program. And of course, the song Happy Together. Well, happy for you and with you. This is Dolly from Delhi. You're playing some amazing, happy and blushing songs. Well, I'm glad that you're enjoying the mush, because one thing is for sure, I'm enjoying and loving the show. Induji, a very good morning to you too and to all those others who've been playing and sending me new messages. All I can say is it's time for me to leave. I'll be back same time, same place. Yes.

प्रस्तुत हैं अभी तक के आकाशवाणी एफएम रेनबो मुख्य समाचार। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है। ये 13 अगस्त तक चलेगा। 25 दिन के सत्र में सदन की 19 बैठकें होंगी। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज से शुरू हो रहे संसद सत्र के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और न ही दी गई है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने जानकारी दी है कि राजीव चौक और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर अब इंटरचेंज सुविधाएं चालू हैं और गेट खुल गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिशिनाव में मोल्डोवा के राष्ट्रपति माया सांडू के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू मोल्डोवा संसद के अध्यक्ष ईगोर ग्रोसू से भी मिलेंगी और मोल्डोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 58वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में 4 स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी है और श्री मोदी सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि ये इस प्रतिष्ठित वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन था। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज स्वतंत्रता सेनानी बटुकेश्वर दत्त की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने कहा है कि उसने ईरान पर नए सैन्य हमलों की शुरुआत की है। ये ईरान पर हमलों की लगातार 9वीं रात है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में अगले 2 दिन अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली और हरियाणा में भी तेज बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिले में कल बाढ़ और चट्टानें खिसकने से 11 लोगों की मौत हो गई। पुरुषों के क्रिकेट में इंग्लैंड ने कल रात लंदन के लॉर्ड्स में खेले गए तीसरे वनडे मैच में भारत को 27 रनों से हराया और 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से अपने नाम की। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फुटबॉल के जबरदस्त फाइनल में स्पेन ने अर्जेंटीना को हराकर दूसरी बार वर्ल्ड कप जीता। फेरन टोरेस ने एक्स्ट्रा टाइम में स्पेन के लिए एकमात्र गोल किया। ये थे अभी तक के आकाशवाणी एफएम रेनबो मुख्य समाचार।

बॉलीवुड की चटपटी अटपटी मजेदार जायकेदार खबरें जिसे सुनते हैं आप सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर बॉलीवुड ट्रेल्स में, जिसे 102.6 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप सुन सकते हैं या फिर न्यूज ऑन एयर ऐप पर। देश या दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो आप जुड़े रह सकते हैं आकाशवाणी रेनबो से, और बॉलीवुड की चटपटी बातों के साथ ही बॉलीवुड सरताज बनने का मौका भी मिलता है इस घंटे आपको। तो प्रोग्राम से जुड़े रहिए, प्रोग्राम में शेयर की गई बातों को ध्यान से सुनिए, क्योंकि उन्हीं में छुपा होगा हमारा आज का सवाल भी, जो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर सबसे पहले सही जवाब के साथ पहुंचाकर बन सकते हैं आज के बॉलीवुड सरताज।

बॉलीवुड न्यूज में बॉलीवुड की पहली अपडेट हम तक आ रही है आहान शेट्टी के बारे में। फिलहाल कहा जा रहा है कि आहान शेट्टी का अगला जो प्रोजेक्ट है वो अनाउंस हो गया है और विक्रम भट्ट की अगली प्रोजेक्ट जो है उसके लिए उन्होंने आहान शेट्टी को साइन किया है। फिलहाल विक्रम भट्ट जिनके हाल ही में रिलीज हुई हॉन्टेड घोस्ट ऑफ द पास्ट, कुछ चर्चा भी हुई, कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कलेक्शन ये फिल्म कर गई है और अब विक्रम भट्ट ने अपनी अगली हॉरर फिल्म का ऐलान कर दिया है और वो अपनी इस पॉपुलर फ्रेंचाइजी 1920 को ही आगे बढ़ा रहे हैं और 1920 विंटर इज कमिंग इसकी अनाउंसमेंट हो गई है और साथ ही साथ ये भी खबर पक्की हो गई है कि विक्रम भट्ट की इस अगली हॉरर फिल्म में आहान शेट्टी की भी एंट्री हो गई है। आहान के बारे में आपको पता ही होगा, आखिरी बार बॉर्डर 2 में नजर आए थे, उनकी एक्टिंग की खासी जो है सराहना की गई थी और आहान शेट्टी ने डायरेक्टर शाद अली से रोमांटिक ड्रामा फिल्म के लिए भी हाथ मिलाया, ये भी खबर है। और फिलहाल जो आहान है उन्होंने 2021 में तड़प फिल्म से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था। मिलान लुथारिया ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था, तारा सुतारिया भी उनके साथ थी और उसके बाद वो अनुराग सिंह की डायरेक्ट की गई वॉर ड्रामा फिल्म बॉर्डर 2 में नजर आए थे और उस फिल्म में उन्होंने एक नेवल ऑफिसर का किरदार निभाया था। काफ़ी उनको तारीफ की गई थी उनकी एक्टिंग की, इनफैक्ट कुछ अवार्ड्स भी उनको इस फिल्म के लिए मिले थे। फिलहाल विक्रम भट्ट की नेक्स्ट हॉरर मूवी में आहान शेट्टी की एंट्री हो चुकी है। ये ट्रैक आपके लिए फिल्म तड़प से।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
2: मैं रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

आकाशवाणी रेनबो पर सुन रहे हैं आप बॉलीवुड ट्रेस, और बॉलीवुड ट्रेस में बॉलीवुड की लेटेस्ट अपडेट्स, कौन सी फिल्म कब रिलीज होने वाली है, कौन सी फिल्म का कास्ट कौन क्या फाइनल हो चुका है, एवरी लेटेस्ट अपडेट मिलती है आपको आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर, जिसे आप सुन सकते हैं न्यूज ऑन एयर पर या फिर वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। देश या दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, आप जुड़े रह सकते हैं आकाशवाणी रेनबो से। और फिलहाल अगली अपडेट है आमिर खान प्रोडक्शन की अगली फिल्म बंटवारा 1947 के बारे में, जो इस साल की सबसे ज्यादा इंतजार की जा रही फिल्मों में से एक है। और इस फिल्म का जो टीज़र है वो रिलीज़ कर दिया गया है, और बहुत ही हाई वोल्टेज ड्रामा की एक और दमदार झलक इसमें देखने को मिलती है। सनी देओल एक ऐसे किरदार में नज़र आ रहे हैं जो हर मुश्किल का सामना करते हुए अपनी फैमिली की रक्षा के लिए डट कर खड़ा हुआ है, और इसके

फिल्म में सनी देओल के अलावा शबाना आजमी, प्रेटी जिंटा, करण देओल, अली फाजल और अभिमन्यु सिंह जैसे दमदार कलाकार भी नजर आएंगे। और खास बात यह है कि 30 सालों के बाद यानी कि 3 decades के बाद राजकुमार संतोषी और सनी देओल की जोड़ी एक बार फिर से साथ में आई है। आमिर खान प्रोडक्शन के बैनर के तले बनी ये फिल्म 1947 बंटवारा, इसका डायरेक्शन जो है वो राजकुमार संतोषी कर रहे हैं, नेशनल अवार्ड विजेता भी हैं। म्यूजिक AR रहमान ने दिया है और इस फिल्म को आमिर खान और अपर्णा पुरोहित ने साथ में प्रोड्यूस किया है। और ये फिल्म दुनिया भर में 14 अगस्त 2026 के मौके पर रिलीज की जाएगी।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

बॉलीवुड रील सुन रहे हैं आप आकाशवाणी रेनबो पर 102.6 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर या फिर न्यूज ऑन एयर ऐप या फिर वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म किसी पर क्यों ना हो, आप देश या दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, आप जुड़े रह सकते हैं आकाशवाणी रेनबो से। और अगली अपडेट बॉलीवुड की हम तक आ रही है उन एक्टर एंड एक्ट्रेसेस के बारे में जिन्होंने बॉलीवुड की दुनिया में काफी लंबे समय से ब्रेक ले रखा था, लेकिन बहुत ही जल्द अब अपनी फिल्मों के साथ कम बैक करने वाले हैं। और कौन है ये एक्टर एंड एक्ट्रेसेस, पेश है ये खबर आपके लिए। सो सबसे पहला नाम इसमें आता है गोविंदा का, हीरो नंबर वन। उन्होंने ऑफिशियली ये अनाउंसमेंट कर दी है कि वो फिल्म रूपा के साथ बॉलीवुड के सिल्वर स्क्रीन पर आ रहे हैं और इस फिल्म में न सिर्फ वो एक्टिंग कर रहे हैं बल्कि उसे प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। और उन्होंने एक नई एक्ट्रेस रानी स्वर्णकार को लीड एक्ट्रेस के रूप में पेश भी किया है। और

अगर उनकी बात करें गोविंदा की, तो लास्ट टाइम 2019 में नजर आए थे. रंगीला राजा फिल्म थी और 7 साल के बाद चीची की वापसी हो रही है. अगला इस फेहरिस्त में नाम आता है इमरान खान का. बॉलीवुड के चॉकलेट बॉय इमरान खान भी 2015 से वो बॉलीवुड में नज़र नहीं आए, 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं. फिलहाल वीर दास की फिल्म हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस में कैमियो रोल के साथ स्क्रीन पर वापसी उन्होंने की थी. लेकिन असली जो प्रॉपर वे में उनकी वापसी हो रही है वो है ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म अधूरे हम अधूरे तुम. और इस फिल्म को, जिसे ब्रेक के बाद के डायरेक्टर दानिश असलम हैं वही डायरेक्ट कर रहे हैं. और भूमि पेडनेकर इस फिल्म में उनके साथ इमरान के साथ लीड रोल पे हैं. इमरान इस फिल्म को प्रोड्यूस भी कर रहे हैं. और कम बैक करने वालों में प्रीति जिंटा का भी नाम आ गया है और वो एक नहीं बल्कि दो शानदार प्रोजेक्ट्स के साथ वापसी कर रही हैं. कुछ ही देर पहले हमने आपको बताया था कि 14 अगस्त को रिलीज होने वाली फिल्म बंटवारा 1947 में वो नजर आएंगी. और इसके साथ ही कुणाल खेमू के डायरेक्शन में बन रही ओटीटी फिल्म वाइब, इसका भी हिस्सा उन्हें बताया जा रहा है कि कॉमेडी ड्रामा फिल्म है और इसमें भी वो लीड एक्ट कर रही हैं. और सेलेना जेटली, इनके बारे में भी खबर आई है सिस्टर निवेदिता की, इस फिल्म में वो नजर आएंगी जिसमें वो स्वामी विवेकानंद की आयरिश मूल की शिष्या की बायोपिक है ये. और इसमें वो हैं, इस फिल्म को नेशनल अवार्ड जीतने वाले फिल्म मेकर राम कमल मुखर्जी डायरेक्ट कर रहे हैं. तो बहुत से जाने माने कलाकार हैं जो काफ़ी लंबे अरसे के बाद कमबैक कर रहे हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में. लेट्स वेट एंड देखते हैं कैसा रहेगा उनका ये कमबैक का जर्नी.

जय बॉलीवुड रील्स पे अब वो मौका वो पल आ चुका है जब हम आपको क्या मौका देने वाले हैं, बॉलीवुड सरताज बनने का मौका देने वाले हैं। पूछने वाले हैं आपसे एक सवाल, हमारे जो पुराने सुनने वाले हैं वो तो तैयार बैठे होंगे अपने अपने फोन्स के साथ कि कौन सा सवाल है, और सबसे पहले जवाब पहुंचाने के लिए उन्हें नंबर भी हमें पता है, लेकिन नए जुड़ने वालों को बता दें हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070 पर, जिसमें अब जो मैं सवाल आपसे पूछ रही हूँ उसका सही जवाब आपको हम तक पहुंचाना है। तो सवाल पेश है कि अहान शेट्टी की लास्ट फिल्म जो रिलीज हुई थी बॉलीवुड में उसका क्या नाम है। हमने आपको बताया था कि विक्रम भट्ट के अपकमिंग प्रोजेक्ट में वो हिस्सा लेने वाले हैं, अहान शेट्टी की एंट्री हो गई है। वो तो खैर फिल्म अभी बनेगी, लेकिन लास्ट टाइम बॉलीवुड स्क्रीन पर अहान शेट्टी किस फिल्म के साथ आए थे, उनकी इस फिल्म का नाम क्या है। हिंट आपको दे देती हूँ, जनवरी में इसी साल रिलीज हुई थी ये फिल्म, और इस फिल्म में अहान ने इंडियन नेवी ऑफिसर का किरदार निभाया था, बहुत तारीफ हुई थी। एक और हिंट चाहिए क्या? अच्छा दे ही देती हूँ। और अगला हिंट यह है कि इस फिल्म में उनके साथ सनी देओल थे, दिलजीत दोसांझ थे, वरुण धवन भी थे। तो बताइए मुझे अहान शेट्टी की इसी साल जनवरी में रिलीज हुई फिल्म का नाम क्या है, हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
2: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
3: म्यूजिक मस्ती।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: सबसे पहले इस सवाल का सही जवाब जो कि है बॉर्डर टू बताकर आज के प्रोग्राम में बॉलीवुड सरताज बन रहे हैं सुखलाल बाला जो कि वेस्ट बंगाल से हमसे जुड़े हैं। बहुत बहुत बधाई हो आज का बॉलीवुड सरताज बनने के लिए सुखलाल बाला साहब को। जी हाँ, लेकिन उसके अलावा भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस सवाल का सही जवाब हम तक पहुंचाया है। उन सभी का नाम जरूर लेना चाहूंगी। तरुण कोहली साहब ने मेरठ से हम तक सही जवाब पहुंचाया है। सलीम मलिक साहब का भी सही जवाब आया है। इसके अलावा अनूप साहू ने हम तक मैसेज किया है। भावना शालीमार बाग से हमसे जुड़ी हैं, बॉर्डर टू कहने वाले हैं। प्रवीण चौहान मध्य प्रदेश से, निकिता पारेकर पुणे से, धर्म भाटिया जी, बसंत तोमर, हरीश गौड़ साहब बॉर्डर टू के साथ, अजय खन्ना साहब अम्बाला से हमसे जुड़े हैं जिन्होंने इस सवाल का सही जवाब हम तक पहुंचाया है। राजकुमार के संतानी साहब, मोनिश इद्रिसी गुजरात से, दीप्ति, नरेंद्र सोनी देवगढ़ पटियाला से, इसके अलावा इंडियन आर्मी से मोहित है। ऑल राइट, बॉर्डर टू इस सवाल का सही जवाब है। अगला मैसेज हम तक रवि जोशी साहब का मेरठ से आया है। फुरकान साहब का सही जवाब आया है, बॉर्डर टू के साथ कहने वाले हैं। उमेश कुमार साहब जिन्होंने हम तक इस सवाल का सही जवाब दिया है। लेकिन आज के प्रोग्राम में बॉलीवुड सरताज बन रहे हैं सुखलाल बाला वेस्ट बंगाल से।
1: बाग बहारा मेरा यारा,
0: बॉर्डर टू से ये ट्रैक आपके लिए।

और इसी के साथ बॉलीवुड टेल्स में मुझे यानी आकृति को दीजिए विदा। कुछ ही मिनटों में 12:02 पर पूजा आनंद आपके साथ रहेंगी प्लेट कूल लेकर। 1:02 पर रेनबो हेल्पलाइन में मैं ही आपके साथ रूबरू होंगी और आज हम बात करेंगे सूखे की तैयारी के बारे में, ड्रॉट प्रिपेयर्डनेस, हाउ कम्युनिटीज कैन बिल्ड वाटर रेजिलियंस। हमारे एक्सपर्ट श्री कृष्ण एस वत्स, जो कि मेंबर NHODs हैं NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, वो हमारे साथ होंगे। और इसके अलावा आशियाना प्रोग्राम में 2:02 पर शालिनी खंडेलवाल रहेंगी आपके साथ। और रेडियो डॉक्टर में दोपहर बाद 3:00 आज बात होगी डीलिंग विद ऑस्टियोपोरोसिस और स्पॉन्डिलाइटिस। और हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गुप्ता, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं, स्पाइन सर्जन कम यूनिट चीफ हैं ISIC, और डॉक्टर ओमिर अहमद खान, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं, इस प्रोग्राम में इस विषय में जानकारी देंगे।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
2: मैं रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: चाय बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
3: मैं रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, आज की रात मजा, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
6: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

इसे पहले हंगामा के बीच सदन की कार्यवाही रोक दी गई थी। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। 25 दिन के सत्र में सदन की 19 बैठकें होंगी। संसद के मॉनसून सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज से शुरू हो रहे संसद सत्र के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और न ही दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिशनाव में मोल्डोवा के राष्ट्रपति मायो संडू के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू मोल्डोवा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से भी मिलेंगी और मोल्डोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 58वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में 4 स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि ये प्रतिष्ठित वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन था। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज स्वतंत्रता सेनानी बटुकेश्वर दत्त की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल एसआईटी ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपनी स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की है। पंजाब सरकार ने मनरेगा से विकसित भारत जी राम जी योजना में सुचारू परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक व्यवस्था की है। ये योजना 1 जुलाई से पंजाब में लागू हुई। अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने कहा है कि उसने ईरान पर नए सैन्य हमलों की शुरुआत की है। ये ईरान पर हमलों की लगातार 9वीं रात है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में अगले 2 दिन अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली और हरियाणा में भी तेज बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिले में कल बाढ़ और चट्टानी खिसकने से 11 लोगों की मौत हो गई। पुरुषों के क्रिकेट में इंग्लैंड ने कल रात लंदन के लॉर्ड्स में खेले गए तीसरे वनडे मैच में भारत को 27 रन से हराया और 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से अपने नाम की। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फुटबॉल के जबरदस्त फाइनल में स्पेन ने अर्जेंटीना को हराकर दूसरी बार वर्ल्ड कप जीता। फेरन टोरेस ने एक्स्ट्रा टाइम में स्पेन के लिए एकमात्र गोल किया। तो ये थे अभी तक के आकाशवाणी रेनबो मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: रेनबो हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं आकृति खंडूरी और कहना आपसे यही चाहती हूं कि पानी जीवन की सबसे अनमोल पूंजी है। आप भी यही मानते हैं ना? आज यही अमूल्य जल हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर खड़ा है। देश के कितने ही हिस्से हैं जहां बारिश की कमी है, कहीं नदियां सूख रही हैं तो कहीं ग्राउंड लेवल वाटर लगातार नीचे होता जा रहा है। सूखा केवल पानी की कमी का नाम नहीं है, ये खेती, एनवायरनमेंट, समाज, आप पर, हम पर, सभी पर गहरा प्रभाव डालता है। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या हम केवल बारिश का इंतजार करें या फिर आज से ही ऐसी तैयारियां शुरू कर दें कि पानी की कमी का डटकर मुकाबला किया जा सके। रेनबो हेल्पलाइन में आज हमारा टॉपिक है ड्रॉट प्रेपरेशंस, हाउ कम्युनिटीज कैन बिल्ड वाटर रेजिलियंस, यानी कि सूखे से निपटने की तैयारी और उससे उभरने की सामुदायिक क्षमता। इस विषय पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ फोन पर उपस्थित रहेंगे श्री कृष्ण एस वत्स, जो कि मेंबर हैं, एचओडी हैं एनडीएमए यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के। और आप उनसे सूखे से निपटने की तैयारी में आप और हम मिलकर क्या कर सकते हैं, इस विषय पर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो जरूर हमसे जुड़िएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070, जिस पर आप अपने मैसेजेस हम तक पहुंचा सकते हैं, अपने सवालों को, अपनी क्वेरीज को हम तक पहुंचा सकते हैं। और इसके अतिरिक्त हमारा टोल फ्री नंबर भी है 1800110

1026 जिस पर आप हमें फोन करके अपने सवालों को श्री वत्स तक भी पहुंचा सकते हैं। सबसे पहले मैं श्री कृष्ण एस वत्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ रेनबो हेल्पलाइन में। नमस्कार सर। नमस्कार। मेरे ख्याल से उन तक हमारी आवाज़ जो है अभी तक नहीं पहुंच पा रही है। उनसे हम ज़रूर मुलाकात करेंगे, बात करेंगे, क्योंकि सूखे से निपटने की तैयारियां जिस पर हम सोचते हैं कि शायद आपका और हम कर क्या सकते हैं, ये तो सरकारों का काम है, लेकिन ऐसा नहीं है। कम्युनिटीज सामुदायिक रूप पर एक से एक हाथ मिलाकर आगे बढ़ेंगी तो ज़रूर सूखे से निपटने में का हम डट कर मुकाबला कर सकते हैं। यही रेनबो हेल्पलाइन पर आज का विषय है। 9868107070 हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप अपने सवालों को हम तक पहुँचा सकते हैं।

रेनबो हेल्पलाइन में आज बात हो रही है सूखे से बचाव की और पानी की सुरक्षा की। पानी जिसकी बूंद बूंद कीमती है और पानी की कमी से बचने के लिए केवल सरकार ही नहीं बल्कि आपकी और हमारी यानी कि पूरे समाज की तैयारी की जरूरत है। ड्राउट प्रिपेयर्डनेस, हाउ कम्युनिटीज कैन बिल्ड वाटर रेजिलियंस, यही हमारा आज का विषय है, सूखे से निपटने की तैयारी और उससे निपटने की सामुदायिक क्षमता। श्री कृष्ण एस वत्स साहब जो कि मेंबर हैं और HOD हैं NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, हमारे साथ फोन पर उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका।

0: हेलो, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपको हमारी आवाज पहुंच पा रही है?
1: अभी थोड़ा और थोड़ा अगर थोड़ी धीरे
0: जी, मैं
1: आ रही, काफी आवाज धीरे आ रही है थोड़ा अगर।
0: अच्छा, मैं टेक्निकल डिपार्टमेंट से बात करती हूँ, लेकिन पहला सवाल सर आपसे यही पूछना चाहूंगी कि
1: मेरी आवाज आ रही है आप तक?
0: मुझे आपकी आवाज बहुत क्लियर आ रही है, बहुत क्लियर आ रही है।
1: अच्छा ठीक।
0: तो जी, आपसे यही पूछना चाहूंगी कि जो सूखे की स्थिति है देश में वर्तमान, मानसून आ चुका है यूं तो, लेकिन सूखे की स्थिति क्या है ये आपसे जानना चाहूंगी। पहला सवाल तो मेरा यही होगा।
1: इस वर्ष देश में एलनीनियो का प्रभाव के बारे में एक साधारण अनुमान था।
0: जी
1: भारतीय मौसम विभाग है जो हमारी जो केंद्रीय अर्ली वार्निंग एजेंसी है, इन्होंने ऐसा कहा था कि देश में इस साल बारिश कम होने की संभावना है क्योंकि एलनीनियो का प्रभाव देश पर रहेगा, और जो अभी तक स्थिति बनी है उसमें वह दिख रहा है कि बारिश जो है अपेक्षा के हिसाब से कम हुआ है।
0: जी
1: तो एक तो जून में बारिश कम हो गई थी, काफी करीब करीब 30% बारिश कम हुई जून में। जून में मानसून का आगमन होता है तो जितनी बारिश की अपेक्षा थी जून में उससे 30% कम हुई है, लेकिन जुलाई में बारिश का परिमाण जो है वो बढ़ गया है, और वो जो है जो सूखे की स्थिति थी उसमें उसमें कुछ कमी आई है। फिर भी पूरे देश में जो है, पूरे देश को अगर देखें तो जो अपेक्षा के हिसाब से 24% बारिश कम हुई है, उसका ज्यादा असर जो है सो पूर्व और जो उत्तर पूर्व के राज्यों में है, वहाँ करीब करीब 35% की कमी है। फिर जो उत्तर पश्चिम भाग है वहाँ भी 23% कमी है, जो दक्षिण राज्य है उसमें 27% की कमी है, और केंद्रीय भाग है उसमें 14% की कमी है। तो कुल मिला जुला करके देश में जो है अपेक्षा से 24% बारिश कम हुआ है, और हालांकि जुलाई में काफी बारिश हुई है, और जुलाई में जो बारिश हुई है उसके परिणाम स्वरूप जो है फसलों की बुआई का काम भी शुरू हो गया है, और स्थिति बेहतर हुई है, लेकिन फिर भी जैसा कहा गया अपेक्षा से कम बारिश हुई है, और इसका ना परिणाम पानी की जो स्थिति है उस पर जरूर होगा।
0: जी, हमारे जो श्रोतागण हैं उनके सवाल भी हम तक आने शुरू हो गए हैं सर। तो एक तो सवाल ये हो रहा है कि भाई सूखे का जो असर है वो किसानों पर तो यकीनन पड़ता ही है, लेकिन आम आदमी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और हम इसके लिए क्या योगदान कर सकते हैं? आम नागरिक जो है वो क्या योगदान कर सकता है?
1: देखिए, आम आदमी जब बारिश कम होती है तो है ना पानी की उपलब्धता पर उसका सीधा उससे प्रभावित होते हैं। तो एक तो होता है कि हमारे जो जलाशय हैं, बड़े जलाशय, बड़े जलाशयों में जो पानी की मात्रा है वो कम हो जाती है, उसके कारण जो जल आपूर्ति है उस पर थोड़ा सा असर पड़ता है। हमारे राज्य सरकारों का, केंद्र सरकार का यह पूरा प्रयास रहता है कि इन जलाशयों में जो पानी की व्यवस्था है उसको हम अच्छे से उसको रैशनलाइज करके जो पानी जल आपूर्ति है उस पर कोई असर ना आए, और इसके लिए हम जो आवश्यक व्यवस्था करें, जल का जितना ज्यादा ज्यादा से ज्यादा है उसको हम स्टोर करें, और जो सरफेस वाटर है, जो सतह पर जो पानी रहता है उसको हम अच्छे से उसको कंजर्व करें, उसका सदुपयोग करें, तो पानी की जो जो स्थिति है वो पानी आपूर्ति की जो स्थिति है वह ठीक ठाक बनी रहती है। नागरिकों का यह कर्तव्य हो जाता है कि जो पानी उपलब्ध होता है उसका हम अच्छे से इस्तेमाल करें, पानी का दुरुपयोग ना करें, और है ना जब ऐसी स्थिति आ गई है कि जहां बारिश कम हो रही है, तो जो पानी का संग्रह है उसको ध्यान में रखते हुए हम पानी कम खर्च करें, उसमें मितव्ययता बरतें।
0: जी जी, कुछ ऐसा ही सवाल राजेश यादव साहब का कानपुर से हम तक आया है, और वो ये कहते हैं कि अगर किसी कॉलोनी में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा नहीं है तो ऐसे में हम इस विषय के संबंध में क्या कर सकते हैं?
1: तो अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था नहीं है तो एक तो करनी चाहिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग, दूसरा यह है कि कम से कम वो इस तरह से हम करें कि जो जो पानी आपके कॉलोनी में आ रहा है उसको जमीन के अंदर तक जाने दें, वो आपकी कॉलोनी से बाहर ना निकल जाए। न पानी को रोकना और रोक करके जो जो ग्राउंड वाटर लेवल है ना, जो जल के अंदर जो पानी का सतह है उसको हम कैसे ज्यादा ऊंचा कर सके, पानी का ज्यादा दुरुपयोग जो है हम बोरवेल के माध्यम से जो पानी ज्यादा ना निकालें, पानी का के सतह को बनाए रखें, तो इसके कारण जो है वो पानी का स्तर जो है वो बढ़ता रहेगा, जो जमीन के अंदर जो पानी है जिस पर हम काफी कुछ निर्भर करते हैं वह जब वह बना रहता है और उसके कारण जो है पानी हमेशा उपलब्ध रहता है। तो एक तो कि पानी का हम ठीक से इस्तेमाल करें, दूसरा जो पानी जमीन के अंदर जाने दें, और तीसरा यह कि बोरवेल के माध्यम से हम पानी को ज्यादा ना निकालें। तो ये तीनों अगर हम करेंगे तो पानी का सतह बना रहेगा, व्यक्तिगत स्तर पर सामाजिक स्तर पर हमारी हमारा उत्तरदायित्व तो बनता है कि हम पानी को ज्यादा से ज्यादा रिस्टोर करें, कंजर्व करें
0: जी,
1: और उसका सही इस्तेमाल करें।
0: जी, सूखे से निपटने की तैयारियां, यही रेनबो हेल्पलाइन में आज का विषय है, और सूखे से निपटने की तैयारी केवल सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है। हम आज ये बात कर रहे हैं कि आप और हम मिलकर इस दिशा में बहुत कुछ कर सकते हैं। श्री कृष्ण एस वस, जो कि मेंबर हैं और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, हमारे साथ फोन पर उपलब्ध हैं। आपके सवाल हम तक लगातार पहुंच रहे हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। इस पर आपकी क्वेरीज जो हैं आप हम तक पहुंचाइए और मेरे माध्यम से पहुंचेंगी श्री कृष्ण एस वत साहब तक, और आपके इन सभी सवालों का जवाब आपको आज के प्रोग्राम में ज़रूर मिलेगा, और साथ ही साथ हमें बहुत सी वो टिप्स भी मिलेंगी जिससे हम सामुदायिक रूप से जल संरक्षण को कर सकते हैं। श्री वत साहब जुड़े रहिएगा हमारे प्रोग्राम से। फिलहाल एक म्यूजिकल ब्रेक मैं ले रही हूँ और फिर आपसे बातचीत करूँगी।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
2: पता का चाय, गजब का स्वाद।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: रेनबो हेल्पलाइन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आकृति खंडूरी और कहना आपसे यही चाहती हूँ कि बदलता मौसम, घटती बारिश और पानी की बढ़ती मांग, ये सिग्नल है कि वाटर कंजर्वेशन जो है केवल ऑप्शन नहीं है, जरूरत है आज की। और रेनबो हेल्पलाइन में आज हम यही समझ रहे हैं कि सूखे से निपटने की तैयारियां पहले ही कैसे की जाए और अपने भविष्य को सुरक्षित कैसे बनाया जाए, और ऐसे में आपकी और हमारी क्या जिम्मेदारी है, सामुदायिक रूप से आप और हम क्या कर सकते हैं जल संरक्षण के लिए। हमारे साथ हमारे आज के खास मेहमान श्री कृष्ण एस वत्स साहब फोन पर उपस्थित हैं, और आप मेंबर और HOD हैं NDMA यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में। और सर, बहुत से सवाल हम तक पहुंच रहे हैं, नए जुड़ने वालों को बता देते हैं 9868107070 हमारा वो नंबर है जिस पर आप अपने सवालों को, सूखे से निपटने की तैयारी में आप और हम क्या कर सकते हैं इस विषय में अगर आपके कुछ सवाल हैं तो जरूर हम तक पहुंचाइए। फिलहाल सर, पशुओं के लिए पानी की बहुत कमी हो जाती है जब तेज गर्मी होती है, तो ऐसे में क्या किया जा सकता है?
3: एक तो कि पशुओं के लिए पानी की अलग से व्यवस्था थोड़ी करनी चाहिए, और वो उसके लिए जो है आप जलाशयों का उपयोग कर सकते हैं, और वहां से एक जब कभी सामुदायिक स्तर पर भी मान लीजिए अगर सारे पशुओं के लिए पानी लाया जा सकता है और उनको पानी दिया जा सकता है, तो एक तो पशुओं को और पानी के अलावा फॉडर की भी जरूरत होती है, और सूखे में अक्सर जो है ना चारे का भी की भी किल्लत होती है, चारे की भी आवश्यकता होती है, तो

0: चारे के लिए एक अलग से वो हमें बुआई करनी चाहिए, चारे का एक अलग से अभियान करना चाहिए ताकि चारा उपलब्ध हो। पशुओं के स्वास्थ्य की हमें सरकार की भी चिंता रहती है और सरकार इसके लिए ढेर सारे कदम उठाती है, कई जगह चारे की आपूर्ति की व्यवस्था की जाती है। तो आप सरकार से भी हम संपर्क कर सकते हैं कि चारे की व्यवस्था और ज्यादा से ज्यादा की जा सके और चारे के साथ साथ पानी की भी व्यवस्था की जा सके, सामुदायिक व्यवस्था की जा सके ताकि हम अपने पशुओं को बचा सकें।
1: जी जी।
0: तो यह तो पशुओं के लिए है, किसानों के लिए भी जो किसान हैं और वो अपनी बुआई ठीक से नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पानी की समस्या है, तो वो जो वैकल्पिक जो क्रॉप्स हैं, वैकल्पिक फसल वो ले सकते हैं, दलहन तिलहन ये जो सारे जो हैं जिनमें पानी की आवश्यकता कम होती है तो ऐसे फसलों को लगा सकते हैं। जब ऐसे फसल लगाते हैं तो हमें इससे हमें चारे में भी मदद मिलती है, इन फसलों का बाद में चारे के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मतलब एक वैकल्पिक कृषि व्यवस्था की आवश्यकता होती है और इसके लिए हम सरकार जो है एडवाइजरी इश्यू करती है और यह अपेक्षा रहती है कि थोड़ा अगर पानी कम हो रहा हो तो धान जैसे जो है ना जो फसल है जिसमें ज्यादा पानी की आवश्यकता है वो थोड़ा कम करें, और ऐसे फसल जहां पानी की कम आवश्यकता होती है वो ऐसे फसल लें। तो एक पूरी कृषि व्यवस्था की बात हम यहाँ कर रहे हैं जिसमें फसलों को अच्छी तरह से हम उसका ये कर सके, एक वैकल्पिक फसल की व्यवस्था कर सके और पशुओं की व्यवस्था कर सके।
1: जी, पैंथर तोमर साहब का किशनगंज दिल्ली से हम तक एक सवाल पहुंचा है और वो आपसे पूछना चाहते हैं कि सरकार द्वारा सूखे से प्रभावित क्षेत्रों के लिए किस तरह के सहायता कार्यक्रम चलाए जाते हैं, तो कुछ तो आपने खैर अभी मेंशन ही किया है।
0: जी, एक तो कृषि विषय जहाँ आप कई किसानों को बीज की आवश्यकता होती है तो वो बीज दिए जाते हैं क्योंकि उनको फिर से बुआई करनी पड़ती है, तो वो सीड्स की व्यवस्था करना बहुत ही आवश्यक होता है। दूसरा जो है कि आप ना किस तरह से ज्यादा सिंचाई की व्यवस्था कर सकें और जरूरत पड़ने पर हम किसानों के लिए बिजली की भी व्यवस्था कर सकें ताकि वो ना अपना बोरवेल चला सकें, लेकिन ये सब कुछ हमें एक संतुलन के साथ करना पड़ता है। इसके साथ साथ मैंने कहा जैसे कि पशुओं के लिए आवश्यक व्यवस्था वो जरूरी होती है, और फिर जो है कि हम जो लोगों के पानी की व्यवस्था वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वो प्राथमिकता होती है, बहुत ही आवश्यक प्राथमिकता होती है, और जहाँ कहीं भी गांव में इस तरह की पानी की दिक्कतें आती है वहाँ सरकार टैंकर्स की व्यवस्था करती है और टैंकर के माध्यम से पानी की आपूर्ति की जाती है।
1: जी।
0: तो ये सारी चीजें होती हैं और साथ साथ है ना हम इसका भी ध्यान रखते हैं कि सबों को है ना बिजली की आपूर्ति हो, और जबकि बिजली की आपूर्ति पर असर पड़ता है लेकिन फिर भी लोगों को ज्यादा से ज्यादा समय तक बिजली मिल सके।
1: जी।
0: तो ये सारी बातें हम सरकार का जो जो सूखे के लिए जो व्यवस्था की जाती है इसमें अंतर्भाव होता है।
1: जी, एक और प्रश्न आया है सर कि जलवायु परिवर्तन के इस दौर में क्या सूखा प्रबंधन को स्कूली पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य हिस्सा नहीं बनाना चाहिए क्योंकि इसके बहुत दीर्घकालिक लाभ हो सकते हैं, आप क्या सोचते हैं इस विषय में?
0: जो स्कूल के स्तर पर जल की व्यवस्था के लिए काफी कुछ पढ़ाया सिखाया जाता है, तो जब भी हम जल की व्यवस्था की बात करते हैं, वाटर कंजर्वेशन की बात करते हैं, तो उसमें वो सूखे की बात आ ही जाती है क्योंकि हम जल का उपयोग ठीक से कर सकें, हम जो भूजल है जो ग्राउंड वाटर है उसका हम ठीक ठाक से इस्तेमाल करें, उसका ज्यादा ना अतिरिक्त दोहन ना करें, है ना, एक वो बहुत ही आवश्यक है। जो हमारे जलाशयों में पानी है उसको हम अच्छे से

0: का हम संग्रह कर सकें, उसको हम बढ़ा सकें और ना रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करें। तो इन सब चीजों के बारे में बच्चों को जानकारी होनी चाहिए और अगर वो ना पानी की जो व्यवस्था है इसके बारे में उनको जानकारी हो, इनके बारे में एक जो एक कॉन्शियसनेस है ना वो अगर उत्पन्न हो जाए तो वो आदमी के साथ वो सारी बातें जीवन भर साथ चलती है।
1: जी जी, हर्षवर्धन साहब दिल्ली से हमसे जुड़े हैं और उनका मैसेज सर ये है कि दो प्रश्न इनके हैं। एक तो ये कहना चाहते हैं कि सूखे को आपदा कब माना जाता है, कब वो आपदा में परिवर्तित होता है?
0: देखिए जब है ना मान लीजिए कि अगर 20% से कम पानी होगा है, जो हमारा जो नॉर्मल रेनफॉल है उससे 20% से कम पानी हुआ हो, अगर वो सिंचित प्रदेश ना हो, अगर वो वहां पर जो बुआई की स्थिति काफी कमजोर हो और अगर फिर जो वेजिटेशन इंडेक्स होता है कि वहां पर जो ना वेजिटेशन की स्थिति है तो वो उसमें काफी कुछ ह्रास हो, तो इन सारी चीजों को हम एक इकट्ठे ला करके उसको देखते हैं, उसके बाद वो सूखे को हम घोषित करते हैं, सूखा घोषित करते हैं।
1: जी जी।
0: तो ये कई कई जो है पहलू हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए सूखे की घोषणा होती है।
1: जी, और इन्हीं का दूसरा प्रश्न सर ये है कि अगर किसी राज्य में सूखे की स्थिति घोषित हो जाती है तब NDMA, राज्य सरकार, जिला प्रशासन और दूसरी एजेंसीज जो हैं किस तरह से समन्वय और राहत प्रबंधन का काम करती हैं?
0: तो कई चीजों पर काम होता है। एक तो ना जो लोगों को जो सीरियल्स होते हैं ना, फूड फूड फूड की व्यवस्था, खाद्य पदार्थों की व्यवस्था, तो उसके तहत सरकार सबों को है ना राशन कार्ड के आधार पर ना वो खाद्य ये तो चावल दाल इन सारी चीजों की वितरण की व्यवस्था तो होती ही होती है। इसके साथ साथ हम पानी की आपूर्ति की व्यवस्था, पशुओं के लिए अलग व्यवस्था, फिर जो कृषि का जो नुकसान हुआ है उसके लिए जो मतलब अगर किसानों को किस तरह की मदद दी जाए, खास करके ना सीड्स के लिए, बीज के लिए, तो वो बहुत ही आवश्यक होता है। और फिर अगर कृषि पर थोड़ी सी संकट आ गया और लोगों को काम नहीं मिल रहा है कृषि क्षेत्र में, तो फिर वो हम जैसे कि ना राज्य गांव के स्तर पर जो किस तरह से नए काम शुरू किए जाए जिसके माध्यम से लोगों को रोजगार मिले, तो वो रोजगार की भी योजना सरकार करती है। तो रोजगार, पानी, खाद्य पदार्थों की व्यवस्था और बिजली की व्यवस्था और किसानों के लिए अतिरिक्त सुविधाएं ताकि उन पर ज्यादा भार न पड़े, तो ये सारी चीजें हम सूखे के अंतर्गत करते हैं।
1: जी जी, एक और प्रश्न आ रहा है कि सर क्या आजकल कुछ ऐसी प्रणालियां या तकनीकें उपलब्ध हैं जिससे सूखे की संभावना का पहले से ही अनुमान लगाया जा सके?
0: इस बार भी सूखे का जो अनुमान है वो पहले ही से लगा था, मतलब हम इसको अप्रैल और से ही हम मार्च अप्रैल से ही हम इसको इसका इसको मॉनिटर कर रहे हैं और हमें इस साल इस अपेक्षा थी कि इस बार जो एल निनो का जो प्रभाव पड़ेगा उसके कारण जितनी अपेक्षा है उससे कम बारिश होगी, जो औसत है हमारा बारिश का जो औसत है, औसत बारिश का परिमाण है उससे कम होगी, तो उस ना वो जो मॉनिटरिंग है उसके तहत जो हमने आवश्यक कदम लेने चाहिए वो हम ले रहे हैं।
1: जी जी, धन्यवाद बहुत बहुत। काफी सारे आपके सवाल हम तक लगातार पहुंच रहे हैं, सूखे से निपटने की तैयारियां और उसे निपटने में जल संरक्षण के लिए आपकी और हमारी भागीदारी कैसी होनी चाहिए, इसी विषय में श्री कृष्ण एस वत्स साहब रेनबो हेल्पलाइन में आज हमें बहुत कुछ बता रहे हैं। आप मेंबर NHOD हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में और आपके सवाल हम तक पहुंच रहे हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868 107070 पर।

रेनबो हेल्पलाइन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं आकृति खंडूरी और कहना आपसे यही चाहती हूं कि चाहे गांव हो या शहर हो, पानी की जरूरत हर किसी को होती है, क्योंकि पानी की कमी जब दस्तक देती है तो उसका घर उसका जो असर है वो आप तक हम तक हर घर तक पहुंचता है। और ऐसे में आप और हम मिलकर कम्युनिटीज मिलकर कैसे जल सुरक्षित भविष्य बना सकती हैं, यही बात हो रही है आज रेनबो हेल्पलाइन में। हमारे साथ फोन पर उपस्थित हैं हमारे एक्सपर्ट श्री कृष्ण एस वत्स, जो कि मेंबर हैं, साथ ही साथ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण प्रबंधन प्राधिकरण में। और सर, बहुत से सवाल हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हम तक पहुंच रहे हैं। नए जुड़ने वाले आपको बताई देती हूँ, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। और फिलहाल ये सवाल हम तक पहुंचाने वाली हैं मृदुस्मिता, और इनका सर ये कहना है कि जो ड्राउट प्रोन डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सूखे से ग्रसित जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पर क्या प्रॉपर इरिगेशन

0: तीन चैनल को प्लेस कर दिया गया है। एक सवाल तो इनका ये है।
1: मैं कर दूं इसका।
0: जी, बताएं प्लीज।
1: ठीक, तो ये है कि जो जो सूखा प्रवण क्षेत्र है उसमें धीरे धीरे सिंचन की व्यवस्था का विस्तार हो रहा है, और ये एक साथ संभव नहीं है। लेकिन अगर आप देश में जो जो पूरा क्षेत्र है सिंचन व्यवस्था के अंतर्गत क्षेत्र है उसमें आप देखेंगे तो हर दशक में इसका विस्तार हुआ है, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारें इस क्षेत्र में लगातार निवेश कर रही हैं और धीरे धीरे सिंचन क्षेत्र का विस्तार हो रहा है, नए जलाशय बन रहे हैं और नहरें बन रही हैं, और इसके कारण ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र आ रहे हैं। लेकिन अभी भी करीब करीब मुझे लगता है कि जो सूखा प्रवण क्षेत्र है उसमें 50% जो है क्षेत्र वहाँ अभी तक वहाँ सिंचन की व्यवस्था नहीं है, और वहाँ अभी भी लोग फसल के लिए बारिश पर निर्भर हो रहते हैं।
0: जी
1: तो वहाँ पर जो है वो अगर बारिश कम होती है तो उस पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन ये प्रभाव जो है हर साल अब कम होते जा रहा है। जितना जैसे पहले था, पहले 20-25-30% के आसपास ही सिंचन की व्यवस्था थी, आज वो बढ़ करके 40 से ऊपर हो गई है। तो इस पर इसमें लगातार वृद्धि हो रही है, और इसके कारण जो है पानी की जो उपलब्धता है वो सूखा प्रवण क्षेत्रों में वह निश्चित रूप से उसमें वृद्धि हुई है विगत कुछ वर्षों में,
0: जी
1: और इसके कारण सूखे के प्रभाव में भी कुछ कमी आई।
0: जी इनका एक और सवाल है सर कि इज देयर एनी ड्राउट रेजिस्टेंट स्पीसीज ऑफ राइस एंड शीट ग्रेन स्ट्रेन जो कि किसानों को सूखे के दौरान हेल्प कर
1: ऐसा
0: सकती है।
1: आजकल तो हमेशा इस बात पर काफी शोध हो रहा है,
0: हाँ,
1: और इस तरह के फसलों की व्यवस्था जिसमें पानी की आवश्यकता कम हो, ये इस बात पर हमेशा जोर दिया जा रहा है। और जो कृषि संबंधी जितने भी अनुसंधान संस्थान हैं उन्होंने भी इस तरह के जो स्टडी स्पीसीज हैं वो उस पर उनका काफी जोर रहता है। तो ये जो है तो निश्चित रूप से ना जहाँ पर पानी का कम इस्तेमाल हो ऐसे ऐसे बीजों की ऐसे फसलों के लिए हम सरकार का जोर रहा है।
0: जी, सर क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसका एक कारण कटते हुए जंगल भी हैं, तो इन्हीं का एक तीसरा सवाल ये है कि हम कैसे फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज कर सकते हैं जिससे कि मिट्टी का जो सॉइल मॉइस्चर है उसको कंजर्व किया जा सके।
1: जी, वो बहुत ही आवश्यक है कि हम फॉरेस्ट कवर को बढ़ाएं और

0: है जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसका एक कारण कटते हुए जंगल भी हैं, तो इन्हीं का एक तीसरा सवाल ये है कि हम कैसे फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज कर सकते हैं जिससे कि मिट्टी का जो सॉइल मॉइस्चर है उसको कंजर्व किया जा सके।
1: जी, वो बहुत ही आवश्यक है कि हम फॉरेस्ट कवर को बढ़ाएं। और एक अच्छी बात जो है देश में कि आप अगर पिछले 20 सालों का आंकड़ा देखें तो फॉरेस्ट कवर में लगातार वृद्धि हुई है। तो हमारे हमारा फॉरेस्ट कवर जो है तो 33% एक आइडियल कवर होना चाहिए, उससे ज्यादा ही है अभी। तो

0: प्रोत्साहित करना चाहिए, और उसके लिए भी सरकार ने है ना कई कदम उठाए हैं हाल में, है ना। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी एक पेड़ माँ के नाम ऐसा एक कैंपेन किया था और इसका काफी अच्छा असर हुआ है। हमने भी काफी है ना कई सारे सरकार के सारी संस्थाओं ने मिलजुल करके ना ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की बात की है और उसके लिए अभियान चलाया है। तो एक तरफ फॉरेस्ट कवर बढ़ना चाहिए और दूसरी तरफ जो है नॉन फॉरेस्ट एरियाज में भी वेजिटेशन कवर बढ़ना चाहिए, ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। इसके कारण जो है वाटर कंजर्वेशन जो है पानी का संग्रह है उस पर हमारा ना अच्छा परिणाम पड़ता है।
1: जी, बहुत से सवाल हमारे श्रोताओं के हम तक पहुंच रहे हैं। अनिंदिता सिन्हा, इनका सर ये सवाल है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट्स या सेक्टर्स या पॉपुलेशन ग्रुप हैं जो बहुत वल्नरेबल हैं ड्राउट के लिए और क्यों, ऐसा क्यों है?
0: वो कुछ एरिया जो हैं हमारे देश के वो रेन शैडो एरियाज में आते हैं जहां मॉनसून का उतना वो आगमन जो है वो उतनी अच्छी तरह से नहीं हो पाता है ना। मानसून का जो जैसे कि महाराष्ट्र के कुछ भाग हैं, कर्नाटक के कुछ भाग हैं, तेलंगाना के कुछ जिले हैं और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ जिले हैं। तो जो मध्यवर्ती देश का जो मध्यवर्ती भाग है उसमें कई जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश का जो परिमाण है वो उतना अच्छा नहीं है और इसका जो है भौगोलिक स्थिति से इसका संबंध है। तो जो जनरली जो देश में बारिश होता है उसकी अपेक्षा में इन जिलों में कम बारिश होती है और इसके कारण इन जिलों में सूखे की स्थिति बनी रहती है। लेकिन इन जिलों में हाल में जो सिंचन के लिए सरकार ने व्यवस्था की है उसका भी एक अच्छा असर पड़ा है।
1: जी जी, नरेश चौहान साहब अजमेर से हमसे जुड़े हैं और इनका ये कहना है कि सर बताएं क्या पुराने तालाबों को या बावड़ियों को पुनर्जीवित करना आज भी उपयोगी होगा और अगर करना है तो कैसे किया जाए?
0: निश्चित रूप से सबसे महत्वपूर्ण बात है ये कि हम पुराने जलाशयों को, तालाबों को और जो भी लोकल लेवल पर जिस तरह बहुत देश के हर भाग में बहुत तरह के वाटर स्ट्रक्चर है उसमें बड़ी विविधता है तो इन सबको हमें फिर से उनको पुनर्जीवित करना चाहिए। हम कोशिश भी कर रहे हैं, जो सरकार का जो वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम चलता है ना वो उस जल संवर्धन कार्यक्रम उसमें भी इसकी कोशिश की जाती है और इसकी कोशिश हमें व्यक्तिगत स्तर पर सामूहिक स्तर पर भी करना चाहिए। जब भी हम जलाशयों का को पुनर्जीवित करते हैं उनमें पानी धारण जो जल है उसको उसके धारण करने की क्षमता बढ़ती है तो उस हिसाब से हमें है ना पानी की उपलब्धता बढ़ती है और उसका सीधा है ना जो है तो सूखे की स्थिति पर एक अच्छा असर उसका पड़ता है। तो हमें निश्चित रूप से इसकी ओर सबसे ज्यादा ध्यान देनी चाहिए। ये हमारे हमारे धरोहर का भाग है, हमारे जो सामूहिक जो है ना चेतना और हमारी शिक्षा सबका भाग है। तो बहुत ही आवश्यक है कि इसकी ओर हम ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें।
1: जी जी, राजस्थान से ही एक और प्रश्न आया है ओम प्रकाश साहब का बीकानेर से और वो कहते हैं कि रेगिस्तानी क्षेत्रों के लोग पानी का बेहतर प्रबंधन कैसे कर सकते हैं? सर,
0: जो भी पानी हो रहा है उसका हम उसको हम रोकें, उसका संवर्धन करें सतह के स्तर पर, भूजल के स्तर पर, तो उससे जो है पानी की उपलब्धता बनी रहती है। कभी कभी हम ज्यादा पानी का इस्तेमाल करने लगते हैं तो जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो नीचे चला जाता है और वो जब बहुत नीचे चला जाता है तो फिर उसको निकालने में क्योंकि पानी अगर है पानी सीमित है उसको पानी को बढ़ाने के लिए पानी के संवर्धन की आवश्यकता है। तो आप जो भूजल है भूजल को आप ज्यादा उसका दोहन ना करें, उसका ज्यादा ओवर एक्सप्लॉयट ना करें, जलाशयों में पानी को रखें उसका ज्यादा उपयोग मतलब बहुत ज्यादा उपयोग ना करें तो कम बारिश होने के बाद भी पानी की उपलब्धता बनी रहती है। और ऐसे कुछ गतिविधियां जिसमें पानी की बहुत ज्यादा जरूरत हो उस गतिविधियों से बचें, जैसे ऐसे फसल ना लें जहां पर की पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। कम पानी वाले जो फसल हैं उनको उस क्षेत्र में हमें ज्यादा प्रोत्साहित करना चाहिए।
1: जी जी, और अंत में सर हमें क्या कहना चाहेंगे आपकी जल संरक्षण के लिए या सूखे से निपटने की तैयारी के लिए?
0: जो अभी जो स्थिति है जिसमें बारिश कम हो रही है इस पर हम लगातार दृष्टि

0: आए हुए हैं, हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं, हम सारे राज्य सरकारों को हमने आगाह किया है और सबको कहा है कि हमें किसी भी तरह की अभाव न हो लोगों के स्तर पर। मतलब वो मैंने कहा जैसे कि है ना चावल दाल और जो खाद्य पदार्थ हैं उनकी आपूर्ति बनी रहनी चाहिए, पानी की व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, किसानों को ज्यादा से ज्यादा मदद मिलनी चाहिए। ये सारी सारे जो एडवाइजरीज हैं ये हम इश्यू कर रहे हैं लगातार, लेकिन हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी बनती है, सामूहिक जिम्मेदारी भी बनती है कि हम पानी का सही से सही इस्तेमाल कर सकें। हम जो देश में जो पानी कम हो रहा है उसकी ओर हम निश्चित रूप से अपना ध्यान बना कर रखें और यह सोचे कि यह जो आज जो स्थिति बनी हुई है इसको निपटने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार पर नहीं है, वो हम पर भी है और हमारे समाज पर भी है। तो सब मिलजुल करके हम इस स्थिति को अगर हम अच्छे से मुकाबला कर सकें तो देश निश्चित रूप से हम इससे निपटने में कामयाब होगा।
1: थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर फॉर बीइंग विद अस। आपने बहुत अच्छे से हमें बताया कि सूखे से बचाव और पानी के संकट से बचाव के लिए आपकी और हमारी यानी कि सामाजिक भागीदारी जो है वो किस तरह से होनी चाहिए और सामुदायिक प्रयासों से ही संभव भी है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
1: मैं रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी

नमस्कार, दो बज चुके हैं। पेश हैं इस घंटे के एफएम रेनबो मुख्य समाचार। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है। सदन की शुरुआत में ही विपक्षी सदस्यों के जोरदार हंगामे के बीच सदन की कार्रवाई रोक दी गई। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। संसद के मॉनसून सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज से शुरू हो रहे संसद सत्र के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और न ही दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की तीन देशों की यात्रा के पहले चरण में मोल्दोवा गणराज्य पहुंची। चिशिनाऊ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मोल्दोवा गणराज्य के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मिहाई पोपसोई ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 58वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन

ज्ञान ओलंपियाड में 4 स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये इस प्रतिष्ठित वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन था। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज स्वतंत्रता सेनानी बटुकेश्वर दत्त की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आज ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले

2-1 से अपने नाम की। और अंत में फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फुटबॉल के जबरदस्त फाइनल में स्पेन ने अर्जेंटीना को हराकर दूसरी बार वर्ल्ड कप जीता। फेरन टोरेस ने एक्स्ट्रा टाइम में स्पेन के लिए एकमात्र गोल किया। ये थे अब तक के एफएम रेनबो मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं 102.6 आकाशवाणी रेनबो पर आपका पसंदीदा कार्यक्रम आशियाना। और आशियाना में हम बात करते हैं परिवार से जुड़ी हुई। जी हाँ, परिवार के साथ खुशियाँ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और इसीलिए परिवार के साथ अपनी बॉन्डिंग को कैसे करें स्ट्रॉन्ग और परिवार से जुड़े हुए मुद्दों को कैसे संभालें, कैसे उनको हैंडल करें, इन पर बात होती है हमारे इस खास शो में। तो शुरुआत करते हैं एक बेहद खूबसूरत गीत के साथ।

लिए कहीं ना कहीं हम अपने आप को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, अपनी कुछ आदतों को ख़त्म करते हैं, कुछ नई आदतें डालने की कोशिश करते हैं, जिससे कि परिवार के साथ, परिवार के लोगों के साथ हमारा सामंजस्य बना रहे। तो दोस्तों, आज की जो तेज़ रफ्तार ज़िंदगी है ना, उसमें कमाई तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन उतना ही ज़रूरी है उस कमाई का सही प्रबंधन, यानी कि सही मैनेजमेंट। कई बार क्या होता है कि इनकम तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसके बावजूद मंथ एंड तक जेब हो जाती है खाली, और उसकी वजह कम कमाई नहीं होती बल्कि बगैर किसी प्लानिंग के खर्च करने की आदत होती है। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना इसी मुद्दे पर बात की जाए कि और आपको बताया जाए कुछ आसान आदतों के बारे में, जिनसे घर बैठे आप पूरे परिवार का जो वित्तीय प्रबंधन है, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, उसको बेहतर कर सकते हैं, जिससे कि आपकी बचत भी हो सकती है, ज़रूरतें भी पूरी हो सकती हैं, और साथ ही साथ जो भविष्य है ना आपका, आपके परिवार का, वो भी सुरक्षित रह सकता है।

कर रहे थे घर की आर्थिक सेहत की। तो अगर आप अपने घर की आर्थिक सेहत को दुरुस्त रखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको बनाना होगा अपने घर का बजट। होता क्या है ना कि महीने के कुछ खर्चे तो फिक्स होते हैं, चाहे वो राशन की बात हो, बिजली, बच्चों की पढ़ाई, दवाइयाँ, ये सब प्रायोरिटीज पे होते हैं और ये फिक्स ही होते हैं। तो आप इन खर्चों के बाद अपने कुछ और खर्चों को तय कर सकते हैं, फिर चाहे वो एंटरटेनमेंट के लिए हो या फिर कुछ और आपकी शॉपिंग हो। आप ये कोशिश कर सकते हैं कि हर महीने अपनी आय का कम से कम 20% हिस्सा बचा कर रखें, और अगर आपको लगता है कि आप सेविंग नहीं कर पा रहे हैं तो आप शुरुआत में ही उस 20% हिस्से को अलग रखते हैं, जिससे कि आप अपने अंदर अपने आप को फोर्स कर सकें बचत करने के लिए। तो दोस्तों याद रखना होगा कि जो बजट बनाना है वो केवल हिसाब रखना नहीं है बल्कि अपने सपनों को सुरक्षित रखना है।

0: लेट्स ज्वाइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
1: मैं रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।
2: दादी दादी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
3: पता का चाय गजब का स्वाद।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

बिल्कुल दोस्तों, ये दिल भी ना कभी कभी नादान हो जाता है जब उसको दिखता है एक आकर्षक ऑफर। जी हाँ, जब हम शॉपिंग करने लगते हैं तो कई बार मार्केट में किसी शोरूम में आकर्षक जो ऑफर देखने को मिलता है तो लगता है कि चलो इसे ले ही लेते हैं। या फिर अगर फ़ोन पर भी स्क्रॉल कर रहे हैं और ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो भी ये जो अट्रैक्टिव ऑफर्स होते हैं ना, ये हमको लुभाते हैं, ललचाते हैं कि हम कोई आइटम खरीद ही लें। लेकिन होता क्या है ना कि ऐसे में जब ज़रूरत नहीं भी होती है वो सामान हम अपनी कार्ट में ऐड कर लेते हैं और कभी कभी हम उसका पेमेंट भी कर देते हैं, क्योंकि इस आकर्षक ऑफर के दौर में ये बहुत आसान हो गया है। इसीलिए जब भी आप कोई भी बड़ी खरीदारी कर रहे हैं तो खुद से पहले सवाल पूछें कि क्या वाकई में इस चीज की जरूरत है। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि जब आप बाजार जा रहे हैं तो उससे पहले एक लिस्ट बना लें, जिन भी चीज़ों की आपको खरीदारी करनी है, जिनकी आपके घर में ज़रूरत है, उनको लिख लें, लिस्ट बना लें। और हाँ, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल केवल उतना ही करें जितना आप समय पर चुका सकें। दोस्तों पता है, अगर समझदारी से आप खर्च करते हैं तो जो घर का फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ना, वो बढ़िया रहता है, दुरुस्त रहता है।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
7: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
8: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
9: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1-800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं, नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं, या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
10: हाँ तो भैया, क्या प्लान है 31 दिसंबर की रात का? FM रेनबो का प्लान है आपके साथ मिलकर कुछ मौज कुछ मस्ती करने का। हाँ तो भाई, मिलकर बढ़ाएंगे 2026 में पहला कदम।
11: क्यों

इस मुलाकात में आपके साथ रहेंगे संतोष राव, माला नेगी, राजेश कुमार, प्रवीण कुमार, वीर दमन और ओपी राठौर भी। 31 दिसंबर की रात उमंग 2026 में न्यू ईयर पार्टी सिर्फ FM रेनबो पर। न्यू ईयर स्पेशल उमंग 2026 रात 9 बजे से नए साल तक सिर्फ FM रेनबो पर।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो पर प्रोग्राम आशियाना। बात हो रही है घर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। दोस्तों फाइनेंस को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पता नहीं जीवन में कब कौन सी परिस्थिति आ जाए, इसीलिए परिवार के पास एक इमरजेंसी फंड तो ज़रूर होना चाहिए। लेकिन इस इमरजेंसी फंड के लिए आपको कहीं ना कहीं छोटी छोटी बचत करनी होगी और ऐसा करना होगा जिससे बचत की आदत डालनी होगी अपने अंदर, जिससे कि आप अपने भविष्य के लिए एक ऑटोमेटिक सेविंग शुरू करें और आपकी आर्थिक ताकत को बना के रखें जो परिवार के आपके परिवार के काम आए। One more time.

0: रखें जो परिवार के आपके परिवार के काम आए।
1: One more time.

0: शब्दांग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। श्रोताओं, जलगांव जंक्शन महाराष्ट्र से डॉक्टर दिनेश कार्य जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: शब्द तभी अमर होते हैं जब वे केवल लिखे नहीं जाते बल्कि जिए भी जाते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दिनेश काले इस सुंदर विचार के लिए। और आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरेलकर और रतनमाला जी का।
2: छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल।
0: और बड़ोदरा पंचमहल गुजरात से रवि जोशी जी का।

0: निवासी चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल।
1: और बड़ोदरा पंचमहल गुजरात से रवि जोशी जी का।
0: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
1: और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू जी का संदेश आया है। लिखते हैं,
0: नमस्कार, ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत चार प्रसिद्ध झीलों के बारे में गहन और दिलचस्प

0: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था। हमने पूछा था श्रोताओं कि पेपर शब्द किस वनस्पति के नाम से बना है और ये वनस्पति कहाँ पैदा होती थी।
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। पेपर शब्द मिस्र में नील नदी के तट पर पाई जाने वाली पेपरिस वनस्पति या घास के नाम से आया है।
0: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमने आपसे पूछा था कि कोडेक्स किसे कहते हैं।
1: कोडेक्स आधुनिक पुस्तक के प्राचीन रूप को कहते हैं, जिसमें पन्नों को किनारे से सिलकर या बांधकर पुस्तकें बनाई जाती थीं।
0: जी, और हमारा अंतिम प्रश्न था, जोहन्नेस गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार कब किया।
1: इसका उत्तर है साथियों, जोहन्नेस गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार सन 1440 में किया था।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे कार्यक्रम उमंग से। और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है श्रोताओं, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था।
0: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है, और आप हमें संदेश व प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in।
1: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो करना न भूलें।
0: तो श्रोताओं, अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं सबसे पहला कार्यक्रम। शीर्षक है न्याय।
1: ये कार्यक्रम हिंदी की कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें युवराज सिद्धार्थ के जीवन में घटित एक प्रेरक प्रसंग के बारे में बताया गया है और संदेश दिया गया है कि पशु पक्षी भी हमारे प्रेम और करुणा के अधिकारी हैं।
2: चलो मित्र सिद्धार्थ, उद्यान की ओर चलते हैं, सरोवर के पास। कैसी शांति है, पक्षी नीड़ों की ओर लौट रहे हैं। वहां देखो, उस पेड़ पर कैसे वो चिड़िया अपने बच्चे को दाना खिला रही है, अति सुंदर। और तनिक उधर देखो, उद्यान के बाहर कैसे एक बछड़ा अपनी माँ की ओर दौड़ा चला जा रहा है और गाय अपने बछड़े को लाड़ कर रही है।
3: साथियों, ये वार्तालाप हो रहा था युवराज सिद्धार्थ और उनके मित्र वसु के बीच। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था, जो कपिलवस्तु नगर का एक ग्राम उद्यान था। उनके पिता राजा शुद्धोधन थे, जो शाक्य गणराज के राजा थे, जिसकी राजधानी थी कपिलवस्तु। युवराज सिद्धार्थ ही आगे चलकर गौतम बुद्ध बने और विश्व को अहिंसा और शांति का पाठ पढ़ाया। प्रारंभ में उनका जीवन राजसी सुख सुविधाओं से भरपूर था। आइए एक बार फिर से चलते हैं उस उद्यान की ओर, जहां दोनों मित्र वार्तालाप कर रहे हैं।
2: युवराज, तनिक ऊपर देखो, कितने सुंदर पक्षी हैं। ये राजहंस हैं। ऐसा लगता है मानो हवा में तैर रहे हैं, और इतनी ही सुंदरता से वे पानी में भी तैर सकते हैं। ओह, देखो, एक राजहंस नीचे की ओर गिर रहा है। हाँ, लगता है उसे तीर लगा है। प्यारे पक्षी, सब ठीक हो जाएगा, घबराओ नहीं। मैं हूं ना, न जाने किस निर्दयी ने इसे घायल कर दिया, भला इसका क्या दोष है।
4: दोष ये है कि ये सुंदर है, प्यारा है, सबको पसंद आता है।
2: क्या सुंदर होना और सबका प्यारा होना कोई दोष है। प्यारे हंस, मैं तुम्हारा ये तीर निकाल देता हूं, फिक्र मत करो। ये निकाल दिया, अब तुम मेरी गोद में थोड़ी देर विश्राम कर लो। मित्र, कोई भी व्यक्ति जिसके पास हृदय है, इन निर्दोष पक्षियों को मार ही नहीं सकता। तुम जरा दौड़कर राजवैद्य से इसके लिए कोई औषधि तो ले आओ।
4: हाँ मित्र, अभी जाता हूं।
3: युवराज सिद्धार्थ ने हंस को विश्राम करने के लिए पास के ही एक कुंज में लिटा दिया और वसु के आने की प्रतीक्षा

0: दीक्षा करने लगे। इतने में उनके चचेरे भाई देवदत्त आ पहुंचे। वे इधर उधर देख रहे थे, मानो कुछ खोज रहे हो।
1: कुमार सिद्धार्थ, अभी मैंने एक उड़ते हुए हंस को तीर मारकर नीचे गिराया था। मैंने अपनी आंखों से उसे गिरते हुए देखा था। वो इधर ही कहीं आया है। तीर धनुष पर मेरा लक्ष्य अब भली भांति सद गया है। ये बात मैं कल गुरुजी को बताऊंगा तो वो कितने प्रसन्न होंगे। तुम गुरुजी के सामने मेरी गवाही दोगे ना?
2: अवश्य दूंगा देवदत्त, और वो भी प्रमाण के साथ, क्योंकि इसका प्रमाण वो हंस है जिसे तुमने मारा है।
1: तो हंस तुम्हारे पास है, लाओ उसे मुझे दे दो।
2: क्यों दे दो?
1: ये तो बड़ा ही विचित्र प्रश्न है भाई। इसलिए दे दो क्योंकि मैंने उसे मारा है।
2: लेकिन मैंने इसे बचाया है।
1: तुम राजकुमार हो इसलिए मुझे धमकी देना चाहते हो? मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं दोगे। इसका निर्णय तो अब राज दरबार में ही होगा।
0: तो साथियों, दूसरे दिन दरबार लगा हुआ था।
3: महाराज की जय हो,
4: महाराज की जय हो,
5: महाराज की जय हो।
0: प्रतिहारी ने सभी प्रकरणों की जानकारी दी और बताया कि आज कुमार देवदत्त भी एक प्रकरण न्याय के लिए प्रस्तुत करना चाहते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ भी उपस्थित थे।
6: कुमार देवदत्त को प्रस्तुत किया जाए।
1: महाराज को प्रणाम करता हूँ। महाराज, मेरा कहना है कि राजकुमार सिद्धार्थ ने मेरा हंस ले लिया है जिसे मैंने मारा था। वो मुझे मेरा हंस नहीं दे रहे, मुझे न्याय चाहिए।
6: राजकुमार सिद्धार्थ, क्या ये वही हंस है जो आपकी गोद में है?
2: महाराज को प्रणाम करता हूँ। जी महाराज, ये वही हंस है। मेरा कहना है कि कुमार देवदत्त ने इस हंस को मारा है, लेकिन मैंने इसे बचाया है। अतएव मैं ये हंस इन्हें नहीं दे सकता।
6: लेकिन सिद्धार्थ, देवदत्त ने इस हंस का आखेट किया है। नियम के अनुसार आखेट वीर का अधिकार है। वीर आखेट को छोड़ नहीं सकता।
2: जी महाराज, लेकिन नियम तो ये भी कहता है कि वीर शरणागत को भी नहीं छोड़ सकता। हमारी शाक्य राजवंश की परंपरा और शास्त्रों का नियम तो ये भी कहता है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है।
1: पर महाराज, मैंने पहले इस हंस को मारा है, इसलिए ये मेरा है।
2: जी, पहले मारा था तभी तो वो मेरी शरण में आया है। बिना मारे वो मेरी शरण में कैसे आता?
6: महामंत्री, समस्या जटिल हो गई है। क्या आप कोई मार्ग सुझा सकते हैं?
7: जी महाराज, आपकी आज्ञा हो तो मैं अभी तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता हूँ। अब तो निर्णय ये हंस ही करेगा।
6: निर्णय ये हंस ही करेगा? भला वो कैसे आज्ञा है?
7: महाराज, मेरा आग्रह है कि हंस को यहाँ इस आसन पर बैठाया जाए।
0: हंस को आसन पर बैठा दिया गया। हंस भयभीत था, लेकिन सिद्धार्थ उसे सांत्वना दे रहे थे। सभा स्तंभित थी, सभी फुसफुसा रहे थे।
8: पता नहीं ये हंस कैसे बताएगा?
9: सिद्धार्थ को मिलना चाहिए।
7: कुमार देवदत्त, आप कहते हैं कि इस पर आपका अधिकार है। आसन के पास आइए और हंस को अपने पास बुलाइए।
1: ओ प्रिय हंस, मेरे पास आओ, आ जाओ, आओ मेरे पास, आ जाओ।
0: देवदत्त जितनी बार हंस को बुलाते, वो कई बार भय के मारे आसन से चिपक जाता। देवदत्त ने बहुत प्रयास किया लेकिन बात नहीं बनी।
7: अब मैं राजकुमार सिद्धार्थ को सामने बुलाना चाहूंगा और कहूंगा कि वे भी हंस को अपने पास बुलाएं।
2: प्यारे राजहंस, मेरे प्रिय मित्र, डरो मत, तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरे पास आ जाओ, अपने मित्र के पास आ जाओ, आ जाओ, घबराओ मत।
0: फिर क्या था, पलक भी नहीं झपकी थी, हंस ने अपने पंख फैलाए और उड़ता हुआ सिद्धार्थ की गोद में ऐसे आ चिपका जैसे एक बालक अपनी माँ की गोद में चिपक जाता है।
6: स्वयं इस पक्षी ने अपना निर्णय बता दिया है। हमने सुना था कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, आज साक्षात देख भी लिया। मैं हर्ष के साथ घोषित करता हूँ कि ये हंस युवराज सिद्धार्थ का ही है।
10: महाराज जय हो,
11: महाराज जय हो,
10: महाराज जय हो।
12: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम न्याय। साथियों, इस कार्यक्रम में आपने दो शब्द सुने। पहला शब्द था नीड और दूसरा शब्द था आखेट। तो इसका अर्थ आपको बता देते हैं। नीड शब्द का अर्थ है घोंसला और आखेट शब्द का अर्थ होता है शिकार। अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को, पशु पक्षियों का ख्याल रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, सोचिए और इसकी सूची बनाइए। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर भारती कौशिक, ध्वन्यांकन एकांत वशिष्ठ, कलाकार सुनील लोहिया, शशांक शर्मा, बबीता रंजीत और फरहान नकवी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण चेतना शर्मा। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम न्याय। आशा है श्रोताओं आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा।

0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम वो ब्रह्म तुम ही हो।
1: ये कार्यक्रम विभिन्न जीवन दर्शनों की चर्चा करता है और संदेश देता है कि हम सभी उसी अनंत सत्ता के अभिन्न अंग हैं।

पौराणिक उपनिषद चांदोग्य से एक कहानी है तत् त्वम् असि। उपनिषद महावाक्य स्वरूप में लघु है, परंतु बहुत गहन विचार समाये हुए हैं। चार प्रमुख महावाक्य हैं। ऋग्वेद के ऐतरेय उपनिषद से प्रज्ञानम ब्रह्म, अर्थात वो प्रज्ञानम ही ब्रह्म है। सामवेद के छांदोग्य उपनिषद से तत् त्वम् असि, अर्थात वो ब्रह्म तुम ही हो। यजुर्वेद के बृहद अरण्यक उपनिषद के ऐतरेय उपनिषद से अयम आत्मा ब्रह्म, अर्थात ये आत्मा ब्रह्म है। अथर्ववेद के मांडर के उपनिषद के ऐतरेय उपनिषद से अहम् ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ब्रह्म हूँ। और सामवेद के छांदोग्य उपनिषद से महावाक्य तत् त्वम् असि एक आध्यात्मिक संवाद है गुरुपिता और शिष्य पुत्र के बीच।

0: वत्स श्वेत केतु।
1: आज्ञात?
0: क्या तुम उस ज्ञान से अवगत हो जिसके द्वारा हम सब कुछ जानते हैं और जो हमें जानना आवश्यक है?
1: तात, मैं उस ज्ञान के बारे में जानना चाहूंगा।

0: जी पिताजी।
1: क्या तुम शहद इकट्ठा कर रही इन मधुमक्खियों को देख पा रहे हो?
0: हाँ हाँ बात।
1: भिन्न भिन्न फूलों से निकला हुआ रस जब एक हो जाता है तो वो शहद बन जाता है। तब शहद बनने के बाद वो कह सकता है कि मैं इस फूल का रस हूं या उस फूल का रस हूं?
0: नहीं दाद।
1: इसी तरह जब कोई उस चेतना से एक हो जाता है तब उसकी अपनी पहचान समाप्त हो जाती है।
0: जी दाद, फिर जगत में इतनी विविधता कैसे आई?
1: शुरुआत में केवल एक था और फिर एक को कई में प्रतिलक्षित किया गया। सृष्टि के जन्म से पूर्व द्वैत के अस्तित्व से रहित, नाम और रूप से रहित एकमात्र सत्य स्वरूप अद्वितीय ब्रह्म ही है। वही ब्रह्म आज भी विद्यमान है।
0: जी दात।
1: उसी ब्रह्म को तत्वमसी कहा गया। वो शरीर और इंद्रियों में रहते हुए भी उनसे परे है, आत्मा में उसका अंश मात्र है।
0: जी।
1: उसी से उसका अनुभव होता है किंतु वो अंश परमात्मा नहीं है।
0: जी पिताजी।
1: वो उससे दूर है, वो संपूर्ण जगत में प्रतिभासित होते हुए भी उससे

0: वत्स श्वेत केतु। जीतात, क्या तुम जानते हो हम जिस अस्तित्व को देख नहीं सकते हैं तो हम कैसे जानते हैं कि वो विद्यमान है?
1: नहीं तात, मैं नहीं जानता हूं, कृपया मुझे समझाएं।
0: तो वत्स जाओ उस वट वृक्ष के पास और एक फल तोड़ कर ले आओ।
1: जो आज्ञा तात।

0: ये रहा फलतात।
1: वत्स, अब इसे तोड़कर इसके दो टुकड़े कर दो।
0: जी। पिताजी, इसमें तो सैकड़ों बहुत ही छोटे छोटे बीज हैं।
1: उनमें से एक बीज निकालो और उसे तोड़ो मेरे वत्स।
0: जी।
1: और अब मुझे बताओ कि इसमें क्या देख रहे हो।

0: नहीं तो यहां तो कुछ भी नहीं है तात।
1: वत्स, तो फिर एक छोटे से बीज से एक विशाल बरगद का वृक्ष भला कैसे बन जाता है?
0: तो फिर तात, जिस अस्तित्व को हम देख नहीं सकते हैं, तो कैसे सब प्राणियों को जन्म दे सकता है तात?
1: मुझ पर विश्वास करो मेरे वत्स, वो सूक्ष्म बीज कुछ भी नहीं, स्रोत था विशाल बरगद वृक्ष का। एक अदृश्य और सूक्ष्म सार पूरे ब्रह्मांड की आत्मा है। सर्वं तत्स्वयं स आत्मा, यही सर्वोच्च वास्तविकता है और यही सब में स्वयं विद्यमान है, यही आत्मा है।
0: मैं आभारी हूं पिताजी, आपने मुझे ज्ञान हासिल करने में मदद की है, जिससे अनदेखा देखा हुआ हो जाता है, अज्ञात ज्ञात हो जाता है और यही सब में स्वयं मौजूद है। तत् त्वम् असि,
1: ईश्वर तुम पर अपनी अनन्य कृपा बनाए रखे।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वह ब्रह्म तुम ही हो। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार बाबला कोचर, प्रवीण शर्मा और प्रीति मिश्रा, ध्वन्यंकन विकास सांगवान, आलेख डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम वो ब्रह्म तुम ही हो।

अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। अब समय हुआ है आकाशवाणी रेनबो पर कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर का। रेडियो डॉक्टर में आज बात होगी ऑस्टियोपोरोसिस और स्पॉन्डिलोलिसिस की।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है। आकाशवाणी एफएम रेनबो पर आपका पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर लेकर आ गई है आपकी दोस्त शालिनी मित्तर। स्वीकार करिए मेरा नमस्कार। श्रोताओं, आज का नया दिन, आज का नया रेडियो डॉक्टर और आपका वही पुराना चैनल और वही पुराना समय। जी हां, 3 से 4 बजे का ये समय होता है रेडियो डॉक्टर का और रेडियो डॉक्टर में आपको इंतजार होता है कि किस तरह से आज एक नया अंक आपके लिए ढेर सारी जानकारी लेकर आएगा। तो आज का भी ये अंक आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि आज हम बात करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस और स्पॉन्डिलोसिस के बारे में। क्या होती हैं ये बीमारियां और कैसे इनको जानकर इनसे बचाव किया जा सकता है और उपचार की प्रक्रिया क्या रहती है, ये सारी जानकारी इस कार्यक्रम में आपको मिलेगी। सबसे पहले आपका परिचय आज के रेडियो डॉक्टर से करा दूं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अंकुर नंदा। आप सीनियर कंसल्टेंट स्पाइन सर्जन कम यूनिट हेड है इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर न्यू दिल्ली में। नमस्कार सर।
2: नमस्कार मैम।
1: और हमारे दूसरे रेडियो डॉक्टर हैं डॉक्टर उमेर अहमद खान। आप फिजियोलॉजिस्ट हैं और आप एक रिहैब इंस्टीट्यूट के फाउंडर हैं। बहुत बहुत स्वागत है उमेश जी आपका।
3: बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
1: तो जैसा हमने बताया श्रोताओं को, आज हम ऑस्टियोपोरोसिस और स्पॉन्डिलोसिस पे बात करेंगे। पहला प्रश्न मेरा कि ऑस्टियोपोरोसिस, स्पॉन्डिलोसिस और कुछ और शब्द होते हैं इनसे मिलते जुलते जिसको हम अक्सर सुनते रहते हैं लेकिन हमें सबके मीनिंग नहीं पता होते हैं, तो मैं जरूर जानना चाहूंगी। अंकुर सर, आपसे पहले शुरुआत करते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, स्पॉन्डिलोसिस, स्पॉन्डिलाइटिस, ये तो मैंने बहुत अक्सर सुने हैं पर हमें, हमारे श्रोताओं को भी शायद फर्क नहीं पता होगा, तो शॉर्ट में बता दें।
2: मैम, मुझे लगता है कि ये इस आई थिंक 1 घंटे का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि बहुत बार हमारे पास क्लिनिक में पेशेंट आते हैं जो कि अपना डायग्नोसिस लेकर आते हैं कि सर मुझे स्पॉन्डिलोसिस हो गया। सो आप समझे मैडम, ये अलग अलग शब्द हैं। ऑस्टियोपोरोसिस नामक शब्द का मतलब है हड्डियों का कमजोर होना जो कि डेफिनेटली उम्र के साथ होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो शब्द है उसका मतलब है जोड़ों का उम्र के साथ खराब होना। अब ये आर्थराइटिस जो है अलग अलग टाइप के होते हैं पर जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है ये उम्र के साथ होने वाले बदलावों में, जो जोड़ों में बदलाव आता है उसके कारण होने वाला आर्थराइटिस है। तीसरा शब्द आपने कहा स्पॉन्डिलोसिस। अब स्पॉन्डिलोसिस आप एक तरीके से इस तरह से समझ लीजिए कि ये हमारी रीढ़ की हड्डी का आर्थराइटिस है। मतलब कि जब भी हम एक्सरे करते हैं, अगर हमारी उम्र हो रही है थोड़ी 40 वर्ष 50 वर्ष, तो जरूर कोई ना कोई चेंज एक्सरे में दिखेगा और ये जो एक्सरे में दिखने वाले बदलाव होते हैं इनको स्पॉन्डिलोटिक चेंजेस या स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये दर्द दे ही रहा है। और अच्छा। चौथा शब्द जो आपने कहा स्पॉन्डिलाइटिस, जब भी रीढ़ की हड्डी में कोई पैथोलॉजी हो रही है, चाहे वो सूजन हो, कोई इन्फेक्शन हो, तो वो स्पॉन्डिलाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बारे में फिर और बात करेंगे।
1: जी जी, तो हमारे श्रोता समझ गए होंगे कि आज हम किस बारे में बात करेंगे। बेसिकली तो हमारा सब्जेक्ट ऑस्टियोपोरोसिस और स्पॉन्डिलोसिस है पर मुझे लगता है श्रोता हमसे ऑस्टियोआर्थराइटिस या ऑस्टो या स्पॉन्डिलाइटिस पर भी सवाल जरूर पूछेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं ये इतने आपस में जुड़ते हैं कि डिफ्रेंशिएट करना हमारे लिए मुश्किल होता है। डॉक्टर उमेर, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि जब भी हम हड्डी की बात करते हैं तो सबसे पहले हम फिजियोथेरेपी पर ही ध्यान हमारा जाता है, तो कितना इम्पोर्टेंट है रिहैब के लिए फिजियोथेरेपी जब भी हम बोन डिजीज पर बात करते हैं?
3: देखिए, अभी सर ने बताया 2 चीजों में डिफरेंस
1: जी,
3: और फिजियोथेरेपी की अगर बात करें तो बैक टू नॉर्मल लाइफ लाने में इसका बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी मर्ज या कोई भी प्रॉब्लम्स जब होती है तो फंक्शनल एबिलिटीज कम होते हैं जिसकी वजह से डीकंडीशनिंग इफेक्ट आता है। अब जब ऐसी जब बीमारियां होती थी मसल

0: जॉइंट्स और बोन्स पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। तो फिजियोथेरेपी का इंपॉर्टेंस ये है कि पहले तो आपका कुछ एक्सरसाइज ऐसे रहते हैं या फिर डायग्नोसिस के साथ आप इस तरह ट्रीट करते हैं कि वो प्रोसेस स्लो हो, मसल स्ट्रक्चर्स जो बीमारी होने के वजह से जो हो सकता है जल्दी वो बेहतर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे और उसकी वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस बहुत स्लो डाउन होते हैं या नहीं होते
1: हैं। जी, हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई एक स्पाइन सर्जन है तो उसके साथ फिजियोथेरेपिस्ट भी जरूर रहता है।
2: जी बिल्कुल मैम, ये टीम है, हमारा काम है सर्जरी करके जो भी हमारा अंग है शरीर का जो ठीक काम नहीं कर रहा है उसे वापस अपनी जगह पर लाकर बिठाना, बट उससे काम निकलवाना और उसे काम ले पाना, ये थेरेपिस्ट जरूर उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता
1: है। बिल्कुल, तो ये जोड़ा होता है और ये जोड़ा आज हमारे रेडियो डॉक्टर में भी है। तो हम कोशिश करेंगे आपकी जितनी भी समस्याएं हैं, आपके जितने भी प्रश्न हैं, उनको यहां सॉल्व कर सके। और हम एक गीत सुन लेते हैं और यहां पर इस गीत के बीच में हम उम्मीद करते हैं कि हमें आपके फोन कॉल्स और मैसेजेस हमें मिलने शुरू हो जाएंगे, तो हमारा ये कार्यक्रम आपके साथ आगे बढ़ेगा। सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर।

0: में थोड़ी सी बैकबोन में थोड़ी सी ईट की कोने लग गए, फिर भी चलते थे एक दो
1: अभी
0: दिन
1: क्या
0: के बाद.
1: पूछना चाहेंगे अनिल जी प्रश्न?
0: मैं ये इसके बारे में डॉक्टर साहब से पूछना है कि मैं वाकर लेके ये दो चार मिनट चल लेता हूँ, लेकिन बिना कुछ पकड़े मैं खड़ा नहीं हो पाता, तो इसका क्या कारण है? कुछ हो सकता है इसका निदान?
1: जी डॉक्टर साहब आपको बताएंगे.
2: जी सर नमस्कार. सर आपके सवाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. सर देखिए, आपका जो सवाल है एक्चुअली इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है मेरे लिए, क्योंकि आपको जो मुझे समझ आ रहा है, आप बिना वॉकर के सपोर्ट के खड़े या नहीं हो पा रहे या चल नहीं पा रहे हैं, मतलब कि बैलेंस जो है वो बनने में मुश्किल आ रही है. जिस तरह
0: अगर कोई किसी को कुछ पकड़ भी ले तो जब तक के जैसे डंडा टाइप का अगर जोर से दबाएंगे नहीं हाथ से तो पांव आगे नहीं बढ़ पाता.
2: हाँ मैं वही कह रहा हूँ सर, जो ये दिक्कत होती है नॉर्मली अगर स्पाइनल कॉर्ड पे प्रेशर रहा होगा उस समय सर्जरी से पहले, तो रीढ़ की नस के अंदर जो सूजन आ जाती है उससे परमानेंट डैमेज होने का डर रहता है, आशंका रहती है. और कई बार ये ऑपरेशन से इम्प्रूव होते हैं, और कई बार अगर ऑपरेशन करने में लेट हो गया हो तो नहीं भी पूरी तरह इम्प्रूव हो पाता है. सो जो मुझे समझ आ रहा है शायद थोड़ा परमानेंट डैमेज नसों पर रहा है, बट जहां तक हमने देखा है अगर परमानेंट डैमेज हो भी अगर मरीज खड़ा हो पा रहा है तो एक्सरसाइजेज और रिहैब से उनकी सिचुएशन में सुधार जरूर मिलता है. तो मुझे लगता है कि एक अच्छा रिहैबिलिटेशन का अगर कोशिश की जाए, थेरेपिस्ट साहब से मिला जाए और मेहनत की जाए तो आपकी सिचुएशन में सुधार आ सकता है. अभी तो मैं इतना ही कह पाऊंगा.
1: आप कुछ पूछना चाहें? डॉक्टर उमेर भी हमारे साथ हैं, फिजियोथेरेपी के वो जानकार हैं, तो किस तरह से फिजियोथेरेपी हेल्प कर सकते हैं वो बता सकते हैं आपको.
0: जी डॉक्टर सर नमस्ते.
3: नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया आपका.
0: हाँ मैं तो इस बारे में अभी बताया, आप सुन ही रहे थे. दो ढाई साल में करवट भी नहीं बदल पा रहा था, तो एक्सरसाइज कराया है यहाँ तो अब इतने तक हो गए कि लोग उठ के पहले को हम बैठाता था कोई दीवान पे पलंग पे तो दोनों तरफ से पकड़े होता था, फिर मैं खाना खाता था, कभी इधर पलट जाते थे.
3: अभी
0: वही हाल खड़ा होकर चलने में है.
3: जी,
0: अगर
3: जी,
0: नहीं तो हाँ तो ये एक्सरसाइज की देन है कि मैं वाकर लेके टहल लेता हूँ एक आध किलोमीटर तक, उसके बाद दोनों हाथ थक जाता है वाकर पकड़े पकड़े.
3: जी जी सर, तो सवाल आपका सही है लेकिन यहाँ पे सबसे पहले आपकी हिस्ट्री जाननी जरूरी है, उसके अलावा इवैल्यूएशन करने की जरूरी है. आई थिंक जहां तक बात हुई मुझे समझा कि कुछ सर्जरी आपकी हुई है.
0: तो सर्जरी तो बैकबोन का वो D12 का बताए थे.
3: जी जी जी, तो डेफिनेटली कुछ दिनों तक बेड रिटर्न रहना पड़ता है. आपके सपोर्टिंग मसल्स जो है वो इफेक्ट होते हैं, बैलेंसिंग के लिए जो मसल्स होते हैं वो इफेक्ट होते हैं. तो आपको प्रॉपर इवैल्यूएशन करके फिर जो रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइज है उससे बिल्कुल इंप्रूवमेंट आएगा. उसमें बहुत सारी चीजें कंसिडर करनी पड़ती है कि आपके मसल्स कितने लॉस हुए हैं या आपको आपके सेंसेशन कैसे हैं. तो आपने बताया कि अभी कि मैं उठ के ये चल पा रहा हूं या फिर सपोर्ट ले रहा हूं, उस वहां तक चेक करके बिल्कुल यहां पे रिहैबिलिटेशन या एक्सरसाइज आपको जरूर हेल्प करेगा.
1: चलिए बहुत धन्यवाद अनिल जी कॉल करने के लिए, और हमारे दूसरे श्रोता अभी इंतजार कर रहे हैं. आप जरूर जाइए और डॉक्टर साहब से मिलिए तो आपको वो गाइड करेंगे. हमारे पास एक मैसेज आया है, श्याम मित्तल जी ने लिखा है रोहिणी से कि क्या पूरे सिर में दर्द होना स्पॉन्डिलोसिस का लक्षण है, और रिमूविंग पिलो हैज हेल्प मी. क्या आप बताएं कि ये सच में हेल्प करता है या मुझे ही सिर्फ पिलो हटा के जब मैं सो रहा हूं तो मुझे हेल्प किया है इसने. और आई एम 74 इयर्स ओल्ड और मुझे डायबिटीज है 1984 से, पर कंट्रोल में है.
2: श्याम जी धन्यवाद आपके सवाल का. देखिए ऐसा है, जब भी सिर में दर्द होता है उसके कई कारण हो सकते हैं, बट जो दर्द गर्दन के कारणों से या स्पॉन्डिलोसिस के कारण से होता है यूजली ये जो दर्द है ये हमारे सिर के पीछे के भाग में गर्दन से जुड़ी हुई जगह पर दर्द होता है, और ये दर्द जो है वो नीचे कंधों की तरफ फैलेगा. बट मान लीजिए अगर दर्द बिल्कुल सामने की तरफ आंखों की ऊपर की जगह पे या कानों की ऊपर की जगह पे हो रहा है तो ये स्पॉन्डिलोसिस से रिलेटेड दर्द होने का चांस इसका बहुत ही कम है. आपका दूसरा सवाल था कि क्या तकिया लेना या ना लेना अच्छी चीज है. देखिए हमारी एडवाइस ये रहती है कि आप जब लेटते हैं तो आपकी गर्दन की सिचुएशन या पोजीशन वैसी रहे जैसे कि आप खड़े हो बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशन में. इसलिए मैं यूजली ये एडवाइस देता हूं कि अगर आप सीधा सो रहे हैं तो एकदम पतला तकिया लीजिए ताकि आपकी गर्दन ऊपर को ना ज्यादा झुकी रहे, और अगर करवट लेकर सो रहे हैं तो तकिए की हाइट कुछ इस तरह की हो जो आपकी कंधे और सिर के गैप को फिल कर सके ताकि आपकी गर्दन ना ज्यादा नीचे जाए ना ज्यादा ऊपर जाए. सो अगर करवट लेकर सोना ज्यादा पसंद करते हैं तो थोड़ा मोटा तकिया, और अगर सीधा सोना पसंद करते हैं तो बिल्कुल पतला तकिया लीजिए, दैट विल बी आइडियल.
1: जी हमारे एक कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर है. हेलो
4: कार्यक्रम की होस्ट और दोस्त

0: मित्तल जी को रघुविंदर सिंह चच्छा का नमस्कार।
1: जी जी नमस्कार, और प्रश्न कर लीजिए। डॉक्टर साहब सुन रहे हैं।
0: हाँ जी, दोनों डॉक्टर साहबान को आदर प्रणाम।
2: चड्डा साहब नमस्कार।
0: सर मेरा एक क्वेश्चन है, एक दूसरे से लिंक है वो, कि हड्डियों में दर्द और कमजोरी और रीढ़ की हड्डी में कोई भी डिफेक्ट होना क्या हमारी डाइट और लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, और इसमें क्या हमारा सिटिंग और वर्किंग पोज भी होता है, और ये होने के बाद अगर पेन किलर ली जाए तो उसके क्या बेनिफिट है और क्या नुकसान है, कृपया बताने का कष्ट करें।
1: डाइट और लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, और पोस्चर, ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं और जोड़ देती हूँ स्क्रीन टाइम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए डॉक्टर मेहर, क्या ये फैक्टर्स इफेक्ट कर

0: इसमें बहुत सारे गैजेट्स भी इन्वॉल्व हुए हैं। ये जितने एडअप हुए हैं वो लाइफ को कहीं ना कहीं सीडेंटरी लाइफस्टाइल बनाया है, तो उसकी वजह से जितने मसल्स, अब हम लोग डी जनरेशन की बात कर रहे हैं तो मसल्स कहीं ना कहीं अंडर डेवलप्ड भी है, तो हमको डेफिनेटली ये सब चीजें तो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स है ही। डाइट एंड न्यूट्रिशन जो है, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो वो भी रिलेटेड है, क्योंकि आपके डाइजेशन सिस्टम या जितना सिक्रेशन होना चाहिए, जितना इंप्रूवमेंट होना चाहिए, वो भी नहीं होता है इसमें।
1: और एक प्रश्न का और था कि पेन किलर्स कितने नुकसान करते हैं अगर हम दर्द में ले लेते हैं उनको?
2: सर देखिए, ऐसा है, जो पेन किलर्स हैं ये अलग अलग टाइप के दर्द की दवाइयाँ होती हैं। कुछ पेरिफेरली एक्टिंग, मतलब कि जो कि टिश्यू लेवल पे काम करते हैं, और कुछ सेंट्रली एक्टिंग पेन किलर्स हैं जिनको आमूमन भाषा में पेन किलर कहा जाता है। ये ज़्यादा लेने पर किडनी पर ज़रूर असर कर सकती हैं, आपकी पेट की लाइनिंग को खराब सकती कर सकती हैं, जिससे कि खट्टी डकार, जलन हो सकती है, गैस्ट्राइटिस हो सकता है, अल्सर्स हो सकते हैं। इसलिए ज़्यादा पेन किलर लेना डेफिनेटली अच्छा नहीं है। पर मैंने कई बार ओपीडी में मरीजों को देखा है कि सर मैं

0: और कुछ हद तक लेना भी जरूरी होता है। सो मेरी सलाह यह है कि पेन किलर्स आप अपने आप मत लीजिए, आप अपने डॉक्टर साहब के पास जाइए, वो समझते हैं कि कितनी डोज कितने देर के लिए कौन सा दिया जाना चाहिए, आप उनकी सलाह करके ही लीजिए। पर मान लीजिए कोई इमरजेंसी है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा सेफ पेन किलर्स में आता है पैरासिटामोल 650 मिलीग्राम, है ना। 500 मिलीग्राम में बुखार कंट्रोल करता है, 650 में दर्द कंट्रोल करता है। तो आप पैरासिटामोल ले सकते हैं, सिर्फ लिवर के मरीज ना लें, बाकी सभी मरीज इसको ले सकते हैं, सेफ पेन किलर है
1: जी। डॉक्टर साहब, हमारे एक लिसनर ने पूछा था कि स्पॉन्डिलोसिस के कुछ उन्होंने लक्षण बोले थे कि सिर में दर्द होना क्या इसका लक्षण है, तो ये जानना चाहेंगे कि क्या लक्षण होते हैं। जैसा आपने बोला कि जरूरी नहीं है, तो वैसे किस कैसे पहचानने में आता है कि ऑस्टियोपोरोसिस है या स्पॉन्डिलोसिस है, क्या लक्षण होते हैं?
0: सोशाली जी, मैं आपको थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में लेकर जाना चाहूंगा। कई लोगों को लगता है कि उन्हें स्पॉन्डिलोसिस है, ऐसा क्यों लगता है? ऐसा वो इसलिए कहते हैं कि जब भी गर्दन दर्द कमर दर्द होते हैं, डॉक्टर्स एक्सरे कराते हैं और मरीज जरूर एक्सरे की रिपोर्ट पढ़ते हैं, और एक्सरे रिपोर्ट में रेडियोलॉजिस्ट ने लिखा होता है स्पॉन्डिलोसिस चेंजेस सीन। सो आपको समझना है कि इस वर्ड का मतलब यह है कि उम्र के साथ जो बदलाव होते हैं हमारे शरीर में, जैसे हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, हमारे कुछ बाल सफेद होते हैं, स्किन में रिंकल्स आते हैं, हमारे घुटनों में थोड़ा आर्थराइटिस होता है, उसी तरह रीढ़ की हड्डी में भी बदलाव आते हैं, उस शब्द को हम स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं। स्पॉन्डिलोसिस एक्सरे रिपोर्ट में होना का मतलब यह नहीं है कि हमें कोई बीमारी हो गई है। हमारे कई कमर दर्द और गर्दन दर्द 90% जो है हमारी जीवन शैली से लेना देना होता है इनका, मतलब कि हमारी मांसपेशियां कमजोर हैं, हमारा बैठने का ढंग ठीक नहीं है, हमारी हड्डियां कमजोर हो रही हैं, या फिर हम कंटिन्यूसली दो दो तीन तीन घंटे लगातार बैठ रहे हैं, जो कि खुद एक अपने आप में एक हेल्दी आदत नहीं है। स्पॉन्डिलोसिस के इसलिए कोई सिम्टम्स नहीं है, बट अगर आप बोलें कि भाई स्लिप डिस्क के क्या सिम्टम्स है, क्योंकि स्लिप डिस्क भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो कि हमें तंग करता है, तो जब भी कोई दर्द कमर से लेकर पीछे कूले से होते हुए, जांग से होते हुए पिंडली में जा रहा हो, करंट दे रहा हो, सेंसेशन दे रहा हो, तो नर्व प्रेस हो रही है, इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। पर अगर दर्द और स्टिफनेस सिर्फ कमर में है, तो कुछ सिंपल पेन किलर्स, गर्म पानी की सिकाई, थोड़ी एक्सरसाइजेस 90% लोगों को आराम दे देंगी।
1: तो ऐसा आपका मानना है कि ये एक ऐसी डिसीज है जो होना है, मतलब 90% ऑफ पीपल बिकॉज ऑफ एजिंग, तो उसको सेल्फ कंट्रोल भी किया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा ही मेडिकेशन या उससे आगे जाया जाए।
0: बिल्कुल मैम, देखिए मेडिकल साइंस में सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो ह्यूमन काइंड को तंग करती है वो जुकाम है, और दूसरे नंबर पे कमर दर्द है। पूरी जीवन में 80% लोगों को एक ना एक बार कमर दर्द होता ही होता है, बट अच्छी चीज ये है 90% ऑफ द टाइम्स वो हमारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड होता है। तो जरूर आपको कमर दर्द हो सकता है, पर अगर जीवन शैली को सुधारेंगे, कसरत करेंगे, तो ये सुधर जाएगा
1: जी। और ऑस्टियोपोरोसिस की अगर हम बात करें, तो ऑस्टियोपोरोसिस के डॉक्टर उमेर बताएं आप, क्या आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं, क्या वो हड्डी टूट

0: और सिस्टम की बात करेंगे, मसल्स, ऐसा कोई भी इशू आर्थराइटिस यू नो डेवलप नहीं होता जब तक उसकी मांसपेशियां सपोर्ट सिस्टम जब तक डीजनरेट वो भी ना हो. द गुड थिंग इज कि ऑस्टियोपोरोटिक पेशेंट्स हमारे पास जब आते हैं तो हाँ फ्रैक्चर्स और फॉल और अर्ली फ्रेजाइल बोन होने के फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, बट अगर पोरोटिक है तो आप देखोगे पेन उनको रहता है. तो हमारा काम ये रहता है कि पेन सिम्टोमेटिक रिलीफ दो, मोडालिटीज दो, लेकिन सबसे लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट जो उनका होता है मेंटेनेंस पे, उसका ये काम होता है कि आप सपोर्ट सिस्टम को सुधारो. तो आप पेन के साथ में आप मैनेज करते हुए कि ऐसे पेशेंट्स को हम एक्सरसाइजेस दे और उनका उनका चाल सुधरे, उनके जो मसल्स है वाइल्ड मूवमेंट उनको सपोर्ट करे, तो इससे बहुत हद तक प्रॉब्लम सॉल्व होता है.
1: तो क्या ऑस्टियोपोरोसिस होने के बाद ही वो एक्सरसाइजेस की जा सकती हैं कि प्रिकॉशनरी उनको पहले से भी किया जा सकता?
0: बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. देखिए दो तरह का एक देखा जाता है सिक्रेशंस में भी या बोन फॉर्मेशन, ऑस्टियोक्लास्ट एंड ऑस्टियोब्लास्ट. क्लास्ट मतलब होता है कि कट डाउन ऑफ द बोन, यू नो देखेंगे कि पोरोसिस का यह है कि कैल्शियम आपका कट डाउन हो रहा है, पोरोसिस मतलब उसमें खोखला हो रहा है, और एक ब्लास्ट एक्टिविटीज है. सो अगर दो प्रोसेस है, अगर ऑस्टियोब्लास्ट यू नो बोन फॉर्मेशन या फिर डीजनरेशन को कम करना, तो ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो होना जरूरी है. अब वो किस तरह होता है कि जॉइंट जो है या प्रेशर आने से या खेल कूदने से या फिजिकल एक्टिविटी करने से वो प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूस रहता है. अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं या फिजिकल एक्टिविटी नहीं होता है या मूवमेंट नहीं होता, तो ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटीज वो कंटिन्यूसली वो मात्रा ज्यादा होती है. तो डेफिनेटली एक्सरसाइज का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि जो आपके बोन कंडीशंस को, जॉइंट कंडीशंस को और मसल कंडीशंस को इंप्रूव करने के लिए या बेहतर
1: एक्सरसाइज जो है वो बिल्कुल आपको इस कंडीशन से बचा सकते.
0: बिल्कुल, और यही एक वजह है कि डी जनरेशन भी आज बहुत जल्दी एज में दिख रहा है.
1: जी जी, यहाँ पर हम फिर एक म्यूजिकल ब्रेक लेंगे और लौट कर आएंगे. आज हम ऑस्टियोपोरोसिस और स्पॉन्डिलोसिस पे बात कर रहे हैं.
2: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर.

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
1: आप है कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में और आज रेडियो डॉक्टर में बात कर रहे हैं ऑस्टियोपोरोसिस स्पॉन्डिलोसिस पर। हमारे रेडियो डॉक्टर्स हैं डॉक्टर अंकुर नंदा और

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
1: आप है कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में और आज रेडियो डॉक्टर में बात कर रहे हैं ऑस्टियोपोरोसिस स्पॉन्डिलोसिस पर। हमारे रेडियो डॉक्टर्स हैं डॉक्टर अंकुर नंदा और डॉक्टर उमेर अहमद खान। बहुत सारे हमारे पास मैसेजेस आ चुके हैं डॉक्टर साहब, आप कहें तो हम इनको शुरू करें। एक श्रोता भी हमारे वेट कर रहे हैं फोन लाइन पर, पहले इनसे बात कर लेते हैं। हेलो,
2: हेलो,

0: अनलाइकली है, क्योंकि सर एमआरआई एक बहुत ही सेंसिटिव टेस्ट होता है और ये बीमारी मिस नहीं करता है। अच्छा, जैसे मैं पहले भी बता रहा था, कमर के दर्द जो होते हैं 90% लोगों में जीवन शैली की तकलीफों की वजह से होते हैं, मांसपेशी की कमजोरी, हड्डियों की कमजोरी और इन कारणों से। सो जहां तक मुझे लगता है, पहले ये आप ट्राई करके देखें, इन सब चीजों से इंप्रूवमेंट मिल सकता है। जो अभी मैं नहीं जवाब दे सकता वो है बैलेंस के ऊपर, क्योंकि बैलेंस कई कारणों से खराब हो सकता है। रीढ़ की हड्डी उसमें से एक कारण है, जो कि आप कह रहे हैं एमआरआई बिल्कुल ठीक है पूरी रीढ़ की हड्डी का।
1: सर वेट लॉस क्यों हो रहा है?
0: सर वही मैं कह रहा हूँ, वेट लॉस के भी

0: ना सोचें, दवाइयां तो ले ही रहे हैं, फिजियोथेरेपिस्ट के साथ संपर्क में आएं और कसरत और फिजियोथेरेपी शुरू कराएं, ये 70% से 99% में बदल जाएगा।
1: चलिए, बहुत अच्छी बात है जी। डॉक्टर उमेर
2: सर ने ऑलमोस्ट सभी चीजें बोल दी है इसमें। अगर उनको रिलीफ है, और एक और चीज है कि शायद कमजोरी महसूस हो रही है
1: जी,
2: या
1: जी, ये अभी उन्होंने बताया नहीं।
2: हाँ, तो ये है कि नर्व कंप्रेशन तो है, और उसमें भी डिस्क कितनी

0: सर्वाइकल स्पॉन्डलाइसिस और फ्रोजन शोल्डर, तो कैसे एक आम आदमी पता लगाए कि मुझे इनस्टेबल एंजाइना हो गया या सर्वाइकल स्पॉन्डलाइसिस हो गया या फ्रोजन शोल्डर हो गया,
1: लक्षण जानना चाहते हैं
0: बताने की कृपा करें।
1: अभी हम पहले बात भी कर रहे थे गौतम साहब, सर्वाइकल स्पॉन्डलोसिस एंड फ्रोजन शोल्डर, इसके कुछ लक्षण होते हैं डॉक्टर साहब?
2: गौतम जी, आपने एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सवाल पूछ लिया है। तीन अलग अलग अंगों को एक साथ आपने इन्वॉल्व कर लिया है। आपने कहा सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, फ्रोजन शोल्डर और अनस्टेबल एंजाइना। सो एंजाइना हार्ट से रिलेटेड है, फ्रोजन शोल्डर डेफिनेटली शोल्डर से रिलेटेड है और सर्वाइकल डेफिनेटली गर्दन से रिलेटेड है। एक एक करके लेते हैं। यूजली जो स्पॉन्डिलोसिस या फिर हम कहें कि जो गर्दन के दर्द हैं, अगर सिर्फ गर्दन में ही दर्द हो रहा है तो मांसपेशियों का दर्द है, बहुत चिंता करने वाली बात नहीं है, कसरत से सुधरेगा। अगर दर्द गर्दन से चलकर पूरे हाथ में जा रहा है और साथ में सुन भी हो रहा है, कीड़ियां चल रही हैं, करंट लग रहा है, तो ये नस दबने के लक्षण हैं। इसके लिए आपको सीधा डॉक्टर साहब के पास जाना चाहिए और एमआरआई टेस्ट कराना चाहिए। अब आते हैं फ्रोजन शोल्डर पे। फ्रोजन शोल्डर, जैसे कि ये नाम सजेस्ट कर रहा है, कंधे का जाम हो जाना, ये कैसे चेक कर सकते हैं? आप अपने कंधे को 90 डिग्री पर ऊपर उठा के आगे और पीछे घुमाकर देखिए। अगर ये 90 डिग्री तक नहीं उठ रहा है, आगे पीछे घुमाने में बहुत ज्यादा कंधे में दर्द हो रही है, तो फिर ये मोस्ट प्रोबेबली फ्रोजन शोल्डर है। और यूजली ये धीरे धीरे कसरत से, दवाइयों से सुधरता है, कुछ लोगों को इंजेक्शंस की जरूरत भी पड़ती हैं। अब आते हैं एंजाइना पे। देखिए, मैं हार्ट एक्सपर्ट नहीं हूं, बट जो टिपिकल एंजाइना के पेन्स होते हैं, ये हमारे छाती के आगे के भाग में और हाथ बाएं हाथ की तरफ ट्रैवल कर सकते हैं। और इनको डिफरेंशिएट करना, जब हाथ में दर्द जा रहा है, बहुत जरूरी है सर्वाइकल पेन से। तो आप ऐसे समझें कि जब आगे छाती की तरफ पेन हो रहा है और साथ में हाथ में जा रहा है, तो हार्ट की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। एक नुस्खा है जो आप ट्राई कर सकते हैं। यूजुअली जो गर्दन से रिलेटेड दर्द हाथ में जा रहा हो, अगर आप हाथ को उठाकर अपने सिर पे रख लें, तो गर्दन से रिलेटेड जो दर्द है सर, वो इमीडिएटली कम या गायब हो जाएगा। पर जो हार्ट से रिलेटेड दर्द है सर, वो कम नहीं होगा। तो ये एक तरीका है जो कि हमें कुछ केसेस में मदद करता है जानने के लिए कि हार्ट से रिलेटेड दर्द है या गर्दन से।
1: जी जी, तो डॉक्टर उमेर, आप कुछ कहना चाहेंगे कि इन्होंने जो जो बातें हैं डॉक्टर साहब ने बहुत विस्तार से लक्षण बताए हैं सबके अलग अलग, तो इन सारी ही चीजों में क्या फिजियोथेरेपी वर्क कर सकती है?
3: बिल्कुल मैम, सर ने ऑलमोस्ट सभी चीज एक्सप्लेन। मैं कुछ एड ऑन करना चाहूंगा, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस की अगर बात की तो एक डीजे

0: दिया था हमने।
1: हाँ, तो गठिया के डॉक्टर साहब ने बताया था कि गठिया है मैडम कि नहीं है, कुछ बताया?
0: कुछ 2-3 साल पहले हमने लिया था।
1: हाँ, तो उन्होंने बताया था कि गठिया है या नहीं है?
0: हाँ जी, उन्होंने चेक किया था।
1: हाँ मैम, देखिए अगर गठिया है तो आप इस बात को समझे मैडम, गठिया जो है ये कंट्रोल हो सकता है, ये खत्म नहीं होता है।
0: नहीं,
1: तो
0: इस टाइम
1: अगर
0: गठिया नहीं है, इस टाइम गठिया नहीं है, इस टाइम हम फिर से गिरने की वजह से हम सीरियस प्रॉब्लम फिर से आ गए हैं।
1: मैडम देखिए अगर इतना सब है तो मेरी सलाह यही रहेगी जैसे शालिनी मैम कह रहे थे, फिर आप मैडम एक बार डॉक्टर साहब को हॉस्पिटल में दिखाएं, हमारे यहाँ आना चाहें तो हमारे यहाँ आ
0: आप
1: जाइए।
0: अपना एड्रेस और शुभ नाम बता दीजिए।
2: मैम मेरा नाम, कार्यक्रम आप सुनती रहिए।

महिलाओं में जो मंथली पीरियड्स हैं, मेंसेस हैं, जब ये खत्म होते हैं तो इनके शरीर में ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन जो है ये सर्कुलेट होना बंद हो जाता है, इसकी मात्रा चली जाती है और ये हड्डियों को प्रोटेक्ट करता है। सो हड्डियों में से कैल्शियम लीक होने लगता है जिससे कि हड्डियां कमजोर होती हैं। सो सबसे पहले तो वो महिलाएं जो मेनोपॉज के पास हैं या मेनोपॉज हो गया है, उन्हें डेफिनेटली एक डेक्सा स्कैन करना चाहिए ताकि उन्हें पता चले कि उस समय हड्डियों की क्या सिचुएशन है। अगर शुरुआती टाइम पे ही बहुत

0: प्रोडक्ट्स हैं, सोया है, अगर वेजिटेरियन है तो जो भी प्रोटीन जो हमें मिलती है जैसे कि स्प्राउट्स हैं, ये सब जरूर लें, क्योंकि हड्डियों में हम सोचते हैं कि सिर्फ कैल्शियम और विटामिन डी है, एक्चुअली हड्डियों का एक बहुत बड़ा पार्ट प्रोटीन से बना होता है,
1: अच्छा
0: तो प्रोटीन इंटेक भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सो सही डाइट, कैल्शियम और विटामिन डी का सपोर्ट प्लस एक्सरसाइज, ये आपको हड्डियों को कमजोर होने से रोकता है।
1: जी, सीमा जी ने हमें अपनी पूरी रिपोर्ट भेजी है, तो सॉरी सीमा जी, हम रिपोर्ट्स यहाँ नहीं पढ़ पाएंगे।

0: आपके क्या क्लोजिंग कमेंट्स रहेंगे?
1: मैम, क्लोजिंग कमेंट्स वही है जो सामान्य ज्ञान सभी को पता है, बस उसको स्ट्रेस करना चाहूंगा. रेगुलर एक्सरसाइज करिए, है ना, एटलीस्ट हफ्ते के 5 दिन. अच्छा खाना, पौष्टिक आहार लीजिए और वजन ना बढ़ने दें. स्मोकिंग और ड्रिंकिंग बहुत ही कम, जितना मॉडरेशन में कर सकते हैं. स्मोकिंग तो ना ही करें तो बेटर है, ड्रिंकिंग इन अ वेरी मिनिमल अमाउंट कैन बी डन. और साथ ही साथ अपना स्क्रीन टाइम कट डाउन करिए, वॉक

ऑस्टियोपोरोसिस एंड स्पॉन्डिलोसिस की और बहुत सारे प्रश्न हमारे पास आए, और अगर हम चलते चलते यही कहना चाहेंगे कि जो भी हम यहां से बता रहे हैं वो आपको सिर्फ अवेयर करने के लिए बता रहे हैं, अगर आपको कुछ लगता है तो आप डॉक्टर से मिलिए, अपनी रिपोर्ट्स दिखाइए, चेकअप कराइए, और उसके बाद जैसा ट्रीटमेंट मॉड्यूल वो बताते हैं उसको फॉलो करें। प्लीज अपने सुनकर कोई भी चीज शुरू ना करें। हमारे साथ रहे डॉक्टर अंकुर नंदा, सीनियर कंसल्टेंट स्पाइन सर्जन कम यूनिट हेड इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर न्यू दिल्ली, और डॉक्टर उमेर अहमद खान जो कि फिजियोथेरेपी

0: ऑस्टियोपोरोसिस एंड स्पॉन्डिलोसिस की और बहुत सारे प्रश्न हमारे पास आए, और अगर हम चलते चलते यही कहना चाहेंगे कि जो भी हम यहां से बता रहे हैं वो आपको सिर्फ अवेयर करने के लिए बता रहे हैं, अगर आपको कुछ लगता है तो आप डॉक्टर से मिलिए, अपनी रिपोर्ट्स दिखाइए, चेकअप कराइए, और उसके बाद जैसा ट्रीटमेंट मॉड्यूल वो बताते हैं उसको फॉलो करें। प्लीज अपने सुनकर कोई भी चीज शुरू ना करें। हमारे साथ रहे डॉक्टर अंकुर नंदा, सीनियर कंसल्टेंट स्पाइन सर्जन कम यूनिट हेड इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर न्यू दिल्ली, और डॉक्टर उमेर अहमद खान जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए, और अब स्वीकार करिए शालिनी मित्तल का भी नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब।
1: नमस्कार मैम, बहुत बहुत धन्यवाद हमें बुलाने के लिए।
0: थैंक यू सर।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

भारत का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन था। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस गुट को पार्टी के 3 बैंक खातों को संचालित करने की अंतरिम अनुमति देने से इनकार कर दिया। अमेरिका ने लगातार 9वें दिन भी ईरान पर हमले जारी रखे, जिसके कारण हॉर्मूज जलडमरू मध्य को लेकर तनाव और बढ़ गया। अमेरिका ने दक्षिण पश्चिम ईरान के खोरमोज शहर को निशान

हुआ है, और कहीं ना कहीं इसको लेकर एक समस्या, एक दुविधा रहती है कि कैसे इसको क्रैक किया जाए, और अगर क्रैक नहीं कर पा रहे हैं तो क्या किया जाएगा। तो इसके बारे में होगी बात आज के यू स्पीक्स में।

0: दोस्तों आकाशवाणी रेनबो पर कार्यक्रम यूथ स्पीक्स में आज बात हो रही है यूपीएससी के बाद वाले ऑप्शंस की। वैसे तो बहुत सारे बच्चे हर साल यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम देते हैं, लेकिन उसकी फाइनल सिलेक्शन तक कुछ बच्चे ही पहुंच पाते हैं। क्यों स्मृति, क्या आपने भी कभी इसका एग्जाम दिया है?
1: हाँ मैम, मैंने यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम एक बार दिया है, बट मैं क्लियर नहीं कर पाई। बट मैंने अपनी प्रिपरेशन जारी रखी, अपने आप को सीखने दिया, मैंने डिग्रीज परस्यू किया, इंटर्नशिप्स करे और फ्रीलांसिंग भी करी। स्टिल मैंने ट्राई किया कि मैं स्किल्स सीखते रहूं और यूपीएससी की प्रिपरेशन आगे भी जारी रखूं।
0: यानी कि अगर एक बार आप एग्जाम में असफल हो भी गए तो वो अंत नहीं है, उसके बाद भी आप अपने स्किल्स पर काम कर सकते हैं। प्रिपरेशन के साथ साथ ही आप डिग्री भी ले सकते हैं और उसके अलावा भी बहुत कुछ करने को है। तो इसमें थी, क्या जब असफलता मिलती है तो नेगेटिविटी तो आती है, कुछ नकारात्मक ख्याल आते हैं, तो उनको आपने कैसे डील किया?
1: मैम नेगेटिविटी तो हमेशा रहती है, बट ये मन में रहता है कि करना है, आगे भी करना है, सीखते जाना है और जर्नी कंटिन्यू रखनी है। ये अगर मैं नहीं भी कर पाऊँ तो स्टिल स्किल्स तो मैं सीख पाऊँगी ना, जो मुझे आगे एम्प्लॉयबल रखेंगे।
0: बिल्कुल, यानी कि एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ ज़रूरी है अपने स्किल्स पर काम करना, क्योंकि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को सीख रहे हैं और आगे भी आपको कंटिन्यू करना है, क्योंकि अटैम्प्ट दोबारा देना है, दोबारा कोशिश करनी है उस परीक्षा में पास होने की, लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं स्मृति की तरह अपने आप को एम्प्लॉयबल भी रखना है। तो फिलहाल ये गाना आपके लिए यूथ स्पीक्स में।

0: तो दोस्तों, चलते रहना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सफलता मिले रास्ते में या फिर कभी कभी निराशा भी हासिल हो, लेकिन रुकना नहीं है, चलते रहना है। और यही बात यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ भी है। तो स्मिति, अगर कभी निराशा हासिल हो यूपीएससी के सफ़र में, तो क्या बैकअप ऑप्शंस हो सकते हैं? आप किन ऑप्शंस को लेकर चली थी?
1: मैम, हम बहुत सारे बैकअप ऑप्शंस को लेकर चल सकते हैं, जैसे दूसरे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स जो यूपीएससी के सिलेबस से सीधा जुड़ते हैं, जैसे स्टेट पीएससी एग्ज़ाम्स, आरबीआई ग्रेड बी एग्ज़ाम्स, एसएससी सीजीएल, आईबीपीएस पीओ, रीजनिंग और जीएस, वही बस प्लेटफॉर्म अलग। मतलब इन एग्ज़ाम्स में यूपीएससी की तैयारी सीधा काम आती है, ज़ीरो से प्रिपरेशन नहीं करना होता है। तो हम इन ऑप्शंस को लेकर चल सकते हैं साथ में।
0: बिल्कुल स्मिति, तो कहीं ना कहीं वही सिलेबस, रीजनिंग, जीके, एक ऐसी चीज़ है जिसकी प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, लेकिन उसी प्रिपरेशन के साथ आप दूसरे एग्ज़ाम्स में भी अपीयर हो सकते हैं। लेकिन ज़रूरी ये है कि उन एग्ज़ाम्स का फॉर्म कब निकला, आप उसका पता करती रहें, उनके फॉर्म्स भी साथ में भरें, जिससे कि आप उन एग्ज़ाम्स में भी अपीयर हो सकें। और कहीं ना कहीं आपके लिए जो मौके हैं आपके सामने, उनके लिए आप अप्लाई करें, कोशिश तो करें, क्योंकि अगर कोशिश ही नहीं करेंगे तो कैसे सफलता के मुकाम में आगे बढ़ेंगे।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
2: मैं रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
4: अब होगा शिक्षा मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: अंदर हर मैदान को फतेह करने का दम खम है, क्योंकि आपके अंदर जोश है, जुनून है, हौसला है, और इस हौसले के दम पर आप अपने सफर में, करियर के सफर में आगे बढ़ते रहेंगे तो ज़रूर सफलता आपके कदम चूमेगी। और दोस्तों, हम बात कर रहे थे यूपीएससी के बाद जो करियर ऑप्शंस हैं वो आप क्या ऑप्ट कर सकते हैं। हमने बहुत सारे ऑप्शंस की बात की स्मृति, तो उस लिस्ट में अभी और भी नाम हैं स्मृति?
1: जी मैम, और भी हमारे पास बहुत सारे बैकअप ऑप्शंस हैं, जैसे कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज यानी CDS, जो आपको आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में ऑफिसर बनने का मौका देता है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, जो आपको यूपीएससी ही कंडक्ट करता है लेकिन साइंस बैकग्राउंड वालों के लिए। नाबार्ड और इंटेलिजेंस ब्यूरो जैसी एजेंसीज जो अपने एग्जाम्स का निकालती हैं, जिनका स्ट्रक्चर यूपीएससी से मिलता जुलता है। और यूपीएससी की प्रतिभा सेतु पोर्टल है, जो पहले पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम था, जिसके थ्रू नॉन रिकमेंडेड कैंडिडेट्स भी मिनिस्ट्रीज, PSUs या ऑटोनोमस बॉडीज में काम कर सकते हैं।
0: बिल्कुल स्मृति, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो हमारे सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स के सामने हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कोई प्लान बी नहीं है। हम बैकअप ऑप्शंस की बात कर रहे थे, लेकिन ये कोई प्लान बी नहीं है, क्योंकि ये सभी अपने आप में एक प्रेस्टीजियस करियर ऑप्शंस हैं। तो बिल्कुल इन ऑप्शंस के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सिलेबस में बहुत कुछ सिमिलर होता है, तो इनके साथ आगे बढ़ा जा सकता है। फिलहाल हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद इस टॉपिक पर बात जारी रहेगी आपके अपने शो यूथ स्पीक्स में।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है, जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। ये दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

दोस्तों, अब हम बात करते हैं ऐसे रास्तों की जो बहुत कम लोगों को पता होते हैं। फेलोशिप्स, लैंग फेलोशिप के थ्रू आप सीधे किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ पॉलिसी रिसर्च कर सकते हैं, कानून बनाने के प्रोसेस के अंदर डायरेक्ट इन्वॉल्व हो सकते हैं। यंग इंडिया फेलोशिप लीडरशिप और लिबरल आर्ट्स ट्रेनिंग देता है। टीच फॉर इंडिया फेलोशिप, गांधी फेलोशिप, स्वनीति फेलोशिप, पीएम रूरल डेवलपमेंट फेलोशिप जैसी फेलोशिप ग्रास रूट गवर्नेंस में काम करने का रास्ता खोल देते हैं और इन फेलोशिप यूपीएससी प्रिपरेशन से सीधा जुड़ते हैं। एनालिटिकल और रिसर्च स्किल्स मांगते हैं ये फेलोशिप। अगर आपको पढ़ना या डीप रिसर्च करना पसंद है तो आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में जीएस या ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पढ़ाना, कॉलेजेस में टीचिंग पोजीशंस या मास्टर पीएचडी के थ्रू रिसर्च फेलोशिप से जुड़ सकते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत से एस्पिरेंट जो फाइनल लिस्ट में नहीं आ पाते हैं वही आज सबसे सक्सेसफुल एजुकेटर्स और कंटेंट क्रिएटर्स हैं।

0: बिल्कुल दोस्तों, आपके सामने पूरा आसमान है उड़ने के लिए, आपके सामने है बहुत सारे ऑप्शंस। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो जो स्ट्रक्चर है सिलेबस का, वो जुड़ा हुआ है कुछ और एग्जाम से भी, और आप उसी सिलेबस के साथ कई दूसरे एग्जाम्स को भी फेस कर सकते हैं। स्मृति, हमने बहुत सारे बैकअप ऑप्शंस की बात की यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं सारे गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए थे, तो क्या कॉरपोरेट वर्ल्ड में भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए और ऑप्शंस हैं?
1: जी मैम, कॉरपोरेट वर्ल्ड में भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स एक्टिवली हायर किए जाते हैं, जैसे बिजनेस एनालिस्ट के रोल में, पब्लिक पॉलिसी रिसर्च, कंटेंट स्ट्रेटजिस्ट, कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस, इन सभी रोल में वही स्किल चाहिए होती है जो यूपीएससी प्रिपरेशन में बनती हैं, एनालिटिकल थिंकिंग, स्ट्रक्चर्ड राइटिंग और करंट अफेयर्स की गहरी समझ। और इसके साथ साथ हम स्टार्टअप, टेक स्टार्टअप, सोशल इंटरप्राइजेस, इसमें भी फोकस कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, यानी कि बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके सामने पूरा आसमान खुला हुआ है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन ऑप्शंस को समझने की, जानने की और सही टाइमिंग की ज़रूरत है, जिससे कि आप अपने करियर को एक सही मुकाम पर पहुंचा सकें।

0: दोस्तों, नैना भर जाते हैं जब निराशा हाथ लगती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उस दौर को, समय को डील करना आसान नहीं होता। तो स्मिति, जब आपने इस फेज को झेला था, जब आपने असफलता झेली थी, तो आपने उसको कैसे डील किया?
1: सबसे पहले तो मैम, हमें अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। और एक रिजल्ट आपकी पूरी पहचान नहीं होती, और ना एक सिंगल रास्ता होता है। तो अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ बात करते रहिए, और खुद का भी ध्यान रखिए, अपने मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखिए, और वर्क करते रहिए, सीखते रहिए।
0: तो जब ऐसा दौर आपने देखा, तो आपने अपने परिवार में किससे बात की?
1: मैंने अपनी माँ से बात किया। उन्होंने मुझे समझाया कि सिर्फ प्रिपरेशन सब कुछ नहीं होता, स्टडीज ही नहीं होती हैं, उसके आगे भी जिंदगी होती है। बट मैं ही नहीं मानी।
0: तुमने माना, इसीलिए तुम जुटी हुई हो अपने इस सपने को पूरा करने के लिए, प्रिपरेशन कर रही हो, दूसरे ऑप्शंस भी ट्राई कर रही हो, और कहीं ना कहीं इस मैदान में टिकी हुई हो, क्योंकि तुम्हें जीतना है।
1: जी मैम।
0: और यही संदेश हम अपने सभी श्रोताओं को भी देना चाहेंगे कि हमें जीतना है, आगे बढ़ते रहना है, और इस मुकाम को, अपनी मंजिल को हासिल करना है। इसी नोट के साथ मैं अपने सभी श्रोताओं को कहना चाहूँगी बाय। और स्मिति, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे आने का, और हमारे श्रोताओं से बात करने का, और इतने अहम मुद्दे पर बात करने का, अपने अनुभव साझा करने का।
1: जी मैम, थैंक यू।
0: तो फिलहाल आपको छोड़े जाते हैं इस गीत के साथ, और इसके बाद आकाशवाणी रेनबो पर आप सुनेंगे प्रोग्राम सिटी लाइट। इसलिए आपको कहीं नहीं जाना है, जुड़े रहना है हमारे साथ।

आकाशवाणी एफएम रेनबो पर सुनिए अभी तक के मुख्य समाचार। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। विपक्षी सदस्यों के जोरदार हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। संसद के मानसून सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, चाहे मानसून हो या मानसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत लाभदायक सिद्ध होते हैं। जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा ने कहा कि विपक्ष को संसद में रचनात्मक मुद्दे उठाने चाहिए, विपक्ष को संसद को सुचारू रूप से चलने देना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल से कहा है कि वो इस बारे में निर्देश प्राप्त करें कि क्या अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन की जांच के लिए विशेष जांच समिति SIT गठित की जा सकती है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस गुट को पार्टी के 3 बैंक खातों को संचालित करने की अंतरिम अनुमति देने से इनकार कर दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया के 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में मोल्दोवा गणराज्य पहुंची। चिशिनाओ स्थित राष्ट्रपति भवन में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर प्राप्त करने के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सेंडू के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। अमरीका ने लगातार 9वें दिन भी ईरान पर हमले जारी रखे, जिसके कारण हॉर्मूस जल डमरू मध्य में को लेकर तनाव और बढ़ गया। अमरीका ने दक्षिण पश्चिम ईरान के खोरमोज शहर को निशाना बनाया। उत्तराखंड के कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी के बाद चार धाम यात्रा को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिले में कल बाढ़ और चट्टाने खिसकने से 11 लोगों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 98वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में 4 स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये इस प्रतिष्ठित वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन था। पुरुषों के क्रिकेट में इंग्लैंड ने कल रात लंदन के लॉर्ड्स में खेले गए तीसरे वनडे मैच में भारत को 27 रनों से हराया और 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से अपने नाम की। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में स्पेन ने अर्जेंटीना को हराकर दूसरी बार वर्ल्ड कप जीता। फेरन टोरेस ने एक्स्ट्रा टाइम में स्पेन के लिए एकमात्र गोल किया। ये थे आकाशवाणी पर अभी तक के मुख्य समाचार।

5:55 है ना मौज के साथ आप हैं सिटेलाइज प्रोग्राम में शुरू हो चुका है प्रोग्राम आकाशवाणी एफएम रेनबो पर इस पैपी नंबर के साथ और एंजॉय करेंगे आप आज सिटी की सारी वो खबरें जो आज तक पहुंचनी बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले आज बात किए लेते हैं क्योंकि 20 जुलाई है और आज सोमवार के दिन दिल्ली एनसीआर से रिलेटेड जो भी आपको खबरें हैं वो हम पहुंचाएंगे आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। लेकिन आपका स्वागत कर लूं इनाम

आज आप सबका स्वागत करती है इस प्रोग्राम में। सबसे पहले बात संसद की। आज से संसद का मानसून सत्र दोस्तों शुरू हो रहा है, हो गया है, जिसके चलते नई दिल्ली और संसद मार्ग के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और इस क्षेत्र में आने जाने वाले लोगों को ट्रैफिक डायवर्जन और ज्यादा सुरक्षा जांच का सामना करना पड़ सकता है। तो कोशिश कीजिए कि डायवर्जन करके कहीं और से निकलें अगर आप सही समय पे कहीं पहुंचना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी तौर पर कहीं पे भी पूरी तरीके से भीड़ में इकट्ठा होने की कोशिश ना कीजिए। उससे क्या है कि आम लोगों के आने जाने की रास्ते भी ब्लॉक होते हैं और आपको परेशानी का सामना भी है। और अगर मौसम की बात की जाए तो मौसम का रुख भी आज बहुत सही पलटा है। दोपहर में रिमझिम बारिश जो है उसने बहुत सारी चीज़ों में तब्दीली ले आई है और हम लोगों को थोड़ी सी परेशानी हुई यहाँ तक पहुँचने में, भीग भी गए हम, लेकिन शुरू शुरू की बारिश में भीगना सबको पसंद है। और बारिश होने से मौसम के मिजाज में भी तब्दीली आएगी, सबको थोड़ी सी गर्मी से राहत मिलेगी। तो उम्मीद करते हैं कि ये बारिश जो है वो कंटिन्यू रहे, सिर्फ एक बार बरसकर ह्यूमिडिटी पैदा करके वापस ना हो जाए, ये बरसती रहे और ये मानसून सेशन चलता रहे हर तरीके से और सबके लिए अच्छा साबित हो। बने रहिए मेरे साथ सिटी लाइट्स में। प्रोग्राम ये आप तक पहुंचाता है दिल्ली और एनसीआर की वो सब बातें, वो सब खबरें, वो सारे इवेंट्स जो आप एंजॉय कर सकते हैं यहाँ रहकर भी, यहाँ आकर भी। तो बने रहिए मेरे यानी नमोज के साथ आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। सुनते रहिए प्रोग्राम सिटी लाइट्स।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

5:23 हिना मौज के साथ हैं, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सिटी लाइट्स। और सिटी लाइट्स में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप तक पहुंचानी बेइंतहा ज़रूरी हैं। इस वक्त ऑफिस के टाइमिंग्स जो हैं वो क्लोज़ हुए हैं।

सब लोग अपने अपने ऑफिसेस से निकल रहे होंगे या निकलने वाले होंगे एक आध घंटे में, तो उनको बता दें कि कहाँ कहाँ से जाना आप अवॉइड कीजिए ताकि आप कोशिश करके अपने घर टाइम पर पहुँचें। हालांकि आज थोड़ा सा सेंट्रल दिल्ली में बहुत ज़्यादा इस तरीके का माहौल है कि सारी तरफ से ट्रैफिक जो है वो जाम भी है, और उसके अलावा जाम के अलावा भी इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हुई हुई है कि आप का इस इन मार्गों से निकलना जो है वो ज़रा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। उनके बारे में आपको बता दें ताकि आप सुरक्षा के अपने इंतज़ाम करते हुए चलें, और कहीं और से अगर आपका आपके घर का रास्ता या जहाँ भी आपको जाना है अगर बनता है तो आप उस तरफ से निकल जाएं। पार्लियामेंट स्ट्रीट, रफ़ी मार्ग, अशोका रोड, रायसीना रोड, राजेंद्र प्रसाद रोड, इसके अलावा जो है जनपद मोतीलाल नेहरू मार्ग, मौलाना आज़ाद रोड, के कामराज मार्ग, तालकटोरा रोड, पंडित पंथ मार्ग और रकाबगंज गुरुद्वारा रोड से जाना अवॉइड कीजिए। और इस एरिया में कोशिश कीजिए कि आप लोग ना आए, क्योंकि अगर आप आए तो फंस सकते हैं, और ट्रैफिक जाम होने की वजह से, सारी तरफ बैरिकेटिंग होने की वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा जो बाहर जाने वाले लोग हैं, जो किसी एक्सप्रेस वे के थ्रू अपने घर जाते हैं या फिर कहीं जाना चाहते हैं, घर ना भी जाएं, किसी काम से जाना चाहते हैं, तो आज अवॉइड कीजिए निकलना। और फिर भी अगर निकलना कोई ज़रूरी है तो आपको बता दें कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे जो है वहाँ पे स्लो मूविंग ट्रैफिक है, इस वक्त जैम के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा गाज़ीपुर बॉर्डर, DND फ्लाईवे और सराय काले खां और ITO की तरफ जाने वाले रास्ते जो हैं उन पर ट्रैफिक जो है वो बहुत ज़्यादा, या तो किसी रोड पर स्लो चल रहा है या फिर जैम में फंसे हुए हैं लोग, तो आप अवॉइड कीजिए कि उस तरफ ना जाएं। और अगर मेट्रो की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल एरियाज़ जो हैं वो हैं राजीव चौक, जनपद, पटेल चौक, सेंट्रल सेक्रेटरिएट और सेवा तीर्थ, ये यानी उद्योग भवन के आसपास एग्ज़िट के लिए आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप इन रूट्स पर मेट्रो से भी ट्रैवल ना करें तो बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी रीजंस की वजह से भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। अपने आप को सुरक्षित रखिए और कोशिश कीजिए कि ऐसे मार्ग से जाएं जहाँ से आपको परेशानी कम हो, और हो सके तो ना निकलें घर से तो बेहतर रहेगा। बहरहाल आपकी सुरक्षा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम कोशिश करते हैं आपको सही जानकारी पहुँचाने की। 5:26:13 है ना मौज के साथ बने हुए हैं, आप प्रोग्राम सुन रहे हैं सिटी लाइट्स आकाशवाणी FM रेनबो पर।

दिल्ली एनसीआर की बात हो रही है सिटी लाइव्स प्रोग्राम में हिना मौजा आपके साथ आकाशवाणी एफएम रेनबो पर ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और आज हम अपने देश के उस धरोहर का जिक्र करेंगे जिसके लिए आज का दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के तौर पर और वो धरोहर है हमारे हाथ से किए हुए कामों की चाहे वो हस्तशिल्प हों या हथकरघा से मुतालिक लोग हों जो इन सब चीज़ों को बनाते हैं अपने हाथों से बहुत खूबसूरती से बहुत मोहब्बत और बहुत प्यार से बहुत वक्त लेकर चीज़ों को तैयार करते हैं उन सब की तरफ स्नेह देने का आज का दिन है और 20 जुलाई को ये दिवस मनाया जाता है। इसी थीम पर जो बुनकर हैं या हाथ से काम करने वाले लोग हैं उनसे रिलेटेड जो प्रदर्शनियां हैं वो आयोजित होना शुरू हो गई हैं। उनका आयोजन जो है वो शुरू हो चुका है जहां देश के विभिन्न राज्यों से बुनकर और शिल्पकार जो हैं वो अपनी अपनी प्रदर्शनियों में ये सारी चीज़ें जो अपने हाथ से बनाई हुई हैं वो लेकर आएंगे और उन सब को हम देख भी सकते हैं ख़रीद भी सकते हैं और सराह भी सकते हैं। तो इन सब का जो भी जिस भी तरीके से समर्थन कर सकते हैं आप कीजिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आजकल मशीन से बनी हुई हमें मिल तो जाती हैं लेकिन जो प्यार मोहब्बत और जो मेहनत हाथ के काम में होती है वो शायद किसी में नहीं होती इसीलिए उनको सराहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको हाथ के काम में महारत हासिल है और मशीनों के आ जाने की वजह से उन लोगों के काम सफ़र कर रहे हैं तो उनके लिए खड़े होने का वक्त है और आज का दिन हमें यही याद दिलाता है कि हमें अपने देश की हर धरोहर का ख्याल रखना है उसके साथ चलना है उसका साथ देना है। इसके अलावा अगर जुलाई माह के दौरान दिल्ली एनसीआर में संगीत कॉमेडी कला प्रदर्शनियों और इसी तरीके के और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की बात की जाए तो जी भरमार है इस मंथ में और अगर आप अपने फैमिली या फिर अपने दोस्तों के साथ कोई प्लानिंग कर रहे हैं कहीं घूमने की किसी तरीके की कोई प्रदर्शनी जाने की या देखने की तो आप रिलेटेड जगहों पर जा सकते हैं जैसे सांस्कृतिक केंद्र हैं सभागार हैं इन सब में बहुत अलग अलग तरीके के आयोजन कार्यक्रमों के चल रहे हैं हो रहे हैं और होंगे तो आप इन सब चीज़ों पर नज़र रखें।

और अच्छी सी जगह जाकर अच्छा सा प्लान बनाकर उन चीज़ों को एंजॉय करें जो इन सभागारों में प्रस्तुत की जाने वाली हैं। बहरहाल बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी FM रेनबो पर प्रोग्राम सिटी लाइट्स में।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: ये है आकाशवाणी और

बिल्कुल, एक दूसरे को हमेशा मोहब्बत करने की इजाजत दे देनी चाहिए, क्योंकि मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो हर इंसान की जिंदगी में फलता फूलता ही अच्छा लगता है। इधर उधर की कहानियां सुनाकर अपनी जिंदगी में कभी भी इस जज्बे को जाने न दीजिए। 5:44:37 हिना मौज के साथ हैं आप सिटी लाइट्स प्रोग्राम में आकाशवाणी FM रेनबो पर। दोस्तों, आज एक और दिवस हम बना रहे हैं और वो है इंटरनेशनल चेस डे। ये भी आज मनाया जा रहा है और ये दिन जो है वो शतरंज, जो इतना अच्छा इतना इंटेलिजेंट खेल है, उसके महत्व को रेखांकित करने का दिन है और दुनिया भर में विभिन्न प्रतियोगिताओं और आयोजनों के माध्यम से ये दिन मनाया जाता है और पूरी दुनिया में इस खेल को इतना इंटेलिजेंट माना जाता है कि ये बहुत ज़्यादा दिमागदार लोगों का खेल है और इसे खेलने वाले लोग वाकई ही बहुत ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा परिपक्व होते हैं और बहुत तेज़ होते हैं, बहुत तेज़ दिमाग होते हैं और ये खेल हर कोई नहीं खेल सकता और ये खेल खेलने वालों के लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसको सेलिब्रेट किया जाता है, आज के दिन याद किया जाता है उन सब लोगों को जिन्होंने इसमें महारत हासिल की है। बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी FM रेनबो पर और एक और प्यारा सा सॉन्ग आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं आज के सॉन्ग्स भी आपको पसंद आ रहे होंगे। सिटी लाइट्स में बने रहिए आकाशवाणी FM रेनबो पर।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

5:54 यानी थोड़ा सा वक्त और बाकी रह गया है। नीर जा चुकी हैं अपना प्रोग्राम लेकर, रहेंगी 6 से 7 में आपके साथ। मैसेज मसाला मिक्स जरूर सुनिएगा इनके साथ। फिलहाल एक और प्यारा सा ट्रैक आप तक पहुंचा रही हूं और बस चलते चलते यही कहूंगी कि ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हुए, ट्रैफिक की अपडेट लेते हुए ही अपने घर से निकलें, और मौसम का तकाजा है कि बहुत सारी चीज़ें देखभाल कर अगर आप आगे बढ़ेंगे और निकलेंगे बाहर घर से या फिर ऑफिस से तो आपके लिए ज़्यादा आसानी रहेगी, क्योंकि हर इंसान कहीं ना कहीं पहुंचने की होड़ में कुछ ना कुछ गलत ऐसा कर ही जाता है जो उसके लिए ही नुकसानदेह साबित हो जाता है। तो कोशिश कीजिए कि इस तरीके का कोई कदम ना उठाएं, सही रास्ते से जाएं, सही तरीके से चलें और ट्रैफिक जो अपडेट्स हैं उनको लेते हुए चलें और ट्रैफिक के रूल्स जो हैं उनको पालन करते हुए ही आगे बढ़ें। फिलहाल इस आखिरी गीत के साथ आपको छोड़े जा रही हूँ। सिटी लाइट्स प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म करती हूँ। हिना मौज को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी इस उम्मीद के साथ। खुदा हाफिज कहती हूँ। ये आखिरी ट्रैक आपके लिए।

शाम के 6 बज चुके हैं। लीजिए सुनिए इस समय के मुख्य समाचार। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन आज नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्रवाई कई बार स्थगित किए जाने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल को इस बारे में निर्देश प्राप्त करने को कहा है कि क्या अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा के कथित गबन की जांच के लिए विशेष जांच समिति SIT गठित की जा सकती है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि प्रदर्शनकारियों की ओर से सरकार से बातचीत का प्रस्ताव आया है। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली में सभी प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने, संयम बरतने और शांति तथा सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस गुट को पार्टी के 3 बैंक खातों को संचालित करने की अंतरिम अनुमति देने से इनकार कर दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में मोल्दोवा गणराज्य पहुंची। चिशिनाउ स्थित राष्ट्रपति भवन में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर प्राप्त करने के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सैंडू के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। अमेरिका ने लगातार 9वें दिन भी ईरान पर हमले जारी रखे जिसके कारण हॉर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर तनाव और बढ़ गया। अमेरिका ने दक्षिणी पश्चिम ईरान के खोरमोज शहर को निशाना बनाया। उत्तराखंड के कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी के बाद चार धाम यात्रा को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिले में कल बाढ़ और चट्टानें खिसकने से 11 लोगों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 58वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में 4 स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह इस प्रतिष्ठित वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन था। पुरुषों के क्रिकेट में इंग्लैंड ने कल रात लंदन के लॉर्ड्स में खेले गए तीसरे वनडे मैच में भारत को 27 रनों से हराया और 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से अपने नाम की। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में स्पेन ने अर्जेंटीना को हराकर दूसरी बार वर्ल्ड कप जीता। फेरन टोरेस ने एक्स्ट्रा टाइम में स्पेन के लिए एकमात्र गोल किया। ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार।

आकाशवाणी रेनबो पर आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट एंड दोस्त नीरजा चतुर्वेदी। कार्यक्रम है मैसेज मसाला मिक्स, यानी शाम का वो खास कार्यक्रम जिसे हमारे श्रोता ही विशेष बना देते हैं अपने मैसेजेस के माध्यम से। और आज बात करूंगी जिंदगी की और एफएम रेनबो की। कहते हैं जिंदगी अगर एक कैनवस है तो इंद्रधनुष उसके सबसे खूबसूरत रंग हैं। हर रंग एक एहसास, एक रिश्ता, एक याद या एक सपना समेटे हुए है। आज का मैसेज मसाला मिक्स इन्हीं रंगों के नाम हैं। तो ज़रूर बताइए अपने मैसेजेस के माध्यम से कि आप क्या सोचते हैं, कौन सा रंग आपको कैसा दिखता है। और मैं भी बताऊंगी कि मैं किस रंग को किस तरह से जोड़ती हूँ। आपको बताना है 9868107070, यही वो नंबर है जहाँ आप मैसेज करेंगे और आपके दिल की बात सीधे हम तक पहुँच जाएगी। बस करना दोस्त ये है कि मैसेज करना है। कर रहे हो ना मैसेज?

आकाशवाणी रेनबो पर नीरजा है आपके साथ लेकर मैसेज मसाला मिक्स। और जो श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं भाई जुड़े रहिए, और इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस आ गए हैं कि उनका लुत्फ उठाइए। और अगर आप अभी जुड़े हैं तो दोस्त जुड़े रहना ना। और हाँ, बात करूंगी उस विषय की जिससे आज जुड़ रही हूँ। जीवन के जितने भी रंग हैं उन्हें हम रेनबो के संग जोड़कर देख रहे हैं, और इंद्रधनुष के किसी एक रंग को जीवन के किसी भी भाव से जोड़िए और बताइए ना कि आप क्या कहना चाहते हैं। सोनू बिजनौर से हमारे साथ जुड़ गए हैं और लिखा है, रंगों की बात सांसों की डोरी एक जैसे ही है जैसे हम और रेडियो। बिल्कुल ऐसा लग रहा है सोनू कि आप हमारे इस जज्बात के साथ ना पूरी तरह से जुड़ गए हैं। दीपा बिजनौर से कहती हैं कि रंग हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं, जैसे आप हमारे लिए बड़ी खूबसूरती से सबको लाते हैं और हम आपको बड़े ही बहुत ही प्यार से और चाह कर हम आपको सुनते हैं। बिल्कुल आपका जो सुनना है ना वो हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। और जैसे मोबाइल चार्ज होता है ना, ऐसे हम चार्ज हो जाते हैं जब हमारे दोस्त इतना प्यार हमें देते हैं। अनिल शर्मा अंकल जी का सरिता विहार से मैसेज आया है, लिखा है, शुभ संध्या। संध्या सच में शुभ हो गई जैसे ही हमने मैसेज देखा। लिखा है, दिन निकला बादलों के बीच, ना कोई बारिश हुई, मौसम की भविष्यवाणी खबर मीडिया की, ओहो यूं ही फुस हुई। आखिर तकनीक या कुछ और वैज्ञानिक तरीका, मौसम की खबर कुदरत सब जानती करती, आज बारिश नहीं हुई। ये सरिता विहार दिल्ली की ताज़ा खबर है आपके लिए, यानी बेसब्री से इंतज़ार कर रही है दिल्ली बारिश का, लेकिन यहाँ ज़रूर हुई थी अभी थोड़ी देर पहले। हिना जो आई थी वो बारिश के बड़े खूबसूरत से अपने अनुभव बता रही थी। और आगे लिखते हैं कि मुझे तो हरा रंग पसंद है क्योंकि ये हरियाली का द्योतक है। हरियाली मतलब अन्न, सब्जियाँ, पेड़ पौधे, सब हरा हरा दिखता है। बारिश में हरे पत्तों पर टपकती बूंदें आंखों को कितना सुकून देती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, और बहुत खूबसूरत शब्दों के साथ जुड़ गए हैं आप। और अगले ट्रैक की तरफ जा रही हूं, लेकिन जमशेदपुर झारखंड से देवेंद्र कहते हैं, प्रोग्राम में बिल्कुल जुड़ गया हूँ और विषय जानना चाहता हूँ। तो देवेंद्र जी, जैसे रंग है ना रेनबो के, बिल्कुल उसी तरह से वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में भी रिफ्लेक्ट होते हैं।

0: बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
4: लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। CM रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
5: मैं रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।
6: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
7: आकाशवाणी रेनबो पर नीरजा है आपके साथ, लेकर वही सिलसिला जिसे बहुत ही खूबसूरती से आप कहते हैं मैसेज मसाला मिक्स। और मैसेज आ गया है मेरे पास प्रदीप सलूजा जी का, जनकपुरी दिल्ली से। कहते हैं सत श्री अकाल नीरजा जी, तुसी केवे हो जी? मैं बहुत बढ़िया हूँ। रंग तो सारे ही हमें पसंद है, लेकिन एक रंग जो मेरे नाम से बहुत मैच करता है ना, वो है येलो। क्या बात है, देखिए किस तरह से, कितनी खूबसूरती से हम रंगों के साथ अपने आप को जोड़ लेते हैं, मिला लेते हैं, उनकी खूबसूरती को अपने जीवन का एक हिस्सा बना लेते हैं, है ना। हेलो मैम, जिया कुलश्रेष्ठ हूँ मैं, और आज का टॉपिक मुझसे छूट गया है। तो जिया, हम बात कर रहे हैं रेनबो के रंगों को जीवन के साथ जोड़कर देखने की वो कोशिश जो कहीं ना कहीं हम कभी ना कभी करते हैं। आज चलिए एक दूसरे से बात कर देखते हैं कि कौन क्या सोच रहा है। सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर, सोनीपत से हमारे साथ हैं, और लिखा है हमें तो सफ़ेद रंग बहुत पसंद है, हमारा घर भी वाइट कलर का है, क्योंकि वाइट कलर शांति और स्वच्छता का प्रतीक है। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत बात, और बहुत ही अच्छे जज्बात के साथ आप जुड़ते हैं, और बहुत ही प्यारे ढंग से आप मैसेज करते हैं। थैंक यू किशन वंजानी, नीलम स्वाति और

रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से हमारे साथ जुड़े हैं और कहते हैं गुड इवनिंग, वेलकम टू द शो। हमारा तो यही कहना है कि सफ़ेद रंग मैं बहुत मुझे पसंद है, जो कि सादगी और शांति का प्रतीक है। प्रोग्राम में मज़ा आ रहा है, बिल्कुल आप मेरे साथ हैं तो प्रोग्राम तो आपने खूबसूरत बना ही दिया है। थैंक यू। गुन्नौर से आदिल कमल तस्दीक अली मुजफ्फर अली हमारे साथ जुड़े हैं और कहते हैं हर रंग में रंग जाता हूँ मैं, परेशानी में भी मुस्कुराता हूँ मैं। क्या बात है, आपने तो बहुत सारे दिलों को जोड़ दिया इस मैसेज को करके। ललित राणा डेरा बस्सी पंजाब से हमारे साथ जुड़े हैं और अगला ट्रैक लगा रही हूँ। दोस्तों मेरी जिंदगी में सबसे ज़्यादा महत्व रखता है हरा रंग, जो ताजगी विकास और उम्मीद का प्रतीक है। ये हर नए दिन के साथ हमारी जिंदगियों में नई ऊर्जा भरता है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जैसे कि मैं सोच रही हूँ कहीं ना कहीं आप ड्राइव कर रहे होंगे या फिर जिम में वर्कआउट कर रहे होंगे या फिर स्विमिंग कर रहे होंगे अपने पूल में या फिर कहीं ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहे होंगे या फिर घर जा रहे होंगे, लेकिन इस बहार को, इस खूबसूरत एहसास को खूबसूरती से ज़रूर बांटते चलिए। और हाँ, मैसेज करते रहना दोस्त, आपका मैसेज नहीं आया अभी तक, है ना। ये गाना मैं आप ही के नाम कर रही हूँ।

आकाशवाणी रेनबो पर नीरजा है आपके साथ, प्रोग्राम चल रहा है मैसेज मसाला मिक्स और हम बात कर रहे थे जिंदगी के रंग फिल्म रेनबो के संग, और बात कर रहे थे कि ऐसा हो सकता है कि हम लाल रंग को हौसले के रंग से जोड़ दें या पीले को मुस्कानों की धूप से जोड़ लें या हरे रंग को रिश्तों की हरियाली से। तो आपके जीवन का सबसे अपना रंग कौन सा है, इसी सवाल के साथ मैं आपसे जुड़ी हूँ। और हमारे पास मैसेज आ गया है अंशी शर्मा हस्तिनापुर मेरठ से, लिखती हैं कि इस टॉपिक पर उन्हें यही कहना है कि रेडियो से जुड़े हुए रंग हैं, वैसे ही हमारी लाइफ में हर रंग का अपने आप में बहुत महत्व है, क्योंकि जो भी लिसनर एफएम रेनबो के साथ अटैच्ड है उनकी लाइफ तो रंगीन हो ही जाती है। जहां इतना लवली, ओहो बिल्कुल, थैंक यू सो मच, सभी का साथ रहता है और इन्फॉर्मेशन के साथ हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा सा माहौल बना रहता है, अच्छे गाने चलते हैं और ये सब मिला के हमारा जो फेवरेट कलर है वो ऑरेंज कलर है। क्या बात है अंशी, बड़े ही स्टाइलिश तरीके से आपने अपना मैसेज हमें कन्वे किया है, मज़ा आ गया। अगला मैसेज हमारे पास आया है, सबसे जो रियल कलर है, रियर कलर है, वो है वाइट, मुझे वही ज़्यादा पसंद है। ऐसा राकेश वोरा बुराड़ी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं और बता रहे हैं। शम्सुल कमर राही ने तो बहुत खूबसूरत सी एक रचना ही लिख दी है, चलिए जरूर पढ़ूंगी। जिंदगी के खाली कैनवस पर मोहब्बतों के रंग ना हो तो जिंदगी बदमजा हो जाती है। क्या बात है, मुझे तो लगता है दोबारा पढ़ देना चाहिए और सुना देना चाहिए उन सबको जो बस सोचते रहते हैं। हाँ जी, जिंदगी के खाली कैनवस पर मोहब्बत के रंग ना हो तो जिंदगी बदमजा हो जाती है, लेकिन मोहब्बतों के भी कई रंग होते हैं। मोहब्बत जब माँ से होती है तो ममता बन जाती है, मोहब्बत जब उस्ताद से होती है तो आदर्श बन जाती है, मोहब्बत जब शिक्षा से होती है तो रोशनी बन जाती है, मोहब्बत जब प्यार का रूप धारण कर ले तो अमर बन जाती है, मोहब्बत जब रेडियो से हो तो दोस्ती बन जाती है। इसलिए मुझे पसंद है मोहब्बतों का रंग जो मुझे है रखता रेडियो के संग। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने अपनी बात कही है। और अगले मैसेज की ओर बढ़ती हूँ। रंजीत कुमार मंडल सिकटी अररिया बिहार से कहते हैं, मेरा पसंदीदा रंग ना सफ़ेद है, इस रंग से मुझे गजब की शांति मिलती है। कपड़ों की दुकान में भी मैं जब रंगों के चक्कर में उलझ जाता हूँ ना तो सीधे सीधे सफ़ेद रंग का कपड़ा खरीद लेता हूँ। क्या बात है, ये सही है, लेकिन इसमें हम कैसे जुड़ सकते हैं, है ना। हम लड़कियों को बहुत सारे रंग चाहिए। हाँ, वाइट भी पसंद है, लेकिन उसमें भी हम रंग जोड़ ही देते हैं। शैलजा नीम राणा से हमारे साथ जुड़ी हैं और कहती हैं, पर्पल कलर से सभी अलग, सब कलर्स में ना वो अलग सा दिखता है और अट्रैक्टिव भी लगता है। और शैलजा, मुझे बहुत पसंद है और मुझे लगता है मेरे दोस्त को भी बहुत पसंद है, यानी तुम्हारी बात कर रही हूँ, सुन रहे हो ना डियर। गुड इवनिंग। और रंग सभी अच्छे हैं, अपनी अपनी सोच का फ़र्क है और रंग का अपना महत्व है, हर रंग का अपना महत्व है और सभी रंगों को मिला

का रेनबो बन जाता है एफएम, जो हम सभी इन रंगों के आने से है और बन जाता है। अरे धर्म भाटिया जी का रोहतक से मैसेज आया है। धर्म भाटिया जी, मुझे लगता है काफ़ी दिनों बाद मैंने आपका मैसेज पढ़ा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप जुड़ गई। कैलाश शर्मा गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़े हैं और कहते हैं, जहाँ तक रंगों की बात है ना, मुझे तो सारे रंग पसंद है क्योंकि सारे रंग मिलकर ही एक रंग बिरंगी जिंदगी बनाते हैं। जैसे इंद्रधनुष में सारे रंग मिलाकर एक खूबसूरत दृश्य पैदा करते हैं, वैसे ही जिंदगी में सारे रंग यदि मिल जाएं तो हमारी जिंदगी भी एक इंद्रधनुष की तरह सुंदर और आकर्षक बन जाती है। बिल्कुल उम्मीद है कि हमारी जिंदगी भी सुंदर और आकर्षक आपके आने से, आपके होने से, आपके सुन लेने से बन जाएगी।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं 8:00 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: आकाशवाणी रेनबो पर कार्यक्रम चल रहा है मैसेज मसाला मिक्स, जहां जीवन के रंगों को आप कहीं ना कहीं इंद्रधनुष के रंगों से जोड़कर बता रहे हैं और बहुत ही खूबसूरती के साथ बता रहे हैं। मोनीश हमारे पास, मोनीश इदरीसी हमारे साथ जुड़े हैं और कहते हैं रंग तो सारे अच्छे होते हैं, लेकिन हमारा रंग जो है वो मुझको जो अच्छा लगता है, वैसे भी सावन में अच्छा, आप हरे रंग की बात कर रहे हैं है ना, हरा रंग, वैसे भी सावन में हर जगह हरा तो हो ही जाता है, हरी हरी घास और साफ पेड़ दिखते हैं और जिधर देखो हरा हरा ही दिखता है। बिल्कुल बिलासपुर यूपी से ही हमारे साथ जुड़े हैं और सच में मौसम का और इस ऋतु का बहुत मजा ले रहे हैं और साथ में इसे अपने जीवन से भी जोड़ रहे हैं, कितनी खूबसूरत बात है। विष्णु प्रसाद दांगी, ग्राम खजूरिया, तहसील ब्यावरा, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश से कहते हैं कि मुझे हरा रंग बहुत पसंद है क्योंकि समृद्धि एवं किसान की फसलों का प्रतीक है, जो सभी को एकता के रंग में रंग देता है, जहाँ पर सभी मानव जाति एक है और यह रंग भाईचारे के रूप में भी माना जाता है। इसमें पशु पक्षी मानव सभी एक जीव हैं और जैसे हमारा रेडियो कार्यक्रम सबको समान रूप से मानता है, बिल्कुल ऐसा लगता है वैसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और बहुत अच्छा लगा आप जब इस तरह से अपनी बात को हमें समझा देते हैं। बिहार से मोहम्मद सजहद हमारे साथ जुड़े हैं और कहते हैं वैसे तो हमें सब रंग पसंद है लेकिन हमें सबसे ज्यादा अच्छा रंग ना हरा ही लगता है, क्या बात है। आगे कहते हैं FM रेनबो को सुनते हैं ना, देहरादून से आलोक पवार और मिनी हमारे साथ जुड़े।

0: और कहते हैं एफएम रेनबो को सुनते हैं तो हमें सातों रंग पसंद हैं। कार्यक्रम और गाने तो बढ़िया हैं ही, और कार्यक्रम का प्रस्तुतिकरण सच में हमें जोड़े रखता है। और सच में आप जब इस तरह से मैसेज करते हैं तो हम भी जुड़े ही रहते हैं आपसे। रवि जोशी मेरठ से हमारे साथ जुड़े हैं और कहते हैं शुभ संध्या, मुझे नीला रंग बहुत पसंद है। ये रंग स्टेबिलिटी, विश्वास, इंटेलिजेंस का प्रतीक है। और आसमान और समंदर नीला है, जो विशालता और गहराई को दर्शाता है। क्या बात है, आपका नाम रवि है ना, तो गहरी बात तो आपको करनी ही थी। बहुत ही खूबसूरत एहसास के साथ जोड़ दिया। राजेश भल्ला एडवोकेट कंकर खेड़ा मेरठ से हमारे साथ जुड़े हैं और कहते हैं लगनशील, परिश्रमी, हिम्मत के मेल से जो रंग बनता है ना, वो जीवन को रंगीन बना देता है। क्या बात है, तो बिल्कुल मेहनत आप और हम तो कर ही रहे हैं और करते रहेंगे। कविता हमारे साथ जुड़ी है उत्तराखंड के ऋषिकेश से और कहती हैं पेड़ों को जब काटा जाता है ना और गंगा जी को जब दूषित किया जाता है, तो मुझे लगता है कि इसको बचाने के लिए हमें पेड़ों से चिपक जाना चाहिए और सभी को सभी स्तर पर अपने अपने कोशिश करते रहने चाहिए। बिल्कुल ये बात तो आपकी सही है, अच्छे
1: आई
0: जज्बे
1: लव
0: के
1: यू
0: साथ
1: कह रही
0: जुड़े
1: होगी।
0: रहना
1: हाँ या ना,
0: चाहिए।
1: पूछा क्या उसने? बिल्कुल वैसे ही,
0: और
1: झुमके पहन कर आना, नथनी पहन कर आना, देखो वो आ भी नहीं
0: फिलहाल मैं
1: है।
0: अगले गीत के साथ
1: ले लो,
0: आपको जोड़
1: झुमका भी
0: रही
1: नहीं,
0: थी।
1: नथनी भी
0: रुको
1: नहीं।
0: रुको,
1: चलो हम लोग चलते हैं। अरे चुप रह,
0: कहाँ से लिया ये?
2: वो मैं
0: चलिए जब तक गाना शुरू होता है तब तक मैं अनिल शर्मा जी का मैसेज पढ़ देती हूँ। कहा है कि हरा रंग ट्रैफिक लाइट के लिए विश्व भर में इस्तेमाल किया जाता है और ये रंग चलने की इजाज़त देता है ऐसे इंसान को। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हरा रंग बड़ा मायने रखता है, इसलिए सभी रंगों का राजा मुझे तो हरा रंग ही लगता है। क्या बात

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
3: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
4: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
3: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
5: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
6: ठीक है,
5: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो HR कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
4: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
3: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
7: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
3: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
4: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
3: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
4: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
3: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
4: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
3: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
4: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
8: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
9: आकाशवाणी रेनबो पर मैसेजेस का सिलसिला जारी है। हमें मैसेज भेजा है जिला मुरादापुर, ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह कहते हैं कि मैं तो बिल्कुल अच्छा हूँ और रोज़ मैं अपने परिवार के साथ प्रोग्राम सुनता रहता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं सारे रंग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। हेलो और शुभ संध्या। मुझे तो सारे ही रंग पसंद हैं क्योंकि सभी रंगों से मिलकर रेनबो बनता है। FM रेनबो मेरी, मुझे हमारी सुबह उसी से तो होती है। क्या बात है। मोनिका देहरादून से कह रही हैं।

रक्षा राम कौशल हमारे साथ जुड़े हैं और कहते हैं एफएम रेनबो कितना पसंद है, शब्दों में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ और जब भी वो मुस्कुराते हैं उसे देख लोग खुश हो जाते हैं। क्या कहना उनकी उस मुस्कान का, ऐसा लगता है मानो बंद होठों से अल्फाज निकल जाते हैं। जी बहुत

अवनेश अशोक बिहार से दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं और कहते हैं कि टॉपिक पर तो यही कहूँगा कि हाँ, सारे ही कलर फेवरेट लगते हैं मुझे, ब्यूटीफुल भी होते हैं और मैं हर कलर की ब्यूटी को दिल से फील करता हूँ, और कोई एक फेवरेट कलर ढूँढना मेरे लिए तो भाई बहुत डिफ़िकल्ट है।

नाम तो दोस्त बहुत सारे हैं हमारे पास और एक के बाद एक कोशिश कर रही हूँ उन्हें पढ़ने की और ले रही हूँ। प्रवीण चौहान खरगोन मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। कहते हैं मुझे रंग बिरंगी चमकदार चीज़ें अच्छी लगती हैं, कम से कम दो तीन रंग तो होने ही चाहिए। जैसे प्यारी सी तितली को ही देख लीजिए ना, कितनी रंग बिरंगी होती है।

आकाशवाणी रेनबो पर यह सिलसिला यूं ही जारी रहेगा और मनन ठकराल हमारे बीच आ गए हैं अगला कार्यक्रम लेकर। लेकिन चलते चलते एक बहुत ही प्यारा सा ट्रैक जिसमें मेरे जज्बात सीधे आपसे जुड़ते हैं, आपके नाम कर रही हूं और हाँ, एक घंटे बाद मैं फिर से आपके बीच हाजिर हो जाऊंगी 8 बजे पार्टी टाइम लेकर। फिलहाल आपसे जो है ना मन कहने का, वो कह ही देती हूँ गाने के माध्यम से। नमस्कार।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: Alright, last 7 minutes left for this show to wind up, and before I do so, I'll take a few messages. It says Anu Kumar from Jharkhand, positive vibes. Please play We Are the World, We Are the Peace. Wow, great choice, but not in the show. Thank you so much, Anu, for sending in a message from Jharkhand. And next is, hi, I'm Nikhil, and it's Jayanti with me. Good evening. Hi, Nikhil. Hi, Jayanti. Hope you guys doing good and enjoy the music. And next is, all-time favorite track and all-time favorite weekend program, Country Carnival. Thank you so much. Wow, thank you so much. And yes, Mr. Matthew messaged that he is from Kerala. Wow, God's own city. Wow, glad to have you, Mr. Matthew. Thank you so much for sending your request. And before I play the next track, I have some commercials coming your way. Do listen to them. Woohoo!
1: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
2: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
3: म्यूजिक मस्ती।

नमस्कार, 8 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं आकाशवाणी रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन आज नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जून तक लगभग 55,49,00,000 उपयोगकर्ता यूपीआई से जुड़ चुके हैं। लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में 24,162 करोड़ यूपीआई लेनदेन में 314,00,000 करोड़ रुपए का आदान प्रदान हुआ। सर्वोच्च न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल को इस बारे में निर्देश प्राप्त करने को कहा है कि क्या अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा के कथित गबन की जांच के लिए विशेष जांच समिति SIT गठित की जा सकती है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली में सभी प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने, संयम बरतने और शांति तथा सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस गुट को पार्टी के 3 बैंक खातों को संचालित करने की अंतरिम अनुमति देने से इनकार कर दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सैंडू के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि दोनों देशों के बीच तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में साथ काम करने की अपार संभावनाएं हैं। ब्रिटेन में लेबर पार्टी के नवनिर्वाचित नेता एंडी बर्नहैम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। अमरीका ने लगातार 9वें दिन भी ईरान पर हमले जारी रखे, जिसके कारण होर्मुज जलडम रूमध्य को लेकर तनाव और बढ़ गया। उत्तराखंड के कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी के बाद चार धाम यात्रा को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राजौरी और पुंछ जिलों में बारिश की घटनाओं में मारे गए लोगों के परिजनों को तत्काल सहायता के रूप में 6,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में स्पेन के अर्जेंटीना को हराकर दूसरी बार वर्ल्ड कप जीता। फेरन टोरेस ने एक्स्ट्रा टाइम में स्पेन के लिए एकमात्र गोल किया। ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार। बने रहिए FM रेनबो पर यूं ही।

आकाशवाणी रेनबो पर समय हो चुका है म्यूजिक मस्ती का। लीजिए, हाजिर है एक के बाद एक ऐसा ट्रैक जो म्यूजिक भी देगा और मस्ती भी भर देगा आपके बीच।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
3: मैं रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।
4: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
5: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
6: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
7: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
8: आज की रात मजा,
7: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
6: म्यूजिक मस्ती।
9: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
10: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
6: म्यूजिक मस्ती।
11: आकाशवाणी रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है म्यूजिक मस्ती, और आप बिल्कुल तैयार रहिएगा, डांसिंग फ्लोर से उतरने तो बिल्कुल नहीं दूंगी मैं। यानी संगीत बजेगा, दिल जुड़ जाएगा और खुशियां वो तो बिखर जाएंगी दोस्तों, यहां से वहां तक।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आकाशवाणी रेनबो पर म्यूजिक मस्ती जारी है क्योंकि दिल चीज ही ऐसी है कि इसे और नहीं बहुत कुछ चाहिए, और इसके बाद एक और ट्रैक चाहिए और उसके बाद एक और, तो बिल्कुल ये सिलसिला तो यूं ही चलता रहेगा। आप बने रहिए FM रेनबो, दिल से दिल तक पर यूं ही।

0: हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।

आकाशवाणी रेनबो पर कार्यक्रम चल रहा है म्यूजिक मस्ती, और मस्ती जिंदगी से कभी कम नहीं होनी चाहिए। क्या कहते हैं आप? मैं तो आपकी बात में अपनी हाँ में हाँ मिला रही हूँ। तो आ जाइए डांसिंग फ्लोर पर, हाथ नहीं छोड़ना दोस्त।

आकाशवाणी रेनबो पर मेरे जाने का वक्त हो रहा है क्योंकि रेशमा हमारे बीच आ गई हैं, लेकिन दोस्त मैं बहुत ही जल्दी आपसे फिर मिलने आऊंगी इसी वादे के साथ कि आपकी शाम गुनगुनाती रहे, झूमती रहे। मुझे दीजिए ना इजाजत। नमस्कार।

की है धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने की अपील की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और मालदोवा के बीच मजबूत आर्थिक सहयोग तथा तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में सहयोग का आह्वान किया है। जम्मू संभाग में मूसलाधार बारिश से 4 और लोगों की मौत हो गई है। पिछले 2 दिनों में मरने वालों की संख्या 16 हो गई है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कई जिलों में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कल तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी। दिल्ली सरकार ने राजधानी में प्रदूषण कम करने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की परिवर्तन योजना को मंजूरी दे दी है। और ब्रिटेन में लेबर पार्टी के एंडी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। तो ये थे अभी तक के आकाशवाणी के रेनबो पर मुख्य समाचार।

संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों को लेकर कई बार बाधित रही। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों से बातचीत

तो दोस्तों आइए अब शुरुआत करते हैं कार्यक्रम आपकी याद आती रही की। आपकी याद आती रही एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम याद करते हैं उन खास लम्हों को जो जिंदगी की सच्चाइयों के तो करीब होते ही हैं, साथ ही साथ हम महसूस करते हैं उन लम्हों को जो यकीनन हमारे दिल के करीब होते हैं। तो चलिए आकाशवाणी के रेनबो चैनल पर शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत से नगमे के साथ।

वाकई अक्सर राहों की जब बात होती है तो अक्सर बहुत सारे लोग याद आ जाते हैं, क्योंकि वही राहें हमेशा हमारे साथ हुआ करती हैं। बहुत सारे लोग उन राहों पर हमारे साथ चलते हैं और वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत सारे लोग, बहुत सारे हाथ हमसे छूट जाया करते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि भीड़ के बीच आप बैठे हों, बहुत सारे लोग हों, लेकिन अचानक किसी पुराने दोस्त की हंसी कानों में गूंज जाए? कभी किसी पुरानी गली से गुजरते हुए ऐसा लगे कि ये दीवारें अब भी आपका ही नाम पुकार रही हों, क्योंकि वही दीवारें हैं जहां आप भरी दोपहरी में नंगे पैर खेला करते थे। कुछ आवाजें आपके कानों में सुनाई देती हैं, न जाने वो अब कहां होंगे लोग, लेकिन ये हकीकत है, एक बार उस गली से जो गुजर जाएं तो न जाने माजी के कितने चेहरे आंखों के सामने आ जाते हैं।

जी हाँ, ये दिल बहुत सारे लोगों से घुल मिल जाया करता है। ये दिल अक्सर बहुत सारी दोस्तियाँ भी कर लेता है, लेकिन कई बार उन लोगों को भुला नहीं पाता जो कभी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हुआ करते थे। कई बार वो पुराने लोग अक्सर याद आते हैं, अक्सर हम उन्हें पहचान भी नहीं पाते हैं, लेकिन कई बार होता तो यही है दोस्त कि अक्सर उनकी याद आती है, धीमी धीमी आवाज़ सुनाई देती है और न जाने क्यों हम उन यादों में खो जाते हैं।

दोस्तों, यादें जो कभी पुरानी होती ही नहीं। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं इन यादों में, जिनके साथ बिताए लम्हे आज भी दिल के किसी कोने में मुस्कुराते हैं। उन गलियों के नाम जहां बचपन दौड़ता था, शामें ठहरती थी और सपने आसमान से बातें किया करते थे। जी हाँ, आज की ये जो खास मुलाकात है आपके साथ, यकीन मानिए उन्हीं गलियों के नाम, उन्हीं बचपन के नाम अक्सर याद आते हैं। वो दोस्त, वो गलियां, वो चौबारे, यकीनन वहाँ एक अरसा गुजारा होता है। और वो जो अरसा हुआ करता था, यूँ लगता था कि जैसे वक्त वहीं पर ठहर जाए और हम बस उसी वक्त को जी लें। और आज भी कहीं ना कहीं शायद वही बच्चा हमारे अंदर मौजूद है, और इसीलिए हम जिंदगी की ना जाने कितनी सारी मुश्किलात को हंसकर मुस्कुराकर झेल जाते हैं और बस इतना ही कहते हैं कि कोई बात नहीं, हो जाएगा, क्योंकि वो बच्चा आज भी कहीं ना कहीं है हमारे अंदर और होना भी चाहिए। और कितनी बातें करें बचपन की, जरा शाम को तो याद कीजिए। शाम होते ही गली में दोस्तों की आवाज़ गूंजा करती थी। ना मोबाइल थे ना सोशल मीडिया, फिर भी दोस्ती सबसे ज्यादा थी, दिल से दिल तक बिना किसी नेटवर्क के। और आज वही दोस्त किसी दूसरे शहर में हैं, किसी दूसरे देश में हैं, या जिंदगी की भागदौड़ में हमसे बहुत दूर चले गए हैं, कहीं खो गए हैं। लेकिन यादें आज भी उसी मोड़ पर खड़ी हैं जहां आखिरी बार हम मुस्कुराए थे, जहां आखिरी बार ये कहा था कि हम कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। और वो दोस्त मुस्कुरा के सिर्फ आंखों से कह पाते थे कि न जाने कब, कैसे, कहाँ। लेकिन ये हकीकत है जनाब, एक जिंदगी का वक्त उन दोस्तों के नाम आज भी है।

कितना अच्छा लगता है ना कोई आपसे ये बात कहे कि पूरी जिंदगी पूरा जीवन तेरे नाम। वाकई यूं समझ लीजिए कि ये दिल बहुत खुश हो जाता है, बहुत अच्छा एहसास करता है कि हाँ कोई ऐसा है आपकी जिंदगी में जो सिर्फ आपके लिए है 24 घंटे पूरी जिंदगी। तो जनाब बात आपके साथ फिलहाल तन्हाई की हो रही थी। तन्हाई वैसे बड़ी अजीब चीज़ है, जब पास कोई नहीं होता तो सबसे पहले याद वही लोग आते हैं जो कभी सबसे ज़्यादा पास हुआ करते थे। कभी कोई पुरानी डायरी उठाकर देखिए, एल्बम अगर हो, पुरानी एल्बम्स, उसमें कुछ तस्वीरें आपको नज़र आएंगी, या फिर अगर आपने कोई अपने पास स्कूल की कोई डायरी या कोई कॉपी रखी होगी तो उसके पिछले पन्ने पर आपको बहुत कुछ लिखा मिल जाएगा आपके ही हाथों का। एक बार देखिएगा ज़रूर अगर आपके पास वो कॉपी है आज भी, तो याद आएगा वो अधूरे वादे, सब कुछ जैसे फिर से जिंदा सा हो उठता है। कहा जाता है कि वक्त बदल जाता है, लोग बदल जाते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते यादों में हमेशा वैसे ही जिंदा रहते हैं जैसे कभी थे।

वाकई जनाब, ये मोहब्बत क्या शय है, क्या चीज़ है, इसके बारे में न जाने कितना लिखा जा चुका है, न जाने कितने शायरों ने गज़लें लिख दीं, रुबाइयाँ लिख दीं, कवियों ने कविताएं लिख दीं, लेकिन आज तक कोई सही मायनों में बता ही नहीं पाया कि आखिर ये कौन सा जज्बा है। ज़िंदगी किसी के नाम करने का जज्बा है? अपने जज्बात, अपने एहसासात किसी के साथ बांटने का जज्बा है? आखिर ये क्या है? भाई, मुझे तो लगता है कि कभी कभी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स जब आ जाता है हमारी ज़िंदगी में, जिसके बाद हर लम्हा उसी से जुड़ जाता है, फिर उसके बिना जीने का तस्वुर भी नामुमकिन सा लगने लग जाता है। मोहब्बत, शायद मोहब्बत यही है, जब किसी की मौजूदगी हमारे लिए बाइसे सुकून बन जाए, हमें अच्छा एहसास हो जाए, उसकी मुस्कुराहट दुआ बन जाए और उसकी खामोशी भी हमसे बहुत कुछ कहने लग जाए, उसकी परेशानी में उसका साथ देने के लिए आप तैयार हो जाएं, हर तरह से आप मुमकिन करें कि सब कुछ बेहतर हो, वो खुश रहे और उसकी ज़िंदगी में

परेशानी ना हो, शायद शायद यही मोहब्बत है। और इसीलिए इसीलिए उसके बिना जीने का तस्वुर किया ही नहीं जा सकता।

वाकई जिसके बिना जीने का तस्वर ना हो, अगर वो दूर हो जाए तो सांसें चलती तो रहती हैं मगर जिंदगी कहीं ठहर सी जाती है। फिर भी सच्ची मोहब्बत किसी को पालने का नाम नहीं बल्कि उसकी खुशी में अपनी खुशी को ढूंढ लेने का नाम ही मोहब्बत और सच्ची खुशी होता है। तो जनाब, इन खुशियों को हम भी तलाश करने की कोशिश तो करते हैं अपनी ज़िंदगी में, और एक ख़ास बात जो अक्सर मुझे लगती है कि ज़िंदगी में हम पता नहीं क्या तलाशते हैं, वो तलाश शायद आपके करीब ही है। महसूस करके देखिए, आपको एहसास हो जाएगा कि वही तो सब कुछ है। एक बार अपने अतराफ में देखिए, और जब मैंने अपने अतराफ में देखा तो मुझे बहुत सारी मोहब्बतें नजर आईं। सौरभ अनेजा हमारे साथ, जी हाँ, लिखते हैं गुड इवनिंग दोस्त, वेलकम बैक गाजियाबाद से, बहुत शुक्रिया। और आपकी याद आती रही, मैं आपको प्यार भरा नमस्कार। गुनौर से आदिल कमर तस्दीक अली मुजफ्फर अली, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ रहने के लिए, प्रोग्राम सुनने के लिए। यादों की बारिश में भीगा है आज फिर ये शहर, हर एक मोड़ पर बिखरा है तेरी यादों का मंजर। रिमझिम फुहारे पूछती हैं कहाँ गया वो हम सफर, सरफराज अब भी तेरी याद में भीगता है ये शहर। वाह क्या बात है। और आप समझ ही गए होंगे कि ये सरफराज साहब हमारे साथ, हमारे बहुत पुराने लिसनर बिहार से, जो कि हर दर्शना बाजार से हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं और प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, गुड इवनिंग, वेलकम टू शो, आपकी याद आती रही। कार्यक्रम लाजवाब चल रहा है, गीत और संगीत हमें बेहद पसंद आ रहा है। ये लिखा है किशन मंजानी, नीलम स्वाति और किशु, रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से, बहुत बहुत शुक्रिया। और अमरावती महाराष्ट्र से गुड इवनिंग मैम, और लिखा है कि ये नंबर है और ये मेरा मैसेज पिछले 3 दिन से किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है जनाब, आपका मैसेज हमने प्रोग्राम में शामिल कर लिया है और आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहते हैं, आपका नाम हमें अक्सर याद भी रहता है। पंकज अमरावती महाराष्ट्र से, तो आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। अपने मोबाइल से आप हमें मैसेज कर सकते हैं, अपने किसी साथी, अपने किसी रिश्तेदार, जैसे कि आपने लिखा, तो कोई बात नहीं है, आप जैसे चाहें हमसे जुड़ सकते हैं, तो हम तो हैं ही आपके लिए यहाँ बैठे हुए। बहुत शुक्रिया। ये वफाओं का सिला, दिल गमे आतिश में जला, हर तरफ खामोश तन्हाई की हवा, बस और इसके सिवा कुछ न मिला, कुछ न मिला। प्रेमचंद जी हमारे साथ लिखते हैं कि आज रेडियो ज़रा देर से ट्यून किया, इसलिए आपका शो सुनने में थोड़ा सा लेट हो गया। कोई बात नहीं जनाब, आप प्रोग्राम सुन रहे हैं, हमारे साथ हैं, एक अच्छे कवि हमारे साथ हैं, और हमें क्या चाहिए। प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके अलावा हमारे साथ कौन है, कस्बा गुनौर यूपी से फारूक अली खान, फैज़ी फरहान और फरहीन फराज, फारिया और ताहिरा लिखते हैं, उफ आपने तो बचपन की बेशुमार यादों को ताज़ा कर दिया, इतने खूबसूरत यादों को याद दिलाने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। 18 तारीख को 30 साल बाद एक रेडियो दोस्त से हापुड़ में मुलाकात हुई, दिल खुश हो गया। 18 जुलाई 2026 को कुछ यादों को अपने साथ समेट लाए, क्या बात है। और यकीनन उस दोस्त से मिलने के बाद न जाने कितने वरख खुल चुके होंगे जिंदगी के, जो आपने सोचा भी नहीं होगा और जिन बातों को आपने अक्सर याद भी नहीं किया होगा, उसके मिलने के बाद बहुत सारी बातें ज़रूर याद आई होंगी। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि पुराने दोस्तों का फ़ोन नंबर अपने पास ज़रूर रखा कीजिए, कोई ऐसा एड्रेस ज़रूर रखा कीजिए जिनसे राब्ता किया जा सके। और सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी हमारे साथ शांतिनगर सोनीपत से लिखते हैं, वेरी हैप्पी एंड हेल्दी मंडे, गुड इवनिंग, वी आर लिसनिंग प्रोग्राम, आपकी याद आती रही, बेस्ट प्रेजेंटेशन, गुड प्ले लिस्ट ऑफ नॉटी 90s सॉन्ग, your big thanks for excellent program, god bless you always, thank you so much mukhi family, aap hamesha hamare saath rehte hain, dher sari duaon se hamein nawazte hain, iske liye dil se aapka hum shukriya ada karte hain। aaj bhi yaad hai par nazron pe nahi, mohabbat bhi hoti hai ajeeb na, dekhti hai ameer gareeb। मीरा सिंह सिलीगुड़ी नॉर्थ बंगाल से हमारे साथ हैं, अच्छा लिखा है आपने दोस्त, बिल्कुल, और ऑल सॉन्ग्स आर वेरी ब्यूटीफुल। और इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए और प्रोग्राम तो दोस्तों है ही आपका। मैम जी नमस्कार, लिखते हैं कौन, अमर रमेश कुमार खट्री लिखते हैं कि प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, बहुत सारे नाम आपने लिखे हैं, साथ ही आपने लिखा है कि आप प्रोग्राम के सारे सॉन्ग कलेक्शन, ज़बरदस्त लाजवाब, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।
प्रोग्राम सुनने के लिए, प्रोग्राम को पसंद करने के लिए। और कासगंज से मास्टर राधे श्याम जी हमारे साथ हैं, बहुत दिनों बाद जुड़े हैं। भाई आप कहाँ थे? चलिए आप जहाँ हो खुश रहिए। गुड इवनिंग। प्रोग्राम में सॉन्ग सिलेक्शन बहुत ही लाजवाब है, नाइस प्रेजेंटेशन, थैंक्स अ लॉट। और जब बात आई है खूबसूरती की, जब बात आई है मोहब्बत की, तो चलिए एक और प्यारा सा सॉन्ग सुनते हैं, उदित नारायण और अलका याग्निक की खूबसूरत आवाज़।

और वाकई जनाब जो अपना होता है वो बेहद प्यारा होता है, क्योंकि आप उसे मोहब्बत की निगाह से देखते हैं और जब आप उसे अपना मानते हैं तो यकीन मानिए वो आपको दुनिया से प्यारा लगता है। अमन कुमार लिखते हैं, बागपत यूपी से कई दिनों की भागदौड़ के बीच आज रेडियो से जुड़कर सुकून मिला जैसे बारिश में गर्म चाय। वाह क्या बात है अमन, बहुत अच्छा आपने कॉम्प्लीमेंट दिया है। और यकीनन हमारी कोशिश यही होती है कि कुछ पल सुकून के साथ गुजारे जाएं। गुड इवनिंग मैम, नाइस सॉन्ग सिलेक्शन। शालू हैं शादीपुर दिल्ली से हमारे साथ, बहुत शुक्रिया। और संगीत के सितारे रेडियो लिसनर्स क्लब भी आपको अलग अलग जगह पर सुन रहा है और प्रोग्राम की तारीफ हो रही है। और इस बारिश में खूबसूरत मौसम में प्रोग्राम आपकी याद आती रही, सुनकर दिल खुश हो गया। चलिए जनाब, अगर आपकी जहां आप रहते हैं कस्बा गुनौर यूपी में तो उधर बारिश हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। बारिश में चाय कॉफी इंजॉय कीजिए और साथ में पकौड़े भी बनवा लीजिए। हेलो डियर, गुड इवनिंग, आपकी याद आती रही। फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ मैं तो, आफ्टर 7 PM के बाद FM बंद कर। अरे ये क्या लिख दिया आपने, 7 बजे के बाद आप FM नहीं सुनते, ये आपकी गलत बात है, आप प्लीज सुनिए। और ये हमें लिखा है मिसेज धर्म भाटिया रोहतक से लिखते हैं, प्लीज हम तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमेशा प्रोग्राम सुनिए, 7 बजे के बाद भी सुनिए, रात में भी सुनिए, क्योंकि जनाब अली ये हम लेकर आते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कार्यक्रम, और इसमें हम कोशिश करते हैं कि कुछ पल सुकून के साथ गुजार सकें। शुभ संध्या मैम, देर से जुड़े राजेश भल्ला एडवोकेट कंकरखेड़ा मेरठ से, कोई बात नहीं, आप हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ हैं आप, इससे बड़ी और कोई बात हो ही नहीं सकती। वक्त का क्या है, वक्त का काम तो गुजरना होता है। नमस्कार शुभरात्रि, मेरा नाम कृष्ण कुमार मिश्र है और मैं दिल्ली में रहता हूं, और आज आपको सुन के हमें भी आपकी याद आती रही। वाह क्या बात है, आपको हमारी याद आई है तो समझ लीजिए हम आपके साथ हैं और हमें भी अक्सर बेशतर आप सबकी याद आती है, और हमारी कोशिश यही रहती है कि आप तक कुछ खूबसूरत बातें पहुंचा सकें, कुछ खूबसूरत दिल की बात की जा सके, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में कहां हम सब के पास फुर्सत है कि हम अपने दिल की सुन सकें, कुछ अपनों को याद कर सकें, कुछ गुजरे हुए लम्हों को याद कर सकें। लेकिन ये प्रोग्राम ऐसा है जिसमें हम गुजरे हुए लम्हों को याद करते हैं, तो बस आपसे हम इतना ही कहेंगे, कभी कोई पुरानी डायरी जरूर उठा के देखिएगा, एल्बम जरूर देखिएगा, बहुत सारे चेहरे आपको याद आ जाएंगे, या फिर अपना कोई पुराना दोस्त जिससे आप बहुत दिनों से नहीं मिले हैं उनसे आप ज़रूर मिलिएगा और फिर देखिएगा वो जो एक मासूम सा बच्चा है ना आपके अंदर, यकीनन वो खिलखिलाकर हंस देगा और आपको बेहद अच्छा एहसास होगा। तो बस इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे यहीं विदा चाहती हूँ और आपसे मिलूंगी ठीक 11 बजे प्रोग्राम रंगे महफिल में। अपना अच्छा सा ख्याल रखिएगा, मोहब्बतों के चिराग ऐसे ही आप रोशन रखिएगा, क्योंकि अगर इस दुनिया में यकीन मानिए कोई किसी को मोहब्बत दे पाता है, किसी को अपनापन दे पाता है, तो इससे बेहतर कोई और बात हो ही नहीं सकती। तो बस मोहब्बतें जो आपके चिराग हैं उन्हें हमेशा ऐसे ही आप रोशन रखिए। फिलहाल मिलूंगी आपसे बहुत जल्द, अपना

0: વાણી આકાશવાણી
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक एंड वी आर ऑन द जर्नी ऑफ अ सुपरस्टार विद यू ऑल ऑन द शो कॉल्ड एज रेनबो शोकेस विद मी मनु ठकराल ऑन आकाशवाणी रेनबो 102.6 MHz। ऑलराइट, मूविंग अहेड विद द जर्नी ऑफ द स्टार बॉन जोवी एंड दिस जर्नी हैज बीन अ रिमार्केबल स्टोरी ऑफ प्रिजर्वेंस। From performing in local clubs to selling out stadiums worldwide, the band has sold more than 130 million records. Yes, 130 million records, making them one of the best-selling rock bands in history. Their achievements include a Grammy Award, several American Music Awards, MTV Video Music Awards, and in 2018, induction into the prestigious Rock and Roll Hall of Fame. Yes, it all happened with the due course of time, and that's why we say, keep the faith.

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
4: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
5: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
6: आज की रात मजा,
5: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
4: म्यूजिक मस्ती।
7: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
8: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
4: म्यूजिक मस्ती।
9: Welcome back after the commercials. The show is called as Rainbow Showcase and it's time for your messages first. And the next message I'm taking up is from The Laugh Says It All by Itself. Right, so it got me reading out Mr. M. Rajkumar's message from Tamil Nadu. He's listening us on the application and he says, good evening RJ Manatakral, glad to catch you on Rainbow Showcase. Likewise gentlemen, likewise. And he says, Bon Jovi, nice pick, thank you so much. And he sends an emoji saying it, a tick mark along with a smiling emoji saying that, how do you do, laugh master. Thank you so much. Thank you very much. And I'll play a track by Bon Jovi and says, In These Arms. Let's play it.

और लीजिए अब सुनिए आकाशवाणी के एफएम रेनबो के अभी तक के मुख्य समाचार। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों को लेकर बार बार बाधित। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों से बातचीत की, धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने की अपील। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और मालदोवा के बीच मजबूत आर्थिक सहयोग तथा तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में सहयोग का आह्वान किया। ब्रिटेन में लेबर पार्टी के एंडी बर्नहैम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। ईरान और अमरीका के बीच हुर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर बढ़ते तनाव के कारण लगातार 9वें दिन भी हमले जारी हैं। अमरीकी हमलों में दक्षिण पश्चिमी ईरान के खोरमोज शहर को निशाना बनाया गया। कानून और न्याय मंत्रालय ने अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2026 का मसौदा हितधारकों और आम जनता के परामर्श के लिए जारी कर दिया है। ये मसौदा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के परामर्श से तैयार किया गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कमजोर और वंचित वर्गों के सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास के लिए स्माइल योजना लागू कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को सम्मानजनक जीवन जीने और स्थायी आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना है। मध्य प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन सरकार ने सदन में समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 पेश किया। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने 12 करोड़ रुपए के मादक पदार्थ के निर्यात को नाकाम किया है। फाइटर ड्रग के नाम से मशहूर इस मादक पदार्थ की लगभग 30 मीट्रिक टन की खेप दिल्ली के एक गोदाम से जब्त की गई। झारखंड में चतरा पुलिस और एसएसबी ने संयुक्त नक्सल विरोधी अभियान में

प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीएसपीसी के नक्सली नरेश गंजू उर्फ रविकांत को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर विशेष घेराबंदी कर ये कार्रवाई की गई। जम्मू संभाग में मूसलाधार वर्षा से 4 और लोगों की मौत, पिछले 2 दिनों में मरने वालों की संख्या 16 हुई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कई जिलों में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राजौरी और पुंछ जिलों में बारिश की घटनाओं में मारे गए लोगों के परिजनों को तत्काल सहायता के रूप में 6-6 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कल तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी और पीवी सिंधु कल से शुरू होने वाले चाइना ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत दल की अगुवाई करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुड्डा शामिल हैं। तो ये थे अभी तक के मुख्य समाचार और आइए अब लौटते हैं अपने कार्यक्रम की ओर।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आजा के अभी जब्त का मौसम नहीं गुजरा, आजा के पहाड़ों पे अभी बर्फ जमी है, खुशबू के जजीरों से सितारों की हदों तक इस शहर में सब कुछ है मगर तेरी कमी है। तो चलिए इसी कमी का एहसास करते हैं प्रोग्राम रंगे महफिल में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल। आइए बहुत ही खूबसूरत से शाहकार के साथ करते हैं आगाज़।

अजब तरह का है मौसम कि खाक उड़ती है, अजब तरह का है मौसम कि खाक उड़ती है। वो दिन भी थे कि खिले थे गुलाब आंखों में, वो दिन भी थे कि खिले थे गुलाब आंखों में। मोहब्बत का वो एक मौसम था जो दिल में ठहर सा गया था, और वो मौसम ऐसा था कि आज भी उसी मौसम का एहसास होता है। ये आंखें वही मौसम देखना चाहती हैं, लेकिन न जाने क्यों वो मौसम कभी लौटता ही नहीं है। उस मौसम को अक्सर कई शामी आवाज देती हैं, लेकिन इन शामों में और उन शामों में बड़ा ही फर्क था। लेकिन वही शाम आज भी गुनगुनाती है कि काश वो साथ हो तो क्या बात है, उसकी आवाज सुनाई दे तो क्या बात है। एक अलग ही किस्म का ये एहसास होता है

और ये आंखें भी तो उसी शाम का इंतजार करते हैं, ये हाथ भी तो उसी हाथ का सहारा चाहते हैं, ये दिल उसी एहसास के साथ आज भी जिंदा है, महसूस करता है उसको। आज भी उसकी आंखों में राज वही था, चेहरा वही था, चेहरे का लिबास वही था। कैसे उसको बेवफा कह दूं यारो, आज भी उसके देखने का अंदाज वही था, आज भी उसके देखने का अंदाज वही था।

वाकई अपनी आंखों में बसा कर क्या कहें इस दिल को। ये दिल तो न जाने क्या क्या चाहता है, ये दिल तो न जाने क्या क्या कहता है। इन आंखों में मुसलसल उसे बसाने को जी चाहता है। दरअसल इश्क एक सौगात देता है, मुसलसल उसकी जानिब से ये सौगात आती रहती है। उसका जिक्र हमेशा रहता है, उसकी बात मुसलसल होती रहती है। और फिर मोहब्बत में जनाब एक ऐसा मकाम आता है जहां अपनी ज़ात में भी सिर्फ और सिर्फ उसी की ज़ात रहती है, और ये दिल बार बार उसी को देखना चाहता है, उसी को महसूस करना चाहता है।

दीदार हो जाएं तो फिर इस दिल का तो बस पूछिए ही मत कि ये दिल क्या महसूस करता है। और बाकी उस लम्हे के लिए लफ्ज़ मिलते ही नहीं हैं, लेकिन जब दीदार ना हो तो दिल भी रोता है और ये आंसू भी रोते हैं। कहते हैं कि जो बात कह नहीं पाते हम अल्फाज से, वो हमारे आंसू कई बार कह जाते हैं। आंसू सब कुछ बता देते हैं। महबूब अगर पास हो तो आंखों में चमक उतर आती है, और अगर यही महबूब दूर हो जाए तो आंखें खामोशी से भीगने लग जाती हैं। हर आंसू सिर्फ कर्म की निशानी नहीं होता, कुछ आंसू बेपनाह मोहब्बत के भी हुआ करते हैं जनाब। कुछ इंतज़ार के होते हैं, कुछ अधूरी मुलाकातों के होते हैं, और कुछ उसके लिए जिसे दिल ने कभी अपने से जुदा माना ही ना हो। और ऐसे में वो शख्स हमसे दूर हो जाए तो फिर सुनिए ज़रा,

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: जी हाँ, आकाशवाणी का रेनबो चैनल इस वक्त आप सुन रहे हैं और प्रोग्राम चल रहा है रंगे महफिल। रंगे महफिल की जनाब क्या ही बात है। रंगे महफिल वो प्रोग्राम जिसमें हम दिल की आवाज़ सुनने की कोशिश करते हैं, और वाकई दिल की जो आवाज़ है वो बड़ी मुख्तलिफ सी आवाज़ होती है। कहते हैं कि हमने जिस जिस को भी चाहा तेरे हिजर में, वो लोग आते जाते हुए मौसम थे, जमाना सिर्फ और सिर्फ तू ही था। वाकई कहा जाता है ना कि जब जब हम किसी को अपना बनाना जानते हैं या चाहते हैं, उस दौरान जितने भी लोग मिलते हैं उनसे भी हमें मोहब्बत हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी बात उनसे ही सुनने को मिल जाती है। लेकिन ये हकीकत है कि वो लोग आते जाते मौसम होते हैं, और ज़माना ज़माना तो बस वही था, वही है, और फिर वही रहेगा।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: जी हाँ, आकाशवाणी का रेनबो चैनल इस वक्त आप सुन रहे हैं और प्रोग्राम चल रहा है रंगे महफिल। रंगे महफिल में कई बार आपने महसूस किया होगा कि हम मोहब्बत की बात करते हैं, हम बात इश्क की करते हैं।

जानते हैं क्यों? शायद इसलिए कि आज हम सब इस जज्बे से न जाने क्यों दूर होते जा रहे हैं। वैसे यही जज्बा हमें इंसान बनाता है, यही जज्बा हमें बेहतर जिंदगी जीने की एक अलग किस्म की तर्ज देता है। लिहाजा हमारी कोशिश यही रहती है कि हम याद कर सकें कुछ अपनों को, आवाज़ दे सकें इस दिल को। और इस दिल की जब बात है तो इस दिल का क्या कीजिएगा। ये दिल कई बार बेहद खुशी का एहसास करता है, अपने जज्बात आया भी कर देता है, लेकिन कई बार ये दिल चाहते हुए भी जबान पर दर्द नहीं लाता। इन आंखों से भी एहसास नहीं हो सकता कई बार कि आपके दिल पर क्या गुजर रही है। शायद कहते हैं कि कुछ लोग छलकाया नहीं करते, और वाकई ये अच्छी बात है कि ये दर्द, ये चुभन, ये एहसास हम अपने दिल में ही रखें।

वाकई न जाने ऐसे कितने दर्द होते हैं जिन्हें हम बयां कर ही नहीं पाते। और फिर ये गज़लें, ये नगमे हमारे जज्बात की तर्जुमानी बन जाती हैं। और हमारे तर्जुमान जनाब आप सब भी हैं, हमारे दिल की बात भी आप कहते हैं, अपने दिल के जो दास्तान हैं वो भी बयां करते हैं। किसी ने हमें सिर्फ इतना लिखकर भेजा है, वाह, लेकिन क्या लिखा है कुछ नहीं पता इसके आगे। और हम भी आपको सुन रहे हैं कस्बा गुनौरी यूपी से फ़ारूक अली ख़ान, फैज़ी फ़राज़, फरीन फरहान, फारिया और ताहिरा, शुक्रिया जनाब हमारा साथ देने के लिए। और ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रैक्स, सरकती जाए ये आंसू मेरे दिल की ज़ुबान। कॉन्ग्रेट्स अरुण कुमार रावत लिखते हैं गोरखपुर यूपी से, बहुत शुक्रिया अरुण जी, और अच्छा लगा आपने एक अच्छा मैसेज हमें किया और प्रोग्राम को आपने दिल से सुना। नमस्कार मैम, शुरुआत खूब सुंदर है गज़ल प्रोग्राम की और ब्यूटीफुल बातें हैं आपकी, प्लीज़ कन्वे माई मैसेज टू आकाश। और यकीनन ये तुम्बा हमारे साथ हैं और आकाश को याद कर रही हैं हमेशा की तरह। और हम तो बस इतना ही कहना चाहेंगे कि आकाश आप जहाँ भी हैं उनसे मुलाकात कीजिए और अच्छी बातें कीजिए। और सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी हमारे साथ शांति नगर सोनीपत से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और कार्यक्रम को पसंद कर रहे हैं और लिखते हैं कि मधुर वाणी, मोहक प्रस्तुति और मनभावन गजल्स, मनपसंद, मस्त कार्यक्रम। चलिए आपको अच्छा लगा और हमें क्या चाहिए इसके अलावा, बहुत बहुत शुक्रिया। राजकुमार के संतानी अकोला महाराष्ट्र से लिखते हैं गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। चलिए तो आपको भी गुड नाइट और गुड इवनिंग। और हमारे साथ और कौन है, नमस्कार आदाब। इश्क और मुश्क छुपाए से नहीं छुपता, पुरानी कहावत है जिसे मैं सही मानता हूँ। कहने को कहते हैं कि सीने में छुपा लेते हैं। कर्नल केपी तोमर साहब हैं मेरठ से हमारे साथ। बिल्कुल आपने सही कहा कि इश्क और मुश्क कभी भी छुपाए नहीं छुपता। ना खुशबू को आप छुपा सकते हैं और ना ही मोहब्बत को आप छुपा सकते हैं, लेकिन जहाँ तक बात कर्नल साहब दर्द की है तो दर्द कई बार छुपा लेने में ही गनीमत होता है, क्योंकि ये दर्द आप किस किस को सुनाएंगे, किस किस को बयां करेंगे, लिहाजा अपने दिल में रखिए, है ना। और अगर कोई याद आ जाए तो फिर आप क्या कहेंगे, कर रहा था गमे जहाँ का हिसाब, कर रहा था गमे जहाँ का हिसाब, आज तुम याद बेहिसाब आए।

वो मेरे जब्त का अंदाजा करने आया था, वो मेरे जब्त का अंदाजा करने आया था। मैं हंस के जख्म न खाता तो और क्या करता, मैं हंस के जख्म न खाता तो और क्या करता।

और बस अब तो इतना ही कहेंगी कि शब की तन्हाई में अब तो, शब की तन्हाई में अब तो अक्सर गुफ्तगू तुझसे रहा करती है। तो ये गुफ्तगू का दौर ऐसे ही दोस्तों चलता रहेगा और थोड़ा सा वक्त और है। बता दूं आपको कि कर्नल केपी तोमर साहब हमारे साथ हैं, शुक्रिया कह रहे हैं और आपको अच्छा लगा और यकीन मानिए हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि आप सब इतना दिल से प्रोग्राम सुनते हैं, बहुत शुक्रिया। और गीत वो जब याद आए बहुत ही पसंद आया, कस्बा गुन्नौर यूपी से हमारे साथ हैं फारूक अली खान साहब, बहुत शुक्रिया। वो जब याद आए रियली दिल से दिल तक असर कर रही है आपकी बातें, गॉड ब्लेस यू। अरुण कुमार रावत गोरखपुर से हमारे साथ, बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। यकीन मानिए आपकी बातें और आपका अंदाज, आपकी मोहब्बतें हम सब समेट कर अपने साथ ले जाते हैं और अक्सर आप सबको याद करते हैं। तो बस अब इतना ही कहूंगी आप सब से, ये जो मोहब्बत है इसे हमेशा हवा देते रहिएगा, यानी अपने दिल में मोहब्बत का दिया हमेशा ऐसे ही रोशन रखिएगा, क्योंकि इस दुनिया को सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत की ज़रूरत है। मोहब्बत है तो सब कुछ है, मोहब्बत है तो समझ लीजिए कि आप इस दुनिया पर राज कर रहे हैं, मोहब्बत नहीं है आपके पास तो समझ लीजिए कि कोई कुछ भी नहीं है। तो इसी जज्बे के साथ मैं आपसे बस इतना ही कहूंगी कि चलती हूँ, बहुत जल्द आपसे मुलाकात हो गई, तब तक के लिए अपना अच्छा सा ख्याल रखिएगा और मुस्कुराते रहिएगा। चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शब बखैर।

प्रस्तुत है एफएम रेनबो मुख्य समाचार। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों को लेकर बार बार बाधित हुई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों से बातचीत की। उन्होंने धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य बनाए रखने की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और मोल्दोवा के बीच मजबूत आर्थिक सहयोग तथा तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में सहयोग का आह्वान किया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाला को इस वर्ष के लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्हें यह प्रतिष्ठित पुरस्कार लोकमान्य तिलक की 106वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 1 अगस्त को पुणे में प्रदान किया जाएगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कमजोर और वंचित वर्गों के सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास के लिए स्माइल योजना लागू कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को सम्मानजनक जीवन जीने और स्थायी आजीविका के अवसर प्रदान करना है। अरुणाचल प्रदेश में भारत म्यांमा सीमा पर स्थित पांगसाऊ दर्रे का सीमा हाट 6 साल बंद रहने के बाद कल फिर से खुल गया। अधिकारियों ने बताया है कि सीमा हाट हर महीने की 10, 20 और 30 तारीख को खुलेगा। झारखंड में चतरा पुलिस और एसएसबी ने संयुक्त नक्सल विरोधी अभियान में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीएसपीसी के नक्सली नरेश गंजू को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर विशेष घेराबंदी कर यह कार्रवाई की गई। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में भी अगले 2 दिनों में तेज बारिश की संभावना है। और पीवी सिंधु आज से शुरू होने वाले चाइना ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ दीपिका सिहाग और उन्नति हुड्डा शामिल हैं। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: 12:03 हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम जिसका नाम है जीरो आर शो, लेकर हूँ हाजिर मैं एस एम शरीफ। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

प्रस्तुत है एफएम रेनबो मुख्य समाचार। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों को लेकर बार बार बाधित हुई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों से बातचीत की। उन्होंने धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य बनाए रखने की अपील की। फ्रांस के सांसद 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक सितंबर में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से लागू करने पर सहमत हो गए हैं, जिस पर आज अंतिम मतदान होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल को इस वर्ष के लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्हें यह प्रतिष्ठित पुरस्कार लोकमान्य तिलक की 106वीं पुण्यतिथि के अवसर पर प्रदान किया जाएगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कमजोर और वंचित वर्गों के सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास के लिए स्माइल योजना लागू कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को सम्मानजनक जीवन जीने और स्थायी आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना है। अरुणाचल प्रदेश में भारत म्यांमार सीमा पर स्थित पांग साऊ दर्रे का सीमा हाट 6 साल बंद रहने के बाद कल फिर से खुल गया। अधिकारियों ने बताया कि सीमा हाट हर महीने की 10, 20 और 30 तारीख को खुलेगा। भारत ने यूक्रेन के बंदरगाह पर मालवाहक जहाज पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत। फ्रांस के सांसद 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक सितंबर में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से लागू करने पर सहमत हुए। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में भी अगले 2 दिनों में तेज बारिश की संभावना है। और पीवी सिंधु आज से शुरू होने वाले चाइना ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुड्डा शामिल हैं। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: सगरे गाँव की गोरिया
1: जिया जिया
0: पुछू पुछू
1: मैं छोड़ रहा।

इसीलिए तो कहता हूं यही तो था एक हीरो जिसके आगे मैं जीरो बाकी

0: है बबई, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

प्रस्तुत है एफएम रेनबो मुख्य समाचार। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों को लेकर बार बार बाधित हुई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों से बातचीत की। उन्होंने धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य बनाए रखने की अपील की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल को इस वर्ष के लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्हें यह प्रतिष्ठित पुरस्कार लोकमान्य तिलक की 106वीं पुण्यतिथि के अवसर पर प्रदान किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में भारत म्यांमार सीमा पर स्थित पांग साऊ दर्रे का सीमा हाट 6 साल बाद बंद रहने के बाद कल फिर से खुल गया। अधिकारियों ने बताया कि सीमा हाट हर महीने की 10, 20 और 30 तारीख को खुलेगा। भारत ने यूक्रेन के बंदरगाह पर मालवाहक जहाज पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत। यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के खिलाफ समुद्री प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। हूती सैन्य प्रवक्ता याहा सवारी ने कहा कि यह कदम यमन पर लगाए गए प्रतिबंध और हाल में सना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमले के जवाब में उठाया गया है। फ्रांस के सांसद 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक सितंबर में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से लागू करने पर सहमत हुए। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में भी अगले 2 दिनों में तेज बारिश की संभावना है। और पीवी सिंधु आज से शुरू होने वाले चाइना ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुड्डा शामिल है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: 2:03 हुए हैं। शुरू करते हैं प्रोग्राम भुलाए ना बने।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। आगे बढ़ने से पहले आइए जानते हैं एफएम रेनबो मुख्य समाचार। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों को लेकर बार बार बाधित हुई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों से बातचीत की। उन्होंने धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य बनाए रखने की अपील की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को इस वर्ष के लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्हें यह प्रतिष्ठित पुरस्कार लोकमान्य तिलक की 106वीं पुण्यतिथि के अवसर पर प्रदान किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में भारत म्यांमार सीमा पर स्थित पांगसाऊ दर्रे का सीमा हाट 6 साल बंद रहने के बाद कल फिर से खुल गया। अधिकारियों ने बताया कि सीमा हाट हर महीने की 10, 20 और 30 तारीख को खुलेगा। विश्व व्यापार संगठन WTO ने भारत की 8वीं व्यापार नीति समीक्षा बैठक 21 और 23 जुलाई को आयोजित की जाएगी। भारत के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल करेंगे। फ्रांस के सांसद 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक सितंबर में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से लागू करने पर सहमत हुए। भारत ने यूक्रेन के बंदरगाह पर मालवाहक जहाज पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत। यमन के ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के खिलाफ समुद्री प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। हुती सैन्य प्रवक्ता याह्या सारी ने कहा कि यह कदम यमन पर लगाए गए प्रतिबंध और हाल में सना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमले के जवाब में उठाया गया है। और पीवी सिंधु आज से शुरू होने वाले चाइना ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुड्डा शामिल हैं। ये थे अब तक के एफएम रेनबो मुख्य समाचार।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। समय हो चला है हमारे अगले प्रोग्राम मिडनाइट मेलोडीज का, तो यूं ही जुड़े रहिए और सुनते रहिए प्रोग्राम के बैक टू बैक ये ट्रैक्स।

0: से तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं अब तक के मुख्य समाचार। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों को लेकर बार बार बाधित हुई। कल नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन में के हिंसा में बदलने से 118 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए। घायलों में विशेष पुलिस आयुक्त, संयुक्त पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त और उपायुक्त पद के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को इस वर्ष के लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्हें यह प्रतिष्ठित पुरस्कार लोकमान्य तिलक की 106वीं पुण्यतिथि के अवसर पर प्रदान किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में भारत म्यांमार सीमा पर स्थित पांगसाऊ दर्रे का सीमा हाट 6 साल बंद रहने के बाद कल फिर से खुल गया। अधिकारियों ने बताया कि सीमा हाट हर महीने 10, 20 और 30 तारीख को खुलेगा। विश्व व्यापार संगठन WTO ने भारत की 8वीं व्यापार नीति समीक्षा बैठक 21 और 23 जुलाई को आयोजित की है। भारत के आधिकारिक प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल करेंगे। फ्रांस के सांसद 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक सितंबर में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से लागू करने पर सहमत हुए। भारत ने यूक्रेन के बंदरगाह पर मालवाहक जहाज पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में भी अगले 2 दिनों में तेज बारिश की संभावना है। और पीवी सिंधु आज से शुरू होने वाले चाइना ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुड्डा शामिल हैं। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। समय हो चला है हमारे अगले प्रोग्राम सारेगामा का, तो यूं ही जुड़े रहिए और सुनते रहिए प्रोग्राम के बैक टू बैक ये ट्रैक्स।

0: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय

0: गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के

मेरी बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। प्रातः के 5 बजे हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए जानते हैं एफएम रेनबो मुख्य समाचार। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों को लेकर बार बार बाधित हुई। कल

की जाएगी। भारत के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल करेंगे। फ्रांस के सांसद 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक सितंबर में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से लागू करने पर सहमत हुए। भारत ने यूक्रेन के बंदरगाह पर मालवाहक जहाज पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत। मौसम विभाग ने आज हिमालय प्रदेश और जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में भी अगले 2 दिनों में तेज बारिश की संभावना है। और पीवी सिंधु आज से शुरू होने वाले चाइना ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुड्डा शामिल हैं। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

सुप्रभात, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हो चला है भक्ति संगीत के कार्यक्रम आराधना का।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।